0: मैथुनम, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। निषिद्ध मैथुन का त्याग यानी कि पुत्रोत्पत्ति के लिए ही जो है आवश्यक जो है मैथुन आदि क्रिया को करना कहते हैं ब्रह्मचर्य। आजकल ये इसकी व्याख्या बहुत बदलती जा रही है। अभी दो चार दिन पहले ही एक बुद्धिजीवी ने लिखा था अखबार में कि ये पुत्रोत्पत्ति की जो बात है, ये मैथुन आदि का जो भोग का सुख है उसका स्वरूप ऐसे बदल जाएगा। उन्होंने बहुत नजीकी समय बताया था, किंतु हम नहीं मानते कि वो भारतवर्ष में हो सकता है अन्यत्र। उन्होंने ये लिखा था कि पुत्रोत्पत्ति की जहां तक बात है तो वो जो है कोई बोतल में वो होगा, गर्भवास की गर्भ में बालक को पालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गर्भ में बालक पलेगा तो शरीर का आकार बिगड़ जाएगा। ये चिंता के कारण वो जो प्रक्रिया है उसको एक अन्यत्र अलग से एक बोतल है, उस बोतल में उसको फलित किया जाएगा, वहां बालक का विकास होगा और हमारा शरीर बरकरार रहेगा और हम जो है इस तरह से अपने जीवन को भोग में बनाते रहे। ये व्याख्या बदलती जा रही है न? तो जैसे हमारे यहां कहा कि मैथुन क्रिया केवल पुत्र उत्पत्ति के लिए है, और पुत्र किसके लिए है, पुत्र की आवश्यकता क्या है, पुत्रेण जय्यो अयम लोकः कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक। यदि इस लोक में और परलोक में यदि जय प्राप्त करनी है तो उसके लिए पुत्र है। पुत्रेण जय्यो अयम लोक, बृहदारण्यक उपनिषद कहती है कि इस लोक में जय को प्राप्त करना है तो पुत्र की आवश्यकता है, और पितृलोक में जय प्राप्त करना है तो सत्कर्म की आवश्यकता है, और ब्रह्म लोक में विजय प्राप्त करनी है तो उपासना की आवश्यकता है। ये तीनों क्रिया की आवश्यकता हमारे जीवन में है। तो ये ब्रह्मचर्य की बात हुई संक्षेप से। और आगे भगवान ने कहा अहिंसा। अहिंसा मैंने देखो, जैसे अभी मैंने पहले ही बता दिया अहिंसा का स्वरूप, अशास्त्र प्राणी पीड़न का अभाव, प्राणी पीड़न का अभाव, किंतु कैसा अशास्त्र प्राणी पीड़न का अभाव, इनको कहते हैं अहिंसा। और ये सब करना इनको कहते हैं शारीर तप। देखिए ये शरीर संबंधी तप है, इसलिए हम कहें कि हम शरीर से देखिए भूखा रहना ये भी आवश्यक है, ये नहीं, किंतु ये सब छोड़ कर यदि करे तो वो इससे आगे तो ये है कि ये शरीर संबंधी तप है। और वाणी के तप की बात है कि वाणी से यदि हम तप तपते हैं तो वाणी के तप के बारे में देखो, शरीर के संबंध में हमारी भ्रांति जरूर मिट गई होगी कि शरीर संबंधी तप जो है गीता में भगवान ने कैसा बताया है, ये सब क्रिया करने से शरीर संबंधी तप कहा जाता है, इसलिए ये करते हैं तो हम शरीर से तपस्वी कहे जा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वाणी के तप जो भगवान ने 15वें और 16वें श्लोक में बताया है। अब वाणी का तब क्या है उसको हम कल ही जहां तक हो सके संक्षेप से करने का प्रयत्न करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
1: हरिओम। पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन। आज और कल महाराज जी द्वारा प्रवचन जो तप विषय पर रखा गया है, आज श्राद्ध पक्ष में माता जी से हमने ओम नमः शिवाय और भक्ति योग की बातें सुनी, और तप जो दो दिन तक हमें किस तरह से हम ईश्वर को प्रसन्न करें और कैसे जीवन जिए उसके बारे में बताएंगे। पहली और दूसरी तारीख को जो हमारे स्वाध्याय प्रवचन में आने वाले हैं धर्मानंद जी महाराज, उनका प्रवचन दो दिन तक जो स्वाध्याय प्रवचन चल रहा है वेदांत परिभाषा, उसको सूचित करते हुए दो दिन उनके प्रवचन रहेगा प्रातः। जिससे स्वाध्याय में वेदांत परिभाषा कितना उपयोगी है अपने जीवन में उसकी बातें महाराज जी द्वारा बताई जाएगी। कल पूज्य धर्मान जी महाराज से फोन में बात हुई, एक दुखद घटना की भी उन्होंने बात की, आपसे मैं ये कहना चाहूंगा। 13 तारीख को कैलाश आश्रम के मंत्री और उनके पूर्व मंत्री, जो बहुत ही यंग संत थे दोनों, 30-32 साल की कुछ उम्र थी, और भी एक दो और दो तीन और भी गृहस्थ साथ में थे, कुछ देहरादून के आसपास में गाड़ी खड्डे में गिर जाने से उनका जो देवलोग वो दो संत पधार गए, उनको हम यहां वंदन करते हैं, आज उनकी शोरसी है। तो यह जो दुखद घटना हुई वो यहां से हम उनको प्रणाम करते हुए आज शोरसी विधि में ईश्वर को प्रार्थना करते हैं कि जो भी उनके साथ गृहस्थ भी रहे सबको उनकी आत्मा की शांति दे। हरिओम। बाकी कार्यक्रमों के बारे में स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट आयोजित श्री दिनेश जसंतलाल मेहता स्मृति व्याख्यान माला के अंतर्गत प्रसिद्ध भजनीक श्रीमती यशोदा गायक के भजन एवं पूज्य श्री हरिभाई कोठारी द्वारा वंदनीय जीवन इस विषय पर प्रवचन होगा। हरिभाई कोठारी का प्रवचन आज और कल होगा। यह व्याख्यानमाला 5:15 से 7:30 के दरमियान आज और कल चलेगी। आज के श्रेय स्मृति के यजमान है श्री किशनलाल केजरीवाला की ओर से श्रीमती बिजू देवी बरेलिया की ओर से श्री जेठालाल मेहता की ओर से श्रीमती मानसा गौरी जे मेहता की स्मृति में श्री श्रीचंद डी छाबड़िया की तथा वासुदेव छाबड़िया की ओर से श्रीमती उत्तमीबाई डी छाबड़िया की स्मृति में श्री कुलीन परसोत्तम भाई की ओर से श्री परसोत्तम भाई श्री नस्काय की स्मृति में मैसर्स संघवी ड्राई क्लीनिंग कॉरपोरेशन की ओर से श्री विजय भवानी दास के जन्मदिन के अवसर पर श्रीमती भानुबेन ए पटेल की ओर से श्री अम्बालाल जी पटेल की स्मृति में तथा श्रीमती सरस्वतीबेन बी पारेख की ओर से श्रीमती नानीबेन जे पारेख की स्मृति में। आप या आपके परिवार के सदस्य यहां उपस्थित हो तो पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद एवं प्रसाद ग्रहण करें। अब शांति पाठ होगा। हरिओम।
2: ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

चान मित्राया मद्गून वरुणाय चक्रवाकान अग्नये कुटरुनालभते वनस्पतिभ्या उलूकानग्निशोमाभ्यां चाशान अश्वि

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

नः दशबाहुस्त्व निमिषो नीलकण्ट उमापतिः विश्वरूपक् स्वयं श्रेष्ठो बलवीरो बलो गणः गणकर्ता गणपतिर्दिग्वासाः काम एव च मन्त्रवित्परमो

0: పరిణతం చైశ్వర్యమభ్యాహతం. ఆదిగురు శంకరాచార్యజీ సర్వజ్ఞ జ్ఞానమూర్తి భగవాన్ దక్షిణామూర్తి శివకి స్తుతి కర్తే హుయే పరం బ్రహ్మతత్వ కా ప్రతిపాదన్ కర్ రహే హై. శివతత్వ స్వయం క్యా హై, జీవతత్వ స్వయం క్యా హై, జీవ కా శివత్వ కైసే సంపన్న హోతా హై ఔర్ కౌన్ శివత్వ సంపాదన్ కర్తా హై, శివ కో జీవ భావ కి ప్రాప్తి కా కారణ క్యా హై, ఇన్ సబ్ కా విచార్ కర్నా హీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్ర కా ప్రయోజన్ హై. ప్రసంగ చల్ రహా థా తీసరే శ్లోక కా. యస్యైవ స్ఫురణం సదాత్మకమసత్ కల్పార్థకం భాసతే సాక్షాత్తత్వమసీతి వేదవచసా యో బోధయత్యాశ్రితాన్ యత్ సాక్షాత్కరణాత్ భవిన్న పునరా వృత్తిం భవాంభోనిధౌ తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే. ప్రశ్న ఈ చల్ రహా థా కి జిత్ని భీ వ్యవహార్ కే యోగ్య పదార్థ హై, ఈ సమస్త పదార్థో మే దో చీజ్ హోనా జరూరీ హై, తభీ యే వ్యవహార్ యోగ్య హోంగే. వే దో చీజ్ కా నామ హై అస్తితా ఔర్ ప్రకాశతా. यानी वस्तु होना चाहिए, सत्ता वाले होने चाहिए. स्वप्न के पदार्थ के खुद की सत्ता नहीं, इसीलिए व्यवहार नहीं कर पाते हैं. और आकाश के पुष्पों का स्वयं की कोई सत्ता नहीं, इसीलिए व्यवहार नहीं हो पाता है. व्यवहार होने के लिए उसकी सत्ता होनी चाहिए. और केवल सत्ता होने से व्यवहार नहीं चलता है, साथ में वह सत्तावान पदार्थ का ज्ञान भी होना चाहिए, तभी समस्त लौकिक और शास्त्रीय व्यवहार हो सकता है. विचार का विषय क्या है? तो बोले इन पदार्थों में जो सत्ता है और जो प्रकाशता है, ये खुद पदार्थ के अपनी स्वतंत्र सत्ता है कि इनमें जो सत्ता है वह कहीं अन्यत्र से आगंतुक है, किसी और की सत्ता को प्राप्त करके ये सत्तावान हुए हैं कि अपनी सत्ता में स्वयं पदार्थ टिके हुए हैं. इसी तरह किसी और प्रकाश से ये प्रकाशित होकर प्रतीत होते हैं या अपनी ही प्रकाश से प्रकाशित होकर प्रतीत होते हैं. सामान्य अज्ञानी व्यक्तियों से पूछा जाए तो वे लोग यही कहेंगे कि हर पदार्थ अपनी स्वतंत्र सत्ता पर निर्भर है और हर पदार्थ प्रकाशित होने में वह अपने ही प्रकाश का प्रयोग करते हैं. लेकिन वास्तव में गहरी विचार किया जाए तो ये सिद्ध नहीं होता है. पदार्थ कोई भी अपनी सत्ता में सत्तावान नहीं है, और पदार्थों में प्रकाश है ये बात तो मूर्ख भी स्वीकार नहीं करेगा, विद्वान तो स्वीकार करेगा ही नहीं, साथ में मूर्ख भी ये स्वीकार नहीं करेगा कि वस्तु में स्वतः प्रकाशित होने की क्षमता है. क्योंकि अंधकार कमरे में रखे हुए पदार्थ प्रकाश के बिना, पदार्थ के इतर पदार्थ से भिन्न प्रकाश के बिना वे पदार्थ प्रकाशित नहीं होते. और जब प्रकाश के लिए यानी पदार्थों को प्रकाशित होने के लिए पर प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, जिस तरह अन्य प्रकाश से पर प्रकाश से तमाम लौकिक व्यावहारिक पदार्थ प्रकाशित होते हैं, इसी तरह यह भी मानना पड़ेगा कि अन्य की सत्ता से ये सत्तावान हुए हुए हैं. किसकी सत्ता से ये सत्तावान हुए हैं और किसके प्रकाश से प्रकाशित हुए हैं, उस बात को ये तीसरे श्लोक के द्वारा शंकराचार्य जी स्पष्ट करते हैं उत्तर देते हुए. यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते जिसकी स्फुरणा से, यस्यैव स्फुरणम्, जिसकी स्फुरणा से यानी जिसके प्रकाशित होने पर ये तमाम असत्कल्पार्थक पदार्थ भी सदात्मकम भासते। असत वस्तु भी यानी मिथ्या वस्तु भी सत्य की तरह प्रतीत होते हैं। इस वाक्य से ये सिद्ध हुआ, हमको ये समझना निश्चित है, भले ही यह दृश्यमान नामान नाना रूपात्मक विश्व प्रपंच हमारे लिए पूरी तरह व्यावहारिक सत्ता वाले हों, फिर भी यह पदार्थ है मूल रूप में प्रातिभाषिक है, पारमार्थिक नहीं है। हे असत्कल्पत, इनकी अपनी सत्ता नहीं है, अन्य के सत्ता में सत्तावान हुए हुए हैं। और जब भी जो भी पदार्थ दूसरे के सत्ता में सत्तावान हो रहा हो, और जो भी पदार्थ दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा हो, उस पदार्थ के सत्यता के बारे में स्वतः प्रश्न खत्म हो जाता है, यानी वह सत्य हो ही नहीं सकता है। जैसे मंद अंधकार में सर्प दिखाई पड़ा, सड़क के किनारे कहीं जा रहे थे, सर्प का संस्कार मन में था, मन में डर था, ये रात्रि के समय में ये खेत के रास्ते से हम चल रहे हैं, चारों तरफ जंगल है, चारों तरफ घास है, झाड़ हैं, ऐसे झाड़ और झुंड में के बीच में तो प्राय करके सर्प हुआ करते हैं, और सर्प हमारे घातक है, इत्यादि इत्यादि मन में जो संस्कार जग रहे थे, उन्हीं संस्कार को लेकर इन्हीं चिंता और चिंतन के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, संयोग से वहां एक रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ था, और वो रस्सी के टुकड़े को स्पष्ट रूप से आपने जान नहीं पाए कि ये रस्सी है, निश्चय नहीं कर पाए, तो उसको सर्प होने में आपके सर्प का संस्कार का बल मिल गया, तो उस रस्सी को सर्प के रूप में परिणत कर दिया। किसने? तो आपके सर्पों के संस्कार ने रस्सी को सर्प के रूप में परिणत कर दिया है। इसी को विक्षेप शक्ति कहते हैं, इसी को विवर्त कहते हैं वेदांत दर्शन में। अब विचार करो कि वो जो प्रतीयमान सर्प है, जिस सर्प के आपने भ्रांति निश्चय किया है, हालांकि आपको भ्रांति है, ये बुद्धि नहीं हुई है, है भ्रांति, लेकिन भ्रांति हुई है ऐसे आपको बुद्धि नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि ये सचमुच वास्तव में मैं जैसा सोच रहा था वैसे ही ये सर्प यहां निकल आ गया, अब ये मुझे काटेगा, आगे बढ़ना मेरे लिए ठीक नहीं है, आपके पांव वहीं रुक गए, आगे नहीं बढ़ सके। और संभव है कि आप यदि कमजोर दिल वाले होते तो फिर आप घबरा भी जाएंगे, आपके शरीर से पसीना निकल आएगा, आपके ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, और आपके कदम आगे न बढ़कर पीछे मुड़ जाएंगे, आप वापस आ जाएंगे। और पूछने वाला आपसे पूछेगा कि आप तो फलाने गांव जा रहे थे, तो क्या हुआ, क्यों वापस आ गए? बोले, जा तो रहा था, लक्ष्य मैंने छोड़ा नहीं है, परंतु व्यवधान आ गया। क्या व्यवधान आ गया? बोले, रास्ते में बहुत बड़ा सर्प आ गया, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सका सर्प के चलते। बोले, अच्छा सर्प आ गया है, बताओ बताओ कैसा है वो सर्प? तो वह दूसरा व्यक्ति सर्प, उस सर्प को देखने की जिज्ञासा करता है कि बताओ कहां है और कैसा है उस सर्प को। अरे ऐसे सर्प को तो कितना मैंने मार डाला है, चलो उसको मार देता हूं, भगा देता हूं। हाथ में मोटा सा डंडा उठा लिया उस दूसरे व्यक्ति ने, जरा वो साहसी था, जगत में कोई दो चार ही साहसी होते हैं, सभी साहसी नहीं होते हैं। तो कोई साहसी था वो हाथ में, एक हाथ में डंडा ले लिया, एक हाथ में टॉर्च ले लिया, और उसको आगे लगाया। चलो, बोले, मैं तो आगे नहीं जाऊंगा, मुझे सर्प काटेगा। चलो अच्छा, तुम पीछे चलो, मैं आगे चलता हूं। वो आगे टॉर्च जलाता हुआ, हाथ में डंडा लेते हुए और बिल्कुल तैयारी के साथ आगे बढ़ा। उसने कहा कि कहां पर है? तो बोले, और आगे चलो, और आगे चलो, और आगे चलो। तो आगे चलता गया तो बोले हां इसी के आसपास है, ये पेड़ है ना, इसी पेड़ के आसपास है कई सर्प। उसने लक्षण बताया पहले व्यक्ति ने, तो दूसरा व्यक्ति ने उसी के आसपास अपने हाथ का टॉर्च की रोशनी डाली, किधर है किधर है किधर है, तो अचानक वहां सर्प रस्सी दिखाई पड़ी। बोले कहां है सर्प? बोले यहीं पर था सर्प, इसी पेड़ के नीचे इसी पत्थर के पास सर्प बैठा हुआ था। बोले जो लक्षण तुम बता रहे हो पेड़ भी यहीं वहीं पर है, और जो बता रहे हो पत्थर वो पत्थर भी यहीं है, और पत्थर के बिल्कुल पास बैठा था सर्प तुम कह रहे हो, वहां तो रस्सी है देख लो। हा रस्सी है? बोले हां देख लो। नहीं नहीं भाई सर्प था, और तुम कह रहे हो सर्प था, हम कह रहे हैं रस्सी है। इधर उधर कहीं कोई निशान नहीं है, रस्सी के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो उस पहले व्यक्ति को प्रतीत होने वाला जो सर्प है वह असत कल्पार्थक है। हमने कल भी इस बारे में थोड़ा सा संकेत किया था, पदार्थों के असत होने में और असत तुल्य होने में अंतर है। जो असत तुल्य हैं वे पदार्थ प्रतीत होते हुए वह असत होते हैं, और जो असत होते हैं वह प्रतीत ही नहीं होते, असत होने के नाते ही प्रतीत नहीं होते, वह सर्वथा असत हैं। और असत तुल्य उनको कहते हैं वो हैं असत लेकिन प्रतीत होते हैं, इसी को मिथ्या बोलते हैं वेदांत में। असत कल्पार्थक ये शब्द का अर्थ होता है मिथ्या पदार्थ, और मिथ्या पदार्थ का अर्थ होता है जो पदार्थ जहां जिस रूप में प्रतीत हो रहा है वो पदार्थ वहीं उसी रूप में प्रतीत न होना, उसी को कहते हैं मिथ्या पदार्थ, असत कल्प कहते हैं। इसी को असत वस्तु के बारे में मिथ्या वस्तु के बारे में व्याख्या करते हुए आचार्यों ने एक लक्षण बना ली है, स्व अधिष्ठाने वादमानत्वम मिथ्यात्वम। मिथ्या शब्द का यह अर्थ है अपने ही अधिष्ठान में बाधित होता हो तो उस पदार्थ को मिथ्या कहते हैं। जिस अधिष्ठान में जो पदार्थ प्रतीत हो रहा है उसी अधिष्ठान में वो ही पदार्थ बाधित होता हो तो उसको कहते हैं मिथ्या। स्वाधिष्ठाने वादमानत्व मिथ्यात्वम, और दूसरी जगह लक्षण बनाया ज्ञान निवर्तत्व मिथ्यात्वम। ये दो लक्षण है मिथ्या के लिए, ज्ञान के द्वारा निवृत्त होने वाले पदार्थों को मिथ्या कहते हैं, या अपने ही अधिष्ठान में बाधित होने वाले पदार्थों को मिथ्या कहते हैं। ये दोनों बात आप ध्यान से सुन लेना। सर्प का अधिष्ठान रस्सी है, रस्सी के बिना सर्प सिद्ध न होने के कारण सर्प का अधिष्ठान क्या है? रस्सी है। और स्व शब्द का अर्थ होता है सर्प, अधिष्ठान शब्द का अर्थ हो गया रस्सी। स्व अधिष्ठान माने सर्प का जो अधिष्ठान, प्रतीयमान सर्प का जो अधिष्ठान रस्सी, उसी रस्सी में उस सर्प का बाध हो जाना। जिस अधिष्ठान में सर्प दिख रहा था उसी अधिष्ठान में सर्प का बाध हो जाना, इसको मिथ्या कहते हैं, स्व अधिष्ठाने बाधमानत्व मिथ्यात्व। और दूसरी बात ज्ञान निवर्तत्व मिथ्यात्व, ज्ञान के द्वारा जिसकी निवृत्ति होती हो उसको मिथ्या कहते हैं, यानी ज्ञान के आते ही जो हट जाता है उसको मिथ्या कहते हैं। या ज्ञान उपलक्षित दृष्टांत में प्रकाश ले लेना, प्रकाश के द्वारा जो निवृत्त हो जाता है उसको मिथ्या कहते हैं। डोरी में प्रतीयमान सर्प किसके द्वारा हटा? प्रकाश के द्वारा हट गया, प्रकाश के द्वारा हटने वाला होने के कारण उसको मिथ्या कहते हैं। और असली सर्प होता तो फिर प्रकाश के द्वारा न हटता, असली सर्प होता तो क्या प्रकाश के द्वारा हटता? नहीं हटता। और असली सर्प होता तो स्वाधिष्ठान में बाद भी नहीं होता, जिस जमीन में सर्प प्रतीत हो रहा था उसी जमीन में यदि असली सर्प होता तो फिर बाद नहीं होता, न हटता, वहीं बना रहता, वहीं डटा रहता। ये दोनों लक्षण मिथ्या के लिए हैं। ये जगत के तमाम पदार्थ भी ये दो लक्षण में घट जाते हैं। एक तो यह है कि ये स्व अधिष्ठान बाधमान है, हर पदार्थ जिस अधिष्ठान में प्रतीत हो रहे हैं उसी अधिष्ठान में ये बाधित हो जाते हैं। दूसरी बात, ज्ञान निवृत्त होता है, स्वरूप ज्ञान होते ही पदार्थ सब निवृत्त हो जाएंगे, हट जाएंगे। स्वरूप ज्ञान के बाद ये सारे के सारे पदार्थ ज्ञान बाधित हो जाने के कारण ये सारे पदार्थ मिथ्या हैं। वेदांत कभी भी जगत के प्रतीयमान पदार्थों को असत नहीं कहता, मिथ्या कहता है, और इसीलिए मिथ्या को ही दूसरे शब्द से कह दिया है, असत कल्प क। असत कल्प यानी कल्प शब्द का अर्थ होता है तुल्य, असत तुल्य, तुल्य शब्द का अर्थ होता है स्वरूप वाला, असत जैसा, असत तुल्य, असत कल्पार्थ। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते, जिसकी स्फुरणा से असत कल्प भी सत रूप में प्रतीत होता है। इसी को तुलसीदास जी ने इस चौपाई से कहा है, झूठेऊं सत्य जाहि बिनु जाने, झूठा वस्तु भी सत्य प्रतीत होता है। कब? बोले जे ही बिनु जाने, जिसके न जानने से झूठा वस्तु भी सत्य प्रतीत होता है। जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, दृष्टांत दिया, जैसे रस्सी के बिना पहचाने भुजंग की प्रतीति होती है, सर्प की प्रतीति होती है, इसी तरह राम के न जानने से तमाम जगत की प्रतीति होती है, परमात्मा को न जानने से अनात्मा की प्रतीति होती है, ब्रह्म को न जानने से जगत की प्रतीति होती है, कूटस्थ को न जानने से जीव की प्रतीति होती है। देखो, तमाम जो जीव सत्ता की प्रतीति है, ये जीव सत्ता वास्तव में जीव के रूप में नहीं है, यह कूटस्थ के न जानने से जीव के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। जिस समय इस जीव को अनुसंधान के पश्चात अपने पारमार्थिक स्वरूप कूटस्थ का अपरोक्ष बोध होगा, तब उसको अपने बारे में कर्ता भोक्ता जीवपना था, वह जीवपना स्वतः ही बाधित हो जाएगा। भ्रांति के निवृत्त होते ही भ्रांतिजन्य पदार्थ की अस्तित्व ही निवृत्त हो जाता है। निमित्तापाय नैमित्तिकस्याप्य अपाय, जिस निमित्त से जो पदार्थ सिद्ध हुआ है, वह निमित्त के हटते ही तब नैमित्तिक पदार्थ स्वतः बाधित हो जाता है, स्वतः हट जाता है। तो झूठे हूं सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजु पहचाने, जिमी जाने जग जाई है राई, तुलसीदास जी, जिमी जाने जग जाई है राई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसको जान लेने के बाद सारा का सारा द्वैत प्रपंच नाम रूपात्मक विकल्प, वह पहले जिस सत्यत्व रूप में अनुभव में आ रहा था, अब उसी रूप में सत्यत्व के रूप में अनुभव में नहीं आएगा। ये बात नहीं है कि अनुभव में नहीं आएगा, ये बात नहीं है, अनुभव में यथावत आता ही रहेगा। जागतिक पदार्थ ज्ञान होने के बाद अनुभव में नहीं आता, ये बात नहीं है, अनुभव में आता रहेगा। अंतर क्या होगा? तो फिर तो अंतर यह है कि ज्ञान होने से पहले अनुभव में आए हुए पदार्थों के बारे में बिल्कुल पारमार्थिक सत्यत्व बुद्धि थी, अनुभव में आने के बाद इन्हीं पदार्थों की सत्यत्व बुद्धि नष्ट हो जाएगी, पदार्थ नष्ट नहीं होंगे, ये ख्याल रख लेना। हाँ, ज्ञान होने के बाद प्रतीयमान पदार्थ नष्ट हो जाएंगे, ये वेदांत नहीं कहता है। फिर वेदांत का क्या फायदा हुआ? जैसे पहले प्रतीत हो रहा था वैसे बाद में भी प्रतीत होता है द्वैत प्रपंच, तो फायदा क्या हुआ? तो उसका उत्तर यह है कि ज्ञान से पहले सत्य रूप में प्रतीत हो रहा था, ज्ञान के बाद सत्य रूप में प्रतीत न होकर मिथ्या रूप में प्रतीत होता है, ये फायदा है। और यदि सत्य रूप में प्रतीत होगा तो उसके प्राप्ति और अप्राप्ति में आपको सुख और दुख की प्राप्ति होगी, और मिथ्या रूप में प्रतीत होने पर उसके प्राप्ति और अप्राप्ति में न सुख और न दुख की प्राप्ति, यही फर्क है और कुछ नहीं है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, जैसे कोई व्यक्ति पानी का मरुभूमि में घूम रहा था और पानी से वह प्यासा था।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Thirumoola Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Bhakto, aaj hum sunenge aur ek Nayanmar ki kahani jinka naam Thirumoolar hai. सुंदरमूर्ति नायनार ने तिरुमूलर का सादर प्रणाम किया है और कहा है, मैं प्रभु मूलन के दास का दास हूँ। नंबी आंडार नंबी ने तिरुमूलर का परिचय इन शब्दों में किया है। सातनूर नामक ग्राम में, जहाँ सज्जन लोग निवास करते हैं, गायों के चरवाहे की मृत देह में प्रविष्ट होकर पुनर्जीवित योगी के चरणों को मैं अपने सर पर श्रद्धा सहित रखता हूँ। उस योगी ने चतुर्विध पुरुषार्थों के बोधक गुणों से युक्त मधुर तमिल भाषा में द्वितीया के चंद्र की शीश पर धारण करने वाले शिव की वेद सम्मत स्तुति की है। कैलाश पर्वत पर नंदीकेश्वर की कृपा से अष्ट सिद्धि प्राप्त कर एक योगी सुंदर मूर्ति सुंदर मुनि अगस्त के दर्शनों की कामना के लिए तमिल प्रदेश के पुदिगई पर्वत की ओर चले। केदार नेपाल के पशुपति ईश्वर अभिमुक्त वाराणसी के विश्वनाथ आदि के दर्शन करते हुए वे चिदंबरम के नटराज के दर्शन के लिए पहुंचे। नटराज ने के आनंद तांडव से उनका अंतर्मन प्रेम से विभोर हो उठा। वहां कुछ दिन रुकने के बाद वे आगे बढ़े। कावेरी नदी के तट पर एक स्थल पर उन्होंने देखा कि एक गडरिया मृत पड़ा हुआ है और उसकी गायें उसके चारों ओर व्याकुल होकर आंसू बहा रही थी। वे गायें इधर उधर जाती, कभी अपने मृत चरवाहे की ओर देखती और असमर्थता व्यक्त कर रही थी। योगी ने जब यह दृश्य देखा तो उस मृत गडेरे की काया में परकाय प्रवेश किया। ये बात बता दूं कि ये ऐसे योगी थे जो कि शरीर में प्रवेश करने की योग सिद्धि प्राप्त कर रखी थी। गडेरे का नाम मूलन था, जो चातनूर गांव का निवासी था। मूलन को जीवित देखकर गायें अत्यंत प्रसन्न हुईं। उन्हें गांव में यथोचित स्थान पर पहुंचाकर वह अपने घर गए। पुराने मूलन की पत्नी ने उन्हें अपना पति समझकर उनका स्वागत किया। तिरुमूलर, जो कि मूलन के शरीर में प्रवेश थे, दुविधा में पड़ गए। अपनी स्थिति स्पष्ट कर पाने में स्वयं को असमर्थ अनुभव कर वे घर छोड़कर गाँव के बाहर मठ में चले गए। सुंदर लौट कर उस स्थल पर आए जहां अपना शरीर सुरक्षित छोड़ाए थे तो पाया कि शरीर लुप्त हो चुका था। संभवत शिव की कृपा दृष्टि इसका कारण है। ऐसा विचार कर मूलन के शरीर में स्थित सुंदर या तिरुमूलर योगी ने तिरु आवड़तरई के अधीश शिव की वंदना करते हुए उनकी कृपा से 3 सहस्र पदों में तिरुमंदिरम नामक विशाल ग्रंथ की रचना की। यह वास्तव में अनोखी बात है कि पेरिय पुराणम में भक्तों की पंक्ति में योग मार्गी तिरुमूलर का स्थान दिया गया है। शैव मार्ग के प्रसिद्ध ग्रंथ तेवारम में योग प्राणायाम कुंडलिनी आदि का कहीं वर्णन नहीं मिलता। योग मार्ग को महत्व देने वाले तिरुमूलर भक्ति मार्ग के साधकों की श्रेणी में नहीं आते। यही नहीं, वे पंचाक्षर मंत्र काफी सूक्ष्म विभेद करते हैं। उसे स्थूल पंचाक्षरी, सूक्ष्म पंचाक्षरी और अति सूक्ष्म पंचाक्षरी कहते हैं, जो भक्ति मार्गियों की समझ में नहीं आता। फिर भी अन्य योगी मार्गियों के विपरीत वे अभिषेक और आराधना को मानते हैं। दक्षिण में योग मार्गी सिद्धों का एक अलग वर्ग है। उनमें से चिक्कलर ने तिरुमूलर को 2 कारणों से नायनमार भक्तों की श्रेणी में शामिल किया है। प्रथमतः, मूर्ति पूजा को महत्व न देने वाले सिद्धों में से केवल तिरुमूलर ही ऐसे हैं जो शिवलिंग, नटराज की प्रतिमा, देवी का स्वरूप आदि का वर्णन करते हैं। दूसरे सिद्ध लोग भाषा और मंत्र के को विशेष स्थान नहीं देते, पर तिरुमूलर पंचाक्षरी को विशिष्ट महत्व दे प्रदान करते हैं। वे कहते हैं, ईश्वर ने मुझे सुंदर ढंग से सृजित किया है, इससे मैं तमिल में सुंदर ढंग से उसका योगोशान करूं। अपने विषय में तिरुमूलर ने तिरुमंदिरम में कहा है कि उनका आगमन विविध आगमों को तमिल में प्रस्तुत करने के लिए ही हुआ है। समग्रतः तिरुमूलर एक अद्भुत ज्ञानी, योगी और सिद्ध भक्त हैं, जिनका ग्रंथ तिरुमंदिरम तमिल का गौरव ग्रंथ है। कहते हैं कि तिरुमंदिरम की हर एक शिव वर्णन उन्होंने हर 100 वर्ष में किया है। ऐसा देखा जाए तो उन्होंने 3000 साल में तिरुमंदिरम की रचना की है। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय।
3: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
4: फलाना फलाने शरीर में छुपा है, फलाना फलाने शरीर में छुपा है, नाम ले एक जगह बैठे बैठे नाम पुकार पुकार के कह दिया कि तू वहां छुपा है। हे आत्मानंद, तू इस शरीर में छुपा है। अरे तेरे को कैसे पता चला? हे मोहनीश, तू इस शरीर में छुपा है। ले जी, किसी को कहा कि अरे तू हाथी के शरीर में छुपा, तू चींटी के शरीर में छुपा, तू कुत्ते के शरीर में छुपा, तू सुअर के शरीर में छुपा, तू मच्छर के शरीर में, तू मक्खी के शरीर में, तू मच्छर के शरीर में। वाह, क्या कहना है, बोलो है कि नहीं?

पता लगा लिया। अभी तो हारे और जीते हैं, इसका निर्णय तो अब बारी आई परमात्मा को छुपने की। बोले भाई तुम लोग सब छुपे हो और हमने पता लगा ली। लगाई कि नहीं? बोले हां तुमने पता लगा लिया, हां तुमने जहां जहां कहा है हम वहीं वहीं छुपे हैं, ठीक कह रहे हो। बोले कि ठीक है, वहीं मस्ती से खाओ पियो मौज करो, चिंता नहीं करना, वहीं छुपे रहो, वहीं खाओ पियो मौज करो। अब हम छुपे? बोले हां तुम छुपो। तो परमात्मा छुपने की कोशिश करने लगा, कहां छुपूं? विचार किया, ये जीवात्मा परांचिकानी वितृणत स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति। मैं दुनिया के बाहर कहीं भी छुपूंगा तो ये सब पता लगाकर छोड़ेंगे। मैं हार जाऊंगा, मैं जीतूंगा तो तब, मैंने इनको पता लगा लिया, ये मुझे पता नहीं पाएंगे तभी मैं जीतूंगा, समझे कि नहीं? इन्होंने मुझे पता लगा लिया, मैंने इनको पता लगा, तो हार जीत का कोई मतलब ही नहीं हुआ। कहां छुपे? बोले ये सारे जीव जहां जहां छुपे थे वहीं वहीं जाकर बैठ जाऊं। अब इनकी आदत है बाहर खोजने की, बाहर हम छुपेंगे नहीं, छुपेंगे अंदर ही। बड़े बुद्धि लगा लिया और जाके वहीं छुप के बैठ गए। कहा? अरे तुम जहां छुपे थे वहीं छुप गए हो, तुम स्त्री के शरीर में छुपे थे तो वो भी आकर वहीं छुप गए, तुम पुरुष के शरीर में छुपे थे तो वो भी वहीं आकर छुप गया, तुम कुत्ते के शरीर में छुपे थे तो वो भी छुप गया, वही हाथी के शरीर में छुप गए तो वहीं छुप गया वो। एस सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते। कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को समझाया, ऐसा आत्मा परमात्मा सर्वेषु भूतेषु, जीवात्मा जहां जहां छुपे हैं वहीं वहीं जाकर वो गूढ़ा छुप के बैठ गया। और परमात्मा ने कह दिया कि ए सब लोग अब खोजो, तुम लोग मैं छुप चुका हूं, खोजो पता लगाओ। तो खोजने के लिए निकले आत्मानंद, काशी गया, मोहनीश बना वहां, हरिद्वार गया, चिमन भाई बद्रीनाथ गए, रमण भाई द्वारिका गए। कहां गए? खोजने गए सब, कहां होगा कहां होगा कहां होगा। मिला द्वारिका में? नहीं मिला। बद्रीनाथ मिला? मिला नहीं मिला। हरिद्वार में मिला? आज तक किसी को मिला नहीं वो, और खोजना छोड़ नहीं रहे। हां मंदिर मिल गया, मूर्ति मिल गई, परमात्मा नहीं मिला है ना। काशी गए, मंदिर भी मिला, मूर्ति भी मिली, परमात्मा नहीं मिले। द्वारिका गए, बड़ा भारी मंदिर भी मिला, मूर्ति भी मिली, परमात्मा नहीं मिले। हरिद्वार गए, मंदिर मिला, मूर्ति मिली, परमात्मा। आज तक तुम लोगों को मंदिर और मूर्ति ही तो मिल रहे हैं, है ना? बोलो परमात्मा मिला? नहीं मिला।

0: क्योंकि हम ये मानते हैं कि परमात्मा मंदिर और मूर्तियों में रहता है। अब परमात्मा ने ऐसे विचित्र खेल खेली, बाहर मंदिर और मूर्ति बनाकर रख दी और अब मैं अब छुप गया, अंदर हृदय में जाकर छुप गया। देव जी, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसी जगह आकर बैठ सकता है। जहां हम बैठे हैं वहीं आकर वो बैठ सकता है, हम सोच ही नहीं सकते। तो जिन्होंने नहीं सोचा है उनको हजारों साल खोजने पर भी नहीं मिला है। तब कठोपनिषद में कहा, एस सर्वेशु भूतेषु गोड़ो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते तो ग्रया बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी तच्चिद्धीरा प्रत्यगात्मान ऐच्छत आवृत चक्षु अमृतत्वम इच्छन अन्यथा तो परांचिकानि वितरण स्वयंभू तस्मात् परं पश्यति न अंतरात्मा पश्यति। हर व्यक्ति खोजने के नाम में बाहर खोज रहा है और अंदर तो खोज ही नहीं रहा है। कोई कोई समझदार व्यक्ति है, अंदर भी खोजना चाहिए। अंदर मैं हो सकता हूं तो वो नहीं हो सकता, ये बुद्धि क्यों नहीं आई? अंदर मैं हो सकता हूं तो वो क्यों नहीं हो सकता है? और जब तक ये बुद्धि नहीं आएगी तब तक वो मिलने वाला नहीं है। कच्चित धीरा, किसी किसी धीर पुरुष में ये बुद्धि आती है, तब वह आवृत्त चक्षु बाहर खोजने को छोड़कर अंदर ही खोजता है। महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं ना कि कोई एक मुसलमान सूफी संत महिला हुई, वो सूफी थी, संत थी, उसका नाम राबिया कहते हैं, नहीं ऐसा नाम रखा है, तो बहुत सुने हुए दृष्टांत है। विचित्र की थी वो, रमजान का महीना था तो और के मक्का मदीना जाने का समय था, सब लोग कहने लगे कि चलो तीर्थ जाएं, मक्का जाएं, मदीना जाएं, हज करें है? तो सब तैयारी करने लगे। उसको कहा कि तू तैयारी नहीं कर रहे, तू नहीं जा रही है? बोले हाँ चलेंगे, हम भी चलेंगे। चल चल तैयार हो, कल सुबह इतनी बजे जाना है। अच्छी बात है। तो सब तैयारी हुई तो दूसरे दिन सभी साथी यात्री तैयार हो गए। बोले वो बाहर नहीं आ रही है, बस खड़ी है। अरे राबिया क्यों नहीं आई है, लेट हो रहा है, जल्दी आ जा। बोले आई आई, मैं अभी आ गई। जाना नहीं है क्या? बोले जाना तो जरूरी है, तो फिर क्यों लेट करती है? क्या बताऊं, मेरे ब्लाउज का एक बटन टूट गया, तो उस बटन लगाऊं उसके लिए मैं सुई खोज रही हूं, और लगाए बिना मैं कैसे जाऊं? पता नहीं कहां खो गया, तुम लोग भी मदद करो ना। बेचारे बस में चढ़े हुए सब यात्री उतर के आ गए और सुई खोजने में लग गए। तो राबिया सुई कहां खोज रही है? कहते हैं कि बाहर, घर के बाहर आंगन में, जहां प्रतिदिन झाड़ू लगा लगा के कचरा फेंका करते थे, वहीं जाकर खोजने लगी। क्या खोज रही है? बोले सुई खो गया है, खोज रही हूं, तो उसके बिना बटन लगाया नहीं जाएगा। तुम लोग भी खोजो, खोजने लगे। अरे भाई सुई कहां गिर गई थी? बोले गिरी तो घर में गिरी थी तो घर में, क्योंकि रखा घर में ही था, खोई तो घर में ही है। बोले घर में खोजा कि नहीं? नहीं, कल भी एक पड़ोसी आया था, यही खोज रहा था, उसका भी एक सामान खो गया था, वो यही खोज रहा था। परसों दूसरा पड़ोसी आया था, वो भी यही खोज रहा था अपना सामान। तो हमने सोचा कि कोई भी सामान खो जाता है तो मिलने का जगह यही है, इसलिए यही खोजने लग रहे। बोले पहले तो जहां खोया है वहां खोजो। बोले वो तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं, चलो। बोले सब लोग आए, कहते घर में, घर में आए तो घर के अंदर ही सुई मिल गई। लोगों ने कहा कि तू पागल है, सुई गिरी घर में, घर में खोजे बिना बाहर खोज रही है। बोले ठीक है, हम तो पागल है ही है और तुम भी पागल हो। परमात्मा बैठा है अंदर और तुम मक्का मदीना खोजने जा रहे हो, तो अंदर खोजा तुमने, अंदर देखा। बोले अंदर तो देखा नहीं, हमारा बाप भी जो मक्का गया था, हमारे दादा भी मक्का गए थे हज करने, तो परंपरा बनी है सभी मक्का जाकर हज करके आते हैं। अरे बाबा, वो परमात्मा जब अंदर बैठा है, अंदर छुपा है, तो जहां छुपा है वहीं न खोजना चाहिए। तो मक्का जाना हो तुम लोग जाओ, मैं तो मक्का पहुंच गई हूं। क्यों, उसको तो मिले मिला है, वो तो अंदर खोज रही है, उसका मक्का तो अंदर है, मक्का मदीना तो अंदर है। कच्चे धीरा, इतने सारे मुल्लों में से वो एक राबिया हुई जिसके मक्का मदीना अंदर था, बाकी के मक्का मदीना तो बाहर ही है। क्या सुंदर भाव है। तत्प्रसादात, शंकराचार्य कहते हैं कि महाराज आपकी कृपा से, शिवजी को कह रहे हैं शंकराचार्य, हे भगवान आपकी ही कृपा से आद्या अविद्या अविद्या का विशेषण है आद्य, हालांकि अविद्या अनादि है। अविद्या खुद क्या है, अनादि है। षडैते अनादयः, वेदांत में छह वस्तु को अनादि बोलते हैं, समझे नहीं? ब्रह्म अनादि है, माया अनादि है, ईश्वर अनादि है, जीव अनादि है, जगत अनादि है, और इनका परस्पर संबंध अनादि है। ये हमने कई बार कहा है प्रसंगों में, छह वस्तु क्या है, अनादि है। जगत कब से शुरू हुआ, जगत कब से शुरू हुआ, स्टार्ट डे इसका कोई रिकॉर्ड है कहीं? शुरू हुआ लेकिन कब से शुरू हुआ, कोई 16,000 वर्ष कहता है, कोई 20,000 वर्ष पहले था कहते हैं, कोई कुछ कहते, कुछ भी बोले जा रहे हैं सब। जीव कब से जीव बना है, तुम जीव हो कि नहीं बोलो, हैं? जीव हो ना, तो किस दिन से जीव बने हो तुम? है रिकॉर्ड है तुम्हारे पास? शरीर किस दिन पैदा हुआ है वो तो तुम्हारे पास होगा, है ना, बर्थडे होगा ना शरीर का। अच्छा तुम्हारा बर्थडे कब है, जीव कब जीव बना था, है? जीव कब जीव बना है, अनादि, कोई बता नहीं सकता है। कि मैं इस दिन जीव बना। माया कब माया बनी बोलो? अनादि। ईश्वर कब ईश्वर बना? अनादि। ब्रह्म कब ब्रह्म बना? अनादि। षडेति अनादय, ये छह वस्तु अनादि है। लेकिन ये छह अनादि में से एक अनंत है, उसका अंत भी संभव नहीं है। बाकी सबका अंत होता है। और पांच वस्तु अनादि शांत है, समझे कि नहीं? और पांच वस्तु अनादि शांत है, एक वस्तु अनादि अनंत है। ब्रह्म अनादि अनंत है, बाकी सब अनादि शांत है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद माया का अविद्या का अंत हो जाता है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, तब तक माया का अंत नहीं होगा। लेकिन जब भी ब्रह्म ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा, माया अविद्या का अंत हो जाएगा। माया और अविद्या का अंत हुआ तो जिस माया से ईश्वर भाव खड़ा हुआ था और जिस अविद्या से जीव भाव खड़ा हुआ था, दोनों का भी अंत हो गया। और माया का अंत हुआ तो जिस माया के चलते जगत भाव खड़ा हुआ था, उसका भी अंत हुआ। निमित्तापाय नैमित्तिकस्यापि अपाय, जिस निमित्त से जो खड़ा था, जो भाव तैयार हुआ था, वो निमित्त गया तो नैमित्तिक गया। बिजली के द्वारा एसी चलने से कमरा ठंडा हुआ था, बिजली यदि चली जाए तो एसी बंद हो जाए, एसी बंद हो जाए तो कमरा क्या ठंडा रहेगा? ये जिस निमित्त से जो भाव खड़ा हुआ है, वो निमित्त जाते ही नैमित्तिक भी चला जाएगा। इसीलिए माया अविद्या के चलते ईश्वर और जीव भाव खड़ा हुआ था, और माया अविद्या के चलते ही जगत भाव खड़ा हुआ था, और माया अविद्या के चलते ही परस्पर जीव ईश्वर जगत इनका संबंध चला था। जीव सेवक है और ईश्वर सेव्य हो गया। ईश्वर और जीव के बीच में कौन सा संबंध हुआ? सभ्य सेवक भाव संबंध। अच्छा, जीव और जगत के बीच में कौन सा भाव संबंध हुआ? भोग्य भोक्ता भाव संबंध। जगत में कौन सा भाव आ गया? भोग्य भाव। और जीव में कौन सा भाव आ गया? भोक्ता भाव। और इसी तरह परमात्मा में और जगत में कौन सा भाव संबंध आ गया? जन्य जनक भाव संबंध आ गया। परमात्मा उपादान निमित्त कारण रूप जनक बन गया और जगत कार्य रूप जन्य बन गया। ये परस्पर संबंध है इनका, और ये सारा संबंध किससे खड़ा हुआ? तो उसी माया से। और माया अविद्या चला गया तो संबंध भी चला जाएगा कि नहीं? तो शंकराचार्य जी कहते हैं, भगवान शिव से स्तुति करते हुए कहते हैं, हे राजमौले तत्प्रसादांत, आपकी बड़ी कृपा हुई है हमारे ऊपर। आद्या विद्या, आद्य शब्द से कारण रूपा विद्या, हालांकि अविद्या अनादि है, फिर भी सबका कारण रूप होने के कारण उस अविद्या को क्या कहा? आद्या अविद्या। आद्य माने पहला कारण। राम गीता में भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया ना, अज्ञान में वास्य ही मूल कारण। हे लक्ष्मण, अस्य सारा संसारस्य जगतस्य मूल कारणम अज्ञान, तदहानमेवात्र विदो विधीयते। ब्रह्म विद्या का पूरा कोशिश यही है कि वो आद्या अविद्या, पहली जो अविद्या जगत कारण रूप रूपा जीव ईश्वर जगत आदि को निर्माण करने का पहले कारण रूपा अविद्या, ये अविद्या कहां थी बोलो, कहां थी? ये हृदगता। आद्या विद्या हृदगता, हृदगता माने हृदय में ही रहने वाली अविद्या। ऐसा नहीं है अविद्या ने जीव को बनाया और अविद्या कहीं और जगह रह गई और जीव कहीं और जगह रह गया, ऐसा नहीं। उसी हृदय में ही अविद्या भी है। परमात्मा को न जानने का जो मूल कारण है आवरण शक्ति, वो कहां है? हृदय में। इसलिए अविद्या आद्य अविद्या हृदगता, हृदयस्थ अविद्या के द्वारा हृदयस्थ परमात्मा आवृत हो रहा है। ये देखो, हृदयस्थ मूला विद्या के द्वारा हृदयस्थ परमात्मा क्या हुआ? आवृत हुआ, ढका हुआ है। परिणाम यह हुआ कि हृदयस्थ जीवात्मा हृदयस्थ परमात्मा को नहीं जान पा रहा है, वो लुका छिपी है। परमात्मा वहां छुप गए, अब जीवात्मा खोजे फिर रहा है, जान चुके वहां पहुंचकर खोजता नहीं है, वहां पहुंचता ही नहीं तो कहां से मिलेगा उसको? तो कहता परमात्मा नहीं मिले। निर्गता, आपकी कृपा से सबसे पहला काम क्या हुआ? हृदगता आद्य अविद्या निर्गता, हृदय में अनादिकाल से रहने वाली मूला विद्या आपके प्रभाव से कृपा से प्रसाद से निर्गता नष्ट हो गया, चला गया, हट गया। तो फिर हृदय में क्या आ गया महाराज? तो अविद्या चला गया, फिर आ सकता है कि नहीं? अविद्या फिर आ सकती है कि नहीं? बोले अब तो नहीं आएगी। क्यों? हृद्या विद्या हृदगता तत्प्रसाद, उस अविद्या के जगह उस हृदय में विद्या हृद्या हृदय में रहने वाली विद्या ब्रह्म विद्या आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान और विद्या हृदगता वो हृदय में अब प्रतिष्ठित हो गई। समझे कि नहीं? आदि अविद्या हृदगत हृदयस्थ अनादि यानी सारे जगत का कारण रूप अविद्या निकल के गया और परमात्मा को प्रकाशित करने वाला ब्रह्म विद्या हृदय में अब प्रतिष्ठित हो गया है। अब उसके हृदय में रहते हुए अविद्या दोबारे आने की संभावना नहीं है।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahima Stotra in Hindi, presented by Swami Nishtanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.

0: तत्व जिज्ञासु भाइयों बहनों माताओं, हम लोग 17वें अध्याय के भगवान श्री कृष्ण के द्वारा यज्ञ दान तप आहार वगैरह के बारे में जो भेद बताए हैं, उनमें से तप के भेद या स्वरूप का विचार हम लोग कर रहे हैं। क्यों भगवान ये बता रहे हैं? अर्जुन को ऐसा कौन सा प्रश्न उठा? तो देखिए, शुरू में अर्जुन ने यही पूछा कि भगवान, कार्य और अकार्य को करने के लिए शास्त्र ज्ञान आवश्यक है। अब सब लोग तो शास्त्रज्ञ है नहीं, किंतु श्रद्धा से जरूर अन्वित होते हैं, श्रद्धावान जरूर होते हैं। पूर्वाचार्यों से या परंपरा से जो प्राप्त ज्ञान है उसके अनुसार व्यक्ति यज्ञ दान तप वगैरह करते हैं, तो ये जो उनकी निष्ठा है, आहार यज्ञ दान तप वगैरह में ये जो निष्ठा है, वो निष्ठा का कौन सा स्वरूप है? सात्विक, राजसिक या तामसिक? ऐसा अर्जुन ने पूछा भगवान को कि जो शास्त्र विधि को नहीं जानते हुए किंतु श्रद्धा से कर रहे हैं, तो उनकी जो निष्ठा यानी कि स्थिति, वो स्थिति कौन सी है? सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है? अर्जुन, ये प्रकार जानने का कारण यह है कि सात्विक स्थिति हो तो वो ज्ञान का अधिकारी है, राजसिक या तामसिक हो तो वो अधिकारी नहीं होगा। इसलिए अर्जुन ये चाहता है कि भगवान, आप ये जो सत्कार्य है, आहार यज्ञ दान तप वगैरह, उनके आप भेद बताएंगे तो मैं उन भेदों में से सात्विक भेद को जानूंगा और तदनुसार अनुष्ठान करूंगा तो मैं भी ज्ञान का अधिकारी बन जाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में कहा कि हे अर्जुन, ये जो पुरुष है वो श्रद्धामय है। श्रद्धामयोयम पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव सः। और सबकी जो श्रद्धा है वो सत्व, रज और तम गुण के अनुसार हुआ करती है। इसलिए संसार में देख सकते हैं, श्रद्धा वाले तो सब होते हैं, किंतु वो श्रद्धा सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है, ये जानना बहुत बड़ी स्थिति है। आजकल हम संसार में देखते हैं कि जो उपासना स्वरूप, उपासना का स्वरूप है, देवता का जो स्वरूप है, उपासना की विधि का जो स्वरूप है, वो इतना बिगड़ता जा रहा है, विकृत होता जा रहा है कि वो उल्लास की जगह उन्होंने त्रासोल्लास का स्वरूप धारण कर लिया है, है क्या नहीं? तो ये बहुत जानना जरूरी है कि हम लोग जो कर रहे हैं क्या तामसिक कोटि का है, राजसिक कोटि का है या सात्विक कोटि का है। जब तक ये भेदों को नहीं समझेंगे, हम लोग ये नहीं चाहते कि हम तामसिक कोटि का करें, किंतु जाने अनजाने तामसिक कोटि का वो हो जाता है। स्पष्ट रूप से भेद हमारे सामने आ जाए तो हम जरूर सात्विक कोटि का ही ये आहार यज्ञ दान तप करने के लिए जरूर प्रयत्न करेंगे। तो मैं यही कहने जा रहा हूं इस गीता के संदर्भ में कि हम सब लोगों को ये आहार यज्ञ दान तप वगैरह जो है वो गीता में भगवान ने उनके असात्विक आदि तीन भेद बताए हैं। अब वो देख करके हम यदि करें तो कर तो हम रहे ही है, ये तो नहीं कि हम बिना करे रह सके। कोई व्यक्ति किए बिना तो रह ही नहीं सकता है। न ही कश्चित क्षण पे जातु तिष्ठति अकर्म कृत। भगवान ने गीता में कहा है कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भर मात्र भी किए बिना नहीं रह सकता। तो ये जो क्रिया का जो प्रवाह है वो पुण्य धर्म में ही बनाए। पहले तो क्रिया के प्रवाह को पहले धर्मानुरूप बनाए, धर्मानुरूप उसमें भी सात्विक कोटि का बनाए, किंतु ये कब बना सकते हैं? हमें गीता के संदर्भ में इनके स्वरूप को जानेंगे तब। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए आहार यज्ञ दान और तप के त्रिभेद बता रहे हैं। सत्व रज और तम ये भेद बता रहे हैं। उन भेदों में से हम तप के भेद का विचार कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तप के सात्विक राजसिक और तामसिक भेद बताना चाहते हैं, किंतु उससे पहले भगवान ये बताना चाहते हैं कि ये तप जो है वो शरीर से मन से और वाणी से तपा जाता है। शरीर का तप क्या है, वाणी का तप क्या है, मन का तप क्या है, पहले भगवान ये शरीर आदि भेद से तप का जो त्रैविध्य रूप है वो बता देना चाहते हैं। फिर भगवान ये कहेंगे कि ये किस प्रकार से किया जाए तो ये सात्विक कहा जाएगा, किस प्रकार से किया जाएगा तो ये राजसिक कहा जाएगा, या किस प्रकार से किया जाए तो ये तामसिक कहा जाएगा। इसलिए पहले हम ये देख रहे हैं ये शरीर वाचिक और मानसिक रूप से तप के तीन भेद, त्रिविध स्वरूप। शरीर से होने वाले तप के बारे में हम लोगों ने कल विचार किया, देवादि की पूजा, ब्रह्मा विष्णु शिव सूर्य और दुर्गा, ये पांच जो देव है वो हमारे सनातन धर्म के मुख्य रूप से इसकी पूजा उपासना की जाती है, पंचदेव उपासना। तो ये सब देवताओं की पूजा, द्विज यानी कि जो ये वैदिक अध्येता वर्ग है जो विद्वान है उनकी पूजा, गुरु की पूजा, गुरु में जैसे कल आपको बताया था माता और पिता को इसमें सम्मिलित कर लेना है, माता पिता और गुरुजी की पूजा, और प्राज्ञ की पूजा जो ज्ञानी पंडित है उनकी पूजा, शौच बाह्य और आभ्यंतर की पवित्रता, और आर्जवम यानी कि अकौटिल्यम जीवन में हर कार्यों में सरलता, और ब्रह्मचर्य निषिद्ध मैथुन, और अहिंसा और शास्त्र प्राणी पीड़न, जो शास्त्र में प्राणियों की पीड़न के लिए जो निषेध किया गया है वो निषेध के अनुसार चलना, यानी कोई जीव की हिंसा न करना, ये सब कार्य जो है यदि कोई करता है तो समझ लो कि वो शरीर से तप कर रहा है। ये जो है शरीर संबंधी तप है। ये 17वें अध्याय का 14वां श्लोक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि वाणी का तप क्या है। भगवान श्री कृष्ण 15वें श्लोक में वाणी का तप बता रहे। देखे वाणी के स्वरूप, वाणी का जो तप है उनके स्वरूप को देखे। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याया व्यसनम चैव वाङ्मयम् तप उच्यते। ये वाणी से तपा जाने वाला जो तप है उनका स्वरूप भगवान ने इसमें बताया। देखिए क्या कहते हैं भगवान अर्जुन को कि अर्जुन अनुद्वेगकरम वाक्यम, ऐसा वाक्य का उच्चारण, हम वाणी से ऐसा बोले जिसको सुनकर के किसी के मन में उद्वेग न होवे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम यदि बोले तो समझ लिए कि ये वो वाणी का तप है। अनुद्वेग करम वाक्यम उद्वेगम भयम, भगवान भाष्यकार कहते हैं उद्वेग का अर्थ है भय, यानी कि हम ऐसा ना बोले जिसको सुनकर के सामने वाला व्यक्ति भयभीत हो। बोलते समय बहुत ध्यान रखे कि हम ऐसा ही वाक्य बोले जिससे सामने वाला व्यक्ति डर न जाए, हमसे डर न जाए। ऐसा वाक्य बोले कि सामने वाले व्यक्ति के मन में हमारे प्रति विश्वास नहीं है, तो हम ऐसा बोले ताकि हमारे प्रति उसके मन में विश्वास उत्पन्न हो जाए। तो इस वाक्य को कहते अनुद्वेग कर्म वाक्यम। फिर आगे कहा सत्यम प्रिय हितम चयत। इतना ही नहीं, वो वाक्य भय उत्पन्न करने वाला हो इतना ही नहीं, भय उत्पन्न करने वाला न हो इतना ही नहीं, किंतु वो सत्य भी हो, प्रिय भी हो और हितकारी भी हो। ऐसा वाक्य का उच्चारण हम करें सुनने वाले के मन में भय न हो, उद्वेग न हो, और वो वाक्य सत्य भी हो, प्रिय लगने वाला भी हो और हितकारी भी हो। देखिए इससे ये यहां प्रतीत होता है कि हम लोग जब बोलते हैं तो पहले कितना ख्याल रख करके बोलना चाहिए, ये बात कह रहे। ये नहीं कि मुखम अस्ति इति वक्तव्य, मुख दिया है भगवान ने तो कुछ न कुछ बोलते रहे, ऐसा नहीं। बोलते समय बहुत ध्यान रखे कि हम बोल रहे हैं और सामने वाले को उद्वेग तो नहीं कर रहा। ठीक है, आप कहेंगे कि उद्वेग नहीं कर रहा है, कपटी व्यक्ति भी बढ़िया से बढ़िया बोलता है, बोलता है कि नहीं? सामने वाले की पीठ में यदि खंजर भोंकना है तो वो पहले बड़ी तैयारी करके आता है और ऐसे वाक्य बोल करके उसके मन में विश्वास उत्पन्न कर देता है। तो अनुद्वेग कर्म वाक्य तो वो भी हो सकता है, इसलिए वो यहां ग्रहण न हो जाए, वो तब के लिस्ट में उनका नाम न आ जाए, इसलिए भगवान ने आगे और भी तीन विशेषण दिए। नहीं तो जैसे कहते हैं कोई मीठे वचन बोलते हैं, चिकने चुपड़े चाशनी में डूबोए हुए, जैसे कहते हैं चाशनी में डूबे हुए वाक्य बोलते हैं, व्यक्ति चक्कर में आ जाता है, वो भी तो अनुद्वेग कर्म वाक्य है, किंतु वो सत्य नहीं है। भगवान आगे कहते हैं कि वो वाक्य कैसा होना चाहिए, सत्य भी होना चाहिए। सत्य ही हो इतना ही नहीं, प्रिय भी हो। प्रिय भी हो इतना ही नहीं, वो हितकारी भी हो, ये तीनों एक साथ में होने चाहिए, एक एक भी नहीं। आचार्य शंकरानंद जी यहां पर कहते हैं कि ये तीनों एक साथ में होने चाहिए, इसमें एक भी हो, जैसे सत्य हो, वाक्य सत्य हो, किंतु प्रिय ना हो तो वो नहीं बोलना चाहिए। यदि सत्य भी हो, प्रिय भी हो, किंतु हितकारी ना हो तो वो भी नहीं बोलना चाहिए। सत्य, प्रिय और हितकारी तीनों गुण उसमें होने चाहिए, और चौथा जैसे कहा उद्वेगकारी ना हो। मनुस्मृति आप लोग पढ़े होंगे, मनुस्मृति में मनु जी कहते हैं सत्यम ब्रुयात, सत्यम ब्रुयात, प्रियम ब्रुयात, न ब्रुयात सत्यम अप्रियम, सत्यम च नान्द्रितम ब्रुयात, एष धर्म सनातन। कहते हैं कि सत्यम ब्रुयात, पहले तो कहा कि बोले तो सत्य बोले, इतना ही नहीं साथ साथ में प्रियम च, प्रिय भी बोले, फिर कहा कि न ब्रुयात सत्यम, सत्य बोले पर ऐसा ना बोले कि जो अप्रिय लगने वाला हो। कई लोग कहते हैं ना, मेरे को तो सत बोलने की आदत है, मैं तो सबको सच सच बता देता हूं, मैं किसी की शय शर्म नहीं रखता हूं, हर किसी को जो है जो सच्चा है तो बता ही देता हूं, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन जब उनको कोई वो सत्य बोल देता है तो क्या हो जाता है? गुजराती में बोलते हैं, मैं तो बधाने साचो बोली जाऊं छू, हूं तो बधाने साचो कही दऊ छू, पर तने कोई साचो कैसे त्यारे, तब क्या होगा? तब पता चलेगा कि सत्य का क्या स्वरूप है, वो प्रिय है या अप्रिय है। इसलिए मनु जी कहते हैं सत्य हो लेकिन अप्रिय नहीं होना चाहिए। कई वाक्य ऐसे होते हैं वो सत्य होते हुए भी अप्रिय हो तो कहते हैं न ब्रुयात सत्यम अप्रियम। ठीक है, सत्यम च नान्द्रितम ब्रुयात, एष धर्म सनातन, और झूठ नहीं होना चाहिए, सत्य ही होना चाहिए, तो कहते हैं ये सनातन धर्म है। इसलिए भगवान भी इसी बात को ही ध्यान में रखते हुए यहां कहते हैं। देखिए आप लोग एक बात को ध्यान में रखें कि हमारे यहां श्रुति शास्त्र की संख्या का कोई पार नहीं है, कितने उपनिषद है हमारे यहां, स्मृति जो है स्मृति शास्त्र की संख्या का कभी कोई पार नहीं है, कई एक स्मृतियां है हमारे यहां, और सूत्र ग्रंथ भी इतने उनकी भरमार है, किंतु सबका जो तात्पर्य है वो है एक ही है। यदि आप विचार करेंगे तो सब जगह एक में ही मेल होगा उनका। अब मनुस्मृति में जो कहा है वही यहां भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं, किंतु भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न ऋषि के द्वारा भिन्न भिन्न माहौल में लिखी गई बातें होती है, तो कथन में भेद जरूर होता है किंतु जो कथ्य है वो एक ही होता है। इसलिए भगवान कहते हैं सत्यम प्रिय हितम चयत, सत्य भी हो, प्रिय भी हो और हितकारी भी हो। आचार्य शंकरानंद जी तो यहां कहते हैं कि जैसे वेद पाठ करते हैं, वेद पाठ करते हैं तो वो वेद पाठ जैसे उदात, अनुदात और स्वरित, ये तीनों स्वर से युक्त होना चाहिए। केवल उदात से हो इतना ही नहीं, अनुदात और स्वरित ये तीनों से युक्त होना चाहिए। वैसे ही यहां पर उन्होंने कहा कि वाक्य अनुद्वेग कर हो इतना ही नहीं, ये सत्यम प्रिय और हितकारी ये तीनों गुणों से सम्मिलित वाक्य होना चाहिए, केवल सत्य भी नहीं, केवल प्रिय भी नहीं और केवल हितकारी भी नहीं, तीनों गुण होने चाहिए। तो ऐसा जो वाक्य है उस वाक्य का उच्चारण यदि हम करें तो मान लीजिए कि हम वाणी का तप कर रहे हैं। अभी आगे आ रहे मानस तप में, वाणी का तप ये नहीं कि बोलना बंद कर दे। लोग यही समझते हैं कि बोलना ही बंद कर दो, बोलना बंद करना वो तप नहीं है। भगवान ने हमको वांग दिए तो चुप रहने के लिए नहीं है, चुप रहना किंतु असत्य के रूप में कि हम न बोले, यही जो है चुप्पी है। चुप्पी का अर्थ यह नहीं कि जो है जहां बोलने योग्य हो वहां भी न बोले। तो जो एक तो देखिए कोई व्यक्ति जो है अंट बंट संट बोल देता है तो उससे भी नुकसान होता है, ये तो आप देखते ही है, और उससे भी ज्यादा कई गुना नुकसान नहीं बोलने से होता है। लेकिन ये लोगों के ध्यान में नहीं आता कि देखो इन्होंने नहीं बोलने से जो नुकसान किया वो लोगों की नजर में नहीं आता है, लेकिन वो नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा उठाना पड़ता है। इससे अच्छा है कि जो वो बोल देता है तो उससे नुकसान तो थोड़ा होता है और उनका समाधान भी हो जाता है, किंतु यथार्थ बात नहीं बोलना, चुप रहना, उससे जो नुकसान होता है वो इतना लंबा चौड़ा नुकसान होता है कि उसका समाधान ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है, प्राय ऐसा देखने में आता है। तो देखिए ये नहीं बोलने का स्वरूप और बोलने का स्वरूप ये दोनों भगवान यहां बता रहे। इसलिए कैसा बोलना, तो कहा अनुद्वेगकारक वाक्य हो, प्रिय हो, सत्य हो और हितकारी हो। तो ऐसा यदि हम बोलने में समर्थ हो गए अभ्यास के बल से तो समझ लीजिए कि हम वाणी का तप कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, देखिए और वाणी का तप का वो क्या है, स्वाध्याय अभ्यसनम च एव, ये भी जोड़ दीजिए स्वाध्याय अभ्यसनम। देखे स्वाध्याय करना ये भी वाणी का तप है। आप लोग कर रहे हैं नहीं स्वाध्याय, ये स्वाध्याय तो है। रोज सुबह में फटाफट तैयार होकर के 7:30 को ध्यान में रखते हुए जैसे लोग भागा भागी ट्रेन में करते हैं वैसे ही हम भागा भागी करते हुए यहां पहुंचते हैं। तो आप ये मत समझे कि हम फालतू कोई समय बिगाड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं वो वांग्मयम तप का है भगवान ने, आप लोग गीता में पढ़ियो स्वाध्याय करना। और इससे भी और बढ़िया स्वाध्याय शब्दतः अध्ययन करना, जैसे इनके बाद तुरंत होता है 8:30 के बाद 8:45 और 9:30, 8:45 और 9:30 के बीच में जो होता है वो इससे भी अग्रिम कोटि का स्वाध्याय। ये भी स्वाध्याय तो है ही किंतु उससे जैसे हम लोग 100 रुपये को भी पैसे ही कहेंगे कि मेरे पास पैसे है, ठीक है कि नहीं, 1000 रुपये हो तब भी कैसे पैसे ही है मेरे पास, किंतु 100 में और 1000 में फर्क है कि नहीं, ठीक वैसे ही समझ लीजिए। ये भी स्वाध्याय ही है किंतु समझ लीजिए वो 100 रुपया और 1000 रुपये कोटि का जो है, ये तो दृष्टांत है, इसको पकड़ के मत रखियो कि 100 रुपये और 1000 रुपया, ये भेद दिखाने के लिए बता रहा हूं मैं। और इससे भी और आगे बढ़े हम तो इसके बाद जो होता है वो स्वाध्याय का वस्तु सत्स्वरूप है कि हम ग्रंथ का शब्द का अध्ययन करें, वो है स्वाध्याय। और ये स्वाध्याय को करना सज्जनों वो वाणी का तप है। भगवान गीता में यहां पर कहते हैं, देखो स्वाध्याय अभ्यसनम, स्वाध्याय का जो अभ्यास, स्वाध्याय का अर्थ है यहां पर वेद, स्वाध्यायस्य अभ्यसनम, यहां पर ऐसा अर्थ है स्वाध्याय का अभ्यास। तो अब स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय का अर्थ हमारे वहां आचार्यों ने कहा वेद। अब अभ्यसनम जोड़ दीजिए तो अब वेद अभ्यसनम हुआ। अब अभ्यसनम वो वर्तमान कोटि में कंटिन्यू प्रक्रिया का अर्थ है। अब आपको उसको स्थिर रूप में बोलना है तो कह सकते हैं वेदाभ्यास। अब बताइए भला वेद क्या है? पता है वेद किसको कहते हैं? तो हम लोग वेद के नाम तो जरूर जानते किंतु वेद के स्वरूप को आज हालत यह है कि हम नहीं जानते। हम अपने को वैदिक सनातन धर्मावलंबी कहते हैं, ये भी कहते हैं कि हमारा जो धर्म है वो वेद मूलक है। और चार वेद है इतना ही जानते, और विडंबना ये होती जा रही है कि हमारे बच्चे को आजकल पूछा जाए वेद क्या है तो कहेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे कि वेद क्या है, तो हम लोग उनको ये बता नहीं पाते हैं कि वेद क्या है, क्योंकि हम लोगों को भी पता नहीं है। देखिए वेद क्या है? धर्म ब्रह्म प्रमाण वाक्यम वेद। धर्म में और ब्रह्म में जो प्रमाण वाक्य है उनको कहते हैं वेद। ये वेद का वैसे तो कई प्रकार से स्वरूप बताया गया है किंतु ये है वेदत्व जो धर्म और ब्रह्म को बता देवे। क्यों? धर्म और ब्रह्म अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं है? नहीं है। धर्म के स्वरूप को या साथ साथ में अधर्म भी ले सकते हैं। ये हम क्या धर्म है क्या अधर्म है वो हम तर्क के द्वारा कभी उनको सिद्ध नहीं कर सकते। हम बाहर से प्रमाण के विचार किए बिना, वैदिक प्रमाण का विचार किए बिना किसी चीज को धर्म या अधर्म नहीं ठहरा सकते हैं। हम अपने आप किसी चीज में ये नहीं कह सकते हैं कि ये धर्म है या अधर्म है। ये कोई मनुष्य बुद्धि का फल नहीं है। आजकल के समय में हर चीज को तर्क के द्वारा परखा जाता है और उससे आगे कहते हैं विज्ञान के द्वारा इनको परखी जानी चाहिए, किंतु कुछ चीज ऐसी भी है जहां पर विज्ञान की भी पहुंच नहीं है। आजकल के बुद्धिजीवी वर्ग हर चीज में ये सोचता रहता है कि ईश्वर के बारे में भी कहते हैं वो बुद्धि का विषय है। तो आजकल आप अखबार में देखते हैं कि न जाने कैसी कैसी बातें आती है। आजकल एक लेखक की एक पुस्तक बड़ी प्रसिद्ध हो रही है, वो नाम पूरा याद नहीं, से कुछ द लीजेंड का ऐसा कुछ नाम है, और उसका लेखक भी कोई है स्टीफन हॉकिंग ऐसा नाम है। तो वो उनकी बड़ी चर्चा आ रही है आजकल। वो कहते हैं कि मैंने इतने सालों के अभ्यास से ये पाया, मैंने जाने ये कोई भौतिक शास्त्र का वो अध्यापक है कोई वैदेशिक यूनिवर्सिटी में, तो वो कहता है मैंने इतने सालों के अभ्यास से ये निर्णय पर पहुंचा और ये पाया कि इस संसार के उत्पत्ति में ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। कहते हैं ये जो संसार चल रहा है वो कहते हैं कुछ भौतिक शास्त्र के नियम के अनुसार चल रहा। उनको पता, उनको ये पूछा जाए कि ईश्वर से नहीं चल रहा, भौतिक शास्त्र के नियम से ही तुम बताओ, तो फिर ये भौतिक शास्त्र के नियम क्या है जो जिससे संसार तुम कहते हो चलता है, ये क्या बला है? भौतिक शास्त्र के जो नियम है वो क्या बला है? वो कहां से आए? वो कहां से उत्पन्न हुए? किससे उत्पन्न हुए? वो किसने बनाए वो नियम? तो उनके पास कोई उत्तर नहीं है। वो तो यही कहते हैं कि बस भौतिक शास्त्र के नियम स्वभाव से, कई लोग कहते हैं स्वभाव से चलता है। अब ये स्वभाव क्या है जो जो ये सारे संसार को चला रहा है, इतना समर्थ और शक्तिशाली है जो स्वभाव, वो क्या है? इसका तो भी तो विचार करना पड़ेगा कि ये जो स्वभाव चला रहा है या कौन चला रहा है। तो बुद्धिजीवी वर्ग जो है इसके चक्कर में आकर के वो भी अखबार में न जाने ऐसी बातें लिखते हैं कि देखो अब ये संदर्भ, ये अब सोचने की समझने की बात आ गई कि ईश्वर के बारे में सबसे ज्यादा विचार कह रहे हमारे भारतवर्ष में और हमारे ऋषि मुनि आचार्यों ने किया।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम shaivam.org। ओम नमः शिवाय।
2: Dear listeners of shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 2, Sukta 1. Thank you.

0: ஓம் நம சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் தைத்திரியோபனிஷத் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஆனந்த அந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: பக்தி சக்தி சுனந்தா வாஸ்தல் மெய் மாதாவோ விஷ்ணு மெய் வேணோ ஆத்மஸ்வரூபந்தோ தைத்திரியோ ஆரண்யக்கோ கி தைத்திரிய உபனிஷத் கே மாத்யம் சே பிரசங்க சல் ரஹா ஹே ஜிஸ்கே அந்தர்கத் व्याख्याकार जिन्होंने हिंदी टीका की वह मंगलाचरण करते हुए संकेत करते हैं कि यही निवे गुरुभि पूर्वम पदवाक्य प्रमाणतः व्याख्याताः सर्ववेदान्ता तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। संकेत उन्होंने किया कि पूर्व काल में अर्थात जहां से सृष्टि प्रारंभ हुई और सृष्टि के प्रारंभ में ही जिस परमात्मा ने उस सृष्टिकर्ता को ज्ञान दिया, प्रहरण करके शब्द कर दिया माने ज्ञान भी दिया साथ, और जिसने ज्ञान दिया और जो ज्ञान अभिन्न रूप से रहने वाला उसकी सत्ता के साथ में ज्ञान की अभिन्नता, ऐसा नहीं कि सत्ता अलग हो और ज्ञान अलग, जहां उसकी सत्ता है वहां ज्ञान भी विद्यमान, ये संकेत किया। ऐसा करके फिर वहां से प्रवाह चला और प्रवाह का क्रम भी आपने उपनिषदों में सुना है। उपनिषदों के अंतर्गत चर्चा आती है कि उस ब्रह्मा ने सृष्टिकर्ता ने उस ज्ञान को आगे प्रवाहित कैसे किया, तो वह आपने सुना है कि ब्रह्मा ने प्रजापति ने अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह ये संकेत दिया। किसको उस ज्ञान को कहा, तो संकेत किया कि अथर्वा को, और वो क्या है, ज्येष्ठ पुत्र, प्रथम पुत्र। ऐसे उस अथर्वा को उन्होंने वहां पर जो है वो ज्ञान, अब उस ज्ञान में कोई शर्त नहीं है, ध्यान रखना, वहां पर जो ज्ञान का प्रवाह हुआ उस ज्ञान में नियम या कोई शर्त नहीं, सीधे सीधे जो है ब्रह्मा से वह ज्ञान किसमें आया, कहा अथर्वा में आया। आगे चल करके जहां सत्यवाय भारद्वाज आए प्राह और सौनक, तो सौनक जहां पर आए हैं वहां से नियम चला, तो वहां तो कहा विधिवत उपसन्न, विधि के अनुसार वो वहां पर आचार्य के पास जाते हैं, और विधि के अंदर तो विधि क्या है, तो समित पाणियम सोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसृत्य, इस विधि का प्रारंभ वहां से हुआ। उससे पूर्व में जो क्रम आया है अथर्वा ने भी आगे प्रवाह बढ़ाया, तो वहां पर ऋषियों को वो ज्ञान स्वाभाविक रूप से प्राप्त हुआ, ये चर्चा आई। लेकिन आगे चल करके सौनक से जो है क्या है, वहां नियम विधि की चर्चा आई, उससे पहले कोई विधि और कोई नियम क्यों, तो वेद ही ज्ञान है और उस ज्ञान में भी

0: फिर आगे चल करके विधि जो की गई, और आगे भी कहते विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन, जहां अधिकारी की वेदांत के अधिकारी की चर्चा की, वेदांत का अधिकारी कौन, तो वहां यही संकेत किया विधिवत अधीत है ना, वेद वेदांगत्वेन और अधिगत आपाततः, और उसके अर्थ को उसने अच्छी तरह से जान लिया। फिर उसके बाद नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासना अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमसः है ना, निर्मल स्वांतः वेदांतस्य अधिकारी, ये चर्चा की। तो वेदांत के अधिकारी की बात की, लेकिन उससे पूर्व में कोई वहां अधिकारी की बात नहीं की, सीधे सीधे ज्ञान आया। क्या मतलब इसका? इसका सीधा सा मतलब है वहां पर जो शब्द दिया है अथर्व। तो देखो हमारे वेद को लेखर के पहले उसमें विभाग नहीं, वेद के विभाग तो बाद में हुए। पहले तो वेद सीधा था, क्या था? ज्ञान। वेद का मतलब है ज्ञान, और जो सत्तात्मक ज्ञान। लेकिन आगे जो है विभाग किए गए, तो विभाग करने की आवश्यकता क्या पड़ी? तो तुलसीदास ने एक बड़ी सुंदर बात की कि बूंद परत जिमि ढावर पानी है? और तिम जीवे माया, ये संकेत किया। क्योंकि जैसे राजस्थान में आप देखते हो वर्षा होती है, नदी प्रवाहित होती है, लेकिन नदी का प्रवाह प्रारंभ में तो दिखाई देता है और फिर वो प्रवाह गायब, क्योंकि वालुका अधिक है, तो वालुका में वह प्रवाह ही उसका गायब हो जाता, माने चारों तरफ फैल जाती है, तो नदी का स्वरूप ही नहीं रह जाता। अब वहां पर क्या करना चाहिए? तो नदी के लिए फिर खुदाई करनी पड़ेगी, तो ये नियम आएगा, तब नदी नदी रहेगी। इसी प्रकार से यहां पर भी संकेत किया कि जब प्रवाह होता है तो प्रवाह के अंतर्गत उस पृथ्वी की स्थिति को लेकर के आया, हृदय की स्थिति को लेकर के, अंतःकरण की जीव की स्थिति को लेकर के, वह ज्ञान जो है वो फैल जाता। और जब ज्ञान फैल जाता है तो ज्ञान का जो नदी रूप से स्वरूप, एक सरथा रूप से स्वरूप होना चाहिए, वो रह पाता नहीं, ठीक है? इसलिए फिर वहां नियम की आवश्यकता पड़ती, ये सब चर्चा। तो अब जो है ऐसा जब आया, इसी को गीता में भगवान ने कहा सकाले नेह महता योगो नष्ट पर, जिस योग को मैंने वैवस्वात आदि से कहा, इच्छा को आदि से फिर कहा गया, वही मैं तेरे लिए कह रहा। कोई वो नवीन नहीं है, वस्तु वही है, लेकिन कालक्रम के अनुसार उसमें लुप्त प्रायता आ गई, इसलिए उसको पुनः जो है उद्घाटित करने के लिए, उन्हें उसको पुनः प्रस्थापित करने के लिए, और हम इस योग को तेरे से कह रहा, ये चर्चा की। ठीक है, नहीं क्यों? जिसे हम जीव कहते हैं, तो जीव है क्या? तो अविद्या से उपहित का नाम ही जीव है, अंतःकरण की उपाधि से उपहित का नाम जीव है, और जब जीव है तो अविद्या होने के कारण उसमें प्रमाद होना भी स्वाभाविक, क्योंकि अविद्या ही विस्मृति रूप है, इसलिए वहां प्रमाद की स्थिति होने के कारण प्रमाद वसात वह जो क्रम था योग का वो समाप्त हो जाता है, इसलिए क्रम सुचारू रूप से बना रहे तब उसके लिए नियमों का पालन करना, और नियमों में भी फिर जो है उसको व्यवस्था देनी होती। तो इसलिए जो है जब उस वेद के अर्थात ज्ञान के स्वरूप को सीधा सीधा हम प्राप्त नहीं कर सके, तब उसमें भाग कर दिए गए। क्या कर दिए गए? भाग कर दिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद, ये चार भेद किए। इन चारों वेदों को करके तो ऋक् ऋचाओं से उपलक्षित जो है उसका नाम है ऋग्वेद, और यजुर्ऋचाएं माने कर्म परक ऋचाएं, उपासना परक ऋचाओं से उपलक्षित जो है वो क्या है? तो यजुर्वेद। और जहां पर उद्गीत उक्त या जो है शांति का परचायक, उपासना के पश्चात, कर्म के पश्चात क्या होता है? आपको एक प्रसन्नता, एक शांति प्राप्त होती है, और जहां शांति होती है, जहां प्रसन्नता होती है, तो आपका हृदय में जो आनंद है वो उल्लसित होकर के वो बाहर निकल पड़ता, गीत बन जाता। इसलिए वेद जो सामवेद है उक्त प्रदान है, गीत प्रदान है, शांति का परचायक, इसके लिए उसका नाम ही रखा गया साम। आगे संकेत किया अथर्ववेद, तो ये क्या है? अभेदात्मक ऋचाओं से उपलक्षित जो है उसका नाम है अथर्ववेद। अर्थात अथर्व शब्द का अर्थ क्या है? न थर्वा इति अथर्वा, जहां थर्व नहीं है, और जहां थर्व नहीं है उसे क्या कहोगे? अथर्व। थर्व क्या है? थर्व का नाम है छिपाव कपट। थर्व का नाम क्या है? छिपाव या कपट। तो जहां पर किसी प्रकार का छिपाव नहीं है, जहां पर किसी प्रकार का कपट नहीं है, तो वहां पर क्या है? वहां पर वो ज्ञान जब छिपाव नहीं, कपट नहीं, कोई अवरोध नहीं, तो वो ज्ञान कैसा होगा? सीधा सीधा। जब सूर्य का प्रकाश आता है और खुला हुआ आकाश है तो वहां तो सीधा सीधा प्रकाश होता है, वहां कोई प्रतिबंध नहीं। लेकिन यदि वहीं पर हमने दीवारें बना दी, कमरा बना दिया, तो कमरे में प्रकाश कैसे आएगा? विंडो से आएगा, है झरोखों से आएगा, तो सीधा सीधा नहीं आ पाएगा, तो क्योंकि वहां दीवारों का की प्रतिबंधता आ गई। ठीक इसी प्रकार से वहां जो अथर्व, जहां कोई छिपाव नहीं, तो अथर्वा शब्द का भी अर्थ क्या है? जहां किसी प्रकार की थर्वता नहीं है, जहां किसी प्रकार का छिपाव नहीं है, कोई अवरोध जहां नहीं, तो वहां तो ज्ञान सीधा सीधा आया। लेकिन आगे जब अंतःकरण की उपाधियां बन गई तो क्या हुआ? तब ज्ञान तो आया, लेकिन वो ज्ञान फिर झरोखों से होकर के आता, कहीं बुद्धि के, मन के आदि है, झरोखों से होकर के आता, इंद्रिय आदियों से होता हुआ। इसलिए उस ज्ञान में हमें क्या दिखाती? जैसे प्रकाश में अल्पता दिखाई देती, उसमें व्यापकता दिखाई नहीं दे, ऐसे ही हमारे में भी जो ज्ञान है वो भी कैसा दिखाई देता? अल्प। तो हम कहते हैं है? अल्पज्ञ है, ज्ञान से जो अवच्छिन्न है वो क्या है? जीव है, है ना। और सर्वज्ञ तो ज्ञान विशिष्ट जो है वो क्या? वो परमात्मा। ये सब कल्पनाएं होती, तो यहां विभाग चलते रहते फिर। लेकिन वेदांत क्या बतलाता? वेदांत कहता है कि जहां पर कोई भाग नहीं, जहां कोई विभाग नहीं, उसका नाम क्या है? वेदांत। मन जो सिद्धांत है, अर्थात जहां पर किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है, जो चारों तरफ आप्यायित हो रहा है, उसका नाम है वेदांत। तो ऐसे वेदांत का व्याख्यान किया, कब किया? तो पूर्व शब्द का प्रयोग किया, पूर्व ऋषियों ने, तो वो क्रम से आया। इसलिए आप बोलते भी हो नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरं च व्यासम सुखम गौड़ पदम महंतम गोविंद योगींद्र, ये सब परंपरा भी गिनाते हो, है ना। तो अब जो है वहां तक जो है जब ज्ञान आया ब्रह्मा से लेकर के और जो है अथर्वा सत्यवा आदि भारद्वाज आदि तक, तो वहां तक कोई नियम नहीं, वहां तक वो वेदांत सीधा का सीधा आया, वो ज्ञान सीधा का सीधा आया। लेकिन आगे चल करके शौनक ऋषि से जब परंपरा आई, तो वहां से फिर जो है परंपरा बदलने लगी, अर्थात वहां विधि का, नियम का जो है रूप प्रस्तुत किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि वहां पर जो है अवरोध आ गया, ये सब संकेत किया। तो वही संकेत किए पूर्व शब्द से, अब शौनक आदि जो ऋषि हैं उन्हें भी ग्रहण करेंगे, और उससे पूर्व जो हैं ऋषि उन्हें भी ग्रहण करेंगे। अब जहां प्रकाश सीधा सीधा आता है, तो वो जो होगा कैसा प्रकाश होगा? वो व्यापक प्रकाश होगा, विशुद्ध प्रकाश होगा, उस प्रकाश में कोई नूनच करने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे उन पूर्व के ऋषियों को द्वारा और जिन्होंने उसके पश्चात ग्रहण किया, तो प्रमाणों के बल पर ग्रहण किया। कैसे किया? प्रमाणों के बल पर ग्रहण किया, पद के बल पर ग्रहण किया, वाक्य के बल पर ग्रहण किया। तो जिन्होंने पद, वाक्य और प्रमाणों के बल पर ग्रहण किया, ऐसे उन ऋषियों ने भी वही ज्ञान ग्रहण किया जो पूर्व में जो है बगैर उसके सीधे सीधे उन्होंने ग्रहण किया था, उसी ज्ञान को उन्होंने भी ग्रहण किया। ऐसा जो वेदांत, ऐसे उस वेदांत को ही उन्होंने संकेत किया कि मैंने पूर्व से सुना। अब थोड़ी सी चर्चा करने बात आ गई, तो ऋग्वेद के अंतर्गत जितनी भी ऋचाएं हैं वो सारी ऋचाएं किसका प्रतीक हैं? तो बतलाया जाता है कि समस्त ऋचाएं स्तुति परक हैं। ऋग्वेद में जितनी भी ऋचाएं हैं वो कैसी है? स्तुति परक है और यजुर्वेद में जो ऋचाएं हैं वो कर्म परक है और सामवेद में तो है बिल्कुल प्योर कहते निखालिस क्या है उपासना परक, ठीक है। और अथर्ववेद में जो है वो ऋचाएं कैसी हैं तो कहा ज्ञान परक है या अभेद परक है, अभेद की परचाय का ज्ञान परक ये संकेत किया। अब देखो स्तुति की चर्चा आई, स्तुति क्या है तो आप सब जानते हो, स्तुति का मतलब ही होता है हम जिसकी स्तुति करते हैं उसकी महिमा का बखान करते हैं। परमात्मा की स्तुति करते हो तो कहते हो करुणा वरणालय है, दीन बंधु है, सृष्टा है, हैं वो ये क्या है पालन करता है लय करता है, सारे धर्म उसमें हम आरोपित कर रहे और फिर उससे हम चाहते हैं उन्हीं धर्मों को, ठीक है ना। तो स्तुति का मतलब प्रार्थना, प्रार्थना माने अर्थना चाहना, उससे हम कुछ चाहते हैं और जिससे चाहते हैं तो उसके सम्मुख होना पड़ता और सम्मुख होकर के उसकी प्रशंसा करनी पड़ती। तो ऋग्वेद जो है वो किसका परिचायक है, स्तुति का परिचायक। तो ये समझ लो तो हम उसके सम्मुख कब हो पाएंगे, तो सम्मुख होने के लिए यदि वो कहीं दूर है तो क्या करना पड़ेगा, हमें चल करके जाना पड़ेगा, उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा तो ये ऋग्वेद हो गया किसका प्रतीक, स्तुति का प्रतीक या चलने का प्रतीक, परमात्मा की तरफ जाना उस सिद्धांत की तरफ जाना ये क्या हो गया, ये चलना हमें सिखाता है कौन, ऋग्वेद। इसका मतलब क्या हुआ, चलना हमें सिखाता है ऋग्वेद और चलकर के हम वहां पहुंच गए तो वहां पर अब हमें जो प्राप्त करना है तो उसके लिए हम उसकी प्रशंसा करेंगे उसकी स्तुति करेंगे और फिर कुछ न कुछ तो कर्म करना पड़ेगा, वाणी से उच्चारण करेंगे तो ये कर्म ही तो होगा, तो कर्म करना पड़ता, तो कर्म का प्रतीक कौन हो गया, यजुर्वेद। अब चलना किससे होगा तो पैरों से, चलना किससे होगा पैरों से और कर्म किससे होगा तो हाथों से गले से है ऊपर धड़ से ही मान लो, पूरे धड़ से क्या होगा का कर्म होगा, है ना। और अब जब हमने कर्म कर लिया और उससे प्रसन्नता प्राप्त हुई और प्रसन्नता प्राप्त हुई हृदय उल्लसित हुआ तो जब हृदय में उल्लास आएगा और वो उल्लास जब फूट करके निकलेगा, वो आनंद जब फूट करके निकलेगा तो कहां से निकलेगा, गले से, मुख से, कंठ से, है ना। तो आगे जो है शांति का परिचायक जो है कौन है, सामवेद। तो गले का तो इसका मतलब हुआ कि पैर से चलना, शरीर से कर्म करना और अपने हृदय में जो उस कर्म करके हमें जो फल मिला है या जो शांति मिली है उसको जो है अपने गले के द्वारा जो है क्या करना, प्रकट करना, उसका नाम है सामवेद, वो शांति का परिचायक। तो इसका मतलब क्या हुआ, पैरों का प्रतीक हो गया ऋग्वेद, ऐसे समझ लो, और हमारे धड़ का प्रतीक हो गया यजुर्वेद और गले का प्रतीक हो गया सामवेद। और आगे इन सहारे पर जो है कंट्रोल करने वाला आपका सिर मस्तिष्क और वो सबके साथ अभेद रखने वाला क्या है, अभेद। तो वो सिरस्थानी सर्वश्रेष्ठ ऊर्ध्व है, तो वो जो है अभेद का परिचायक। तो अथर्ववेद में सबका अभेद कहां होगा, काया, तो वो अभेद का प्रतीक। तो अथर्ववेद किसका है, सिर का प्रतीक हो। तो अब बताओ वेद का सारा स्वरूप कहां आ गया, शरीर। तो समस्त जो है ये संसार भी ऐसे ही क्या है, का वेद रूप है, ही तो वेदांत बता ला। वेदांत का मतलब है जो एक सत्ता का प्रतिपादन करने वाला, तो सारी सत्ता किसकी हो गई, उसी की हो गई, उससे भिन्न तो कोई सत्ता हुई नहीं, है ना। इसी को दृष्टांत देकर के लोग समझाते हैं कि एक कोई संभ्रांत व्यक्ति थे, उनका बड़े बड़े शहरों में सर्वत्र बढ़िया अच्छा बिजनेस भी चल रहा था और वो बड़े धर्मशील नीतिवान निपुण व्यक्ति थे, चार उनके बच्चे थे, और चारों बच्चे भी उनके अनुयायी थे, उनके अनुकूल चलने वाले थे। तो अब जो है वो आनंद से रहते थे और पूरी तरह से सारे साधन उनके पास थे। उनके मन में विचार आया, अब मेरी वृद्धावस्था आ गई और हो सकता है कभी न कभी मुझे जाना होगा, इसलिए ऐसा करूं कि हमारे पास जो साधन है अभी तो सभी आनंद में हैं, अब ये जो साधन है इन साधनों को ऐसा निहित कर दिया जाए जिससे भविष्य में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध आ जाए तो इन बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। और यदि इसी प्रकार से हम छोड़ देंगे तो ये जो है उसे उच्छृंखलता में बर्बाद भी कर सकते हैं हमारे न होने पर। ऐसा विचार करके उन्होंने जो है स्वर्ण खरीदा और एक स्वर्ण खरीद करके वॉक्स बनवाया और वॉक्स बनवा करके उस वॉक्स को लेकर के अपने खजाने की एक कोठरी में और 10 फीट गड्ढा खोद करके और उसमें उसको दबा दिया और उसी दीवार पर जो है लिख दिया कि मैंने जो है ये वॉक्स इतने फुट पर और इस पृथ्वी के नीचे दबाया है जिसमें इतने कुंतल सोना है। ये लिख के छोड़ दिया, अब ये लिख के छोड़ दिया और बंद कर दिया उसको। उसके पश्चात जब उनका समय आने पर शरीरांत हो गया, बच्चों ने उनका जो है यथाविध जो भी संस्कार आदि होता है वो सब किया, उसके पश्चात बच्चे जो है अपना कारभार करने लगे तो धीरे धीरे बिजनेस जो है घाटे की तरफ जाने लगी। जब घाटे की तरफ जाने लगी तो विचार किया कि पिताजी ने संपत्ति तो बहुत थी, कहीं न कहीं जरूर उसको नियत किया होगा, उसको देखा जाए, सारे वही खाते आदि देखे। तो एक खाते में उन्होंने लिख भी रखा था, जैसे वहां दीवार पर लिखा था वैसे खाते में भी लिख दिया। वो उनका जो है खाता देखा तो अमुक कक्ष में और इस प्रकार से इतना जो है स्वर्ण हमने वॉक्स में इतने फुट पर ये सब लिखा हुआ देख का ठीक है। अब जब देखा तो देख करके कोठरी को खोला, कोठरी को खोल करके उन्होंने जो है खुदाई की, खुदाई की तो वॉक्स तो मिल गया, वॉक्स मिल गया है, लेकिन वॉक्स को खोला तो बॉक्स खाली निकला। अब विचार करने लगे कि ये बॉक्स तो खाली है, पिताजी झूठ तो लिखेंगे नहीं, तो सोना कहां गया? तो कल्पना करने लगे किसी ने उड़ा दिया है, तंत्र मंत्र किसी ने कर दिया। इधर जो है बिजनेस धीरे धीरे अधिक घाटे में गई, जहां पर शहरों में उनकी बिजनेसें थी सारे वहां के जो है फैक्ट्रियां आदि भी बिक्री होने लगी और धीरे धीरे इतना हुआ कि उनमें जो उनके बड़े बड़े भाई थे वो भी जाने, छोटा भाई रह गया। इधर जो है बड़ी स्थिति नाजुक हो गई, अब बड़ा दुखी था, दुखी था तो दुखी होकर के बेचारा बैठा हुआ था। इतने में उनके एक मित्र, उन वृद्ध के जो मित्र थे वो कहीं बाहर थे, संयोग से बाहर से उनका आना हुआ और उसके ही यहां आ गए, और आ गए तो उसे दुखी देखा, उसकी सारी स्थिति परिवर्तित देखी, पूछने लगे। पूछा तो उसने सब बताया, कहा पिताजी के पास तो बहुत था, उन्होंने जरूर कुछ न कुछ किया होगा, वो बड़े बुद्धिमान थे। कहने लगे वो तो हमने देखा, वही खाते में इस प्रकार से लिखा था और इस प्रकार से उसको हमने खोजा भी, खोदा भी, लेकिन वो तो खाली निकला। वो वृद्ध थे हैं? तो सो न सवा जा वृद्ध न तेजे पड़े कछ नाई, ते न पड़े जिन साधु न साधित, दीह दया न दिपे जिन माई, सोध न दया जो धर्म धरे धर, और धर्म न जो सो जो बसे छल छाई। तो वृद्ध की बड़ों परिभाषा की, हमारे पूर्वजों को इसलिए जो है वृद्धोपदेश भी माना गया शास्त्रों। अब उन वृद्ध ने कहा कि आप चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने जो लिखा वो गलत नहीं लिखा, और सोना किसी ने उड़ाया भी नहीं, तुम्हारा सोना भी मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन एक काम करना होगा। कहा क्या? एक हथौड़ा और एक छेनी लानी होगी। कहा ठीक, और कल जो है प्रातः काल हम तुमको तुम्हारा सोना प्राप्त करवा दें। उसने कहा ठीक। उसने जाकर के हथौड़ा ले आया, छेनी ले आया। सुबह जैसे हुआ वृद्ध आए, उन्होंने कहा चलो अब वो वॉक्स कहां है हमको दिखलाओ। ले गए वॉक्स के पास, जाकर के उन्होंने कहा छेनी इस पर रखो और ऊपर से हथौड़े से चोट मारो। जैसे ही उसने हथौड़े से चोट मारी तो क्या हुआ, वो वॉक्स ही सोने का बना हुआ था। सोना उसने रखा हुआ नहीं था, लिखा तो था उन्होंने, वॉक्स ही क्या था, सोना। केवल उस पर स्टील की ऊपर से पॉलिश, उसके रूप को जो है केवल उस पर आरोपित किया गया था, लेकिन वॉक्स क्या था, सोना ही था। और उसको नाम एक दे दिया गया था, क्या, वॉक्स। ठीक इसी प्रकार से जैसे ये युक्ति बतलाई वैसे ही शास्त्रों में भी लिखा है, हम लोग भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं?
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Shvetashvatara Upanishad ke dusra adhyay ka satava mantra dekhna. Savitra prasavena, jusheta brahma purvam, tatra yonem krinavase, nahite purtam akshipat. ये बता रहे हैं ध्यान कहाँ करना चाहिए। अन्य बात, सविता के अनुज्ञा से फायदा क्या क्या लाभ और अनुज्ञा न लेने पर क्या हानि है ये बता रहे हैं। तो कल के प्रसंग में आपको बताया थोड़ा रह गया था, तस्मात् प्रथमम् यज्ञादि अनुष्ठानम् ततः प्राणायामादि ततः समाधि ततो वाक्यार्थ ज्ञान निष्पत्ति ततः कृत्यता इति। देखो, जीवन की सफलता कहाँ से हो, कहाँ तक, ततः कृतकृत्यता कदा, तस्मात् प्रथमम् यज्ञादि अनुष्ठानम्, पहले क्या करना चाहिए। हाँ, यज्ञादि का अनुष्ठान करना चाहिए। क्यों? यज्ञदाना तप कर्मा पावनानि मनीषी नाम आया कि नहीं। गीता के 18वां अध्याय में अर्जुन ने पूछा था भगवान से, यानी बात, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्याग सा ऋषि के सा पृथक पेशी निषूधन हो। त्याग किसको कहते हैं, संन्यास किसको कहते हैं, अलग अलग मैं जानना चाहता हूं। अन्य बात, तो भगवान ने क्या बोला, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। काम्य कर्मों का त्याग देने का नाम संन्यास, ऐसा कुछ लोग कहते, कवि लोग कहते। सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्याग विचक्षण, विद्वान लोग कहते सर्व कर्म फल त्याग देना चाहिए, है ना। सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षण, इसको त्याग कहते विद्वान लोग। आगे चल करके भगवान बोलते यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। तीन बातें याद रखना, यज्ञ दान तप, ये तीनों जो है ना, त्याग नहीं करना, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम, ये त्याज्य नहीं है, यह नहीं है, त्याग करने लायक नहीं है। यज्ञ दान तप कर्म क्यों, यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणम, पवित्र करने वाला है। आनी बात, तो कहते यज्ञ दान तप करने से क्या होगा, पवित्र होगा। यह इस बात को बतला रहा है, देखो पहले क्या करना चाहिए। यज्ञ अनुष्ठानम, उस यज्ञ भी कैसा है, श्रोत यज्ञ स्मार्त यज्ञ पूर्त यज्ञ इष्ट पूर्त मन्यमाना वरिष्ठम, इष्ट कर्म और पूर्त कर्म, श्रोत यज्ञ स्मार्त यज्ञ ये है। तो यज्ञादि अनुष्ठानम करोगे इससे क्या होगा, यज्ञादि अनुष्ठान है ना, परंपरा साधन है, परंपरा साधन है। इसके बाद कहते प्राणायाम आदि ततः कुरिया, यज्ञदान आदि किया, इसके बाद में प्राणायाम, आदि शब्द से लेना प्राणायाम, प्रत्याधारणा ध्यान समाधि जो भी है साधन, यज्ञानुष्ठान योगानुष्ठान तथा समाधि ही, इसके बाद तो समाधि आएगा। हाँ, समाधि तथा वाक्यार्थ ज्ञानम, इसके बाद में वाक्यार्थ ज्ञान, वाक्यार्थ माने तत्त्वमस्यादि महावाक्यों का ज्ञान का विचार, तत्त्वमस्यादि महावाक्य का विचार, वाक्यार्थ ज्ञान। आपने गुरु के पास गए, अंतकरण शुद्ध करके गुरु जी से कहा को हम कथमिदम जातम कर्ताश्य को विद्यते, मैं कौन हूँ, इस जगत कहाँ से आया, इसका कर्ता कौन है, ये कहाँ कैसे स्थित है, ये सब बात जब गुरु से प्रश्न करोगे तो गुरु उन सब प्रश्नों का उत्तर देते हुए तुमको महावाक्य का उपदेश करेगा। वाक्या समाने तत्त्वमसि आदि महावाक्यों का विचार, जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में आप लोग सुना कि नहीं, भृगुर्वै वारुणी वरुणम पितरम उपसर आदि भगवो ब्रह्म इति, भृगुर्वै वारुणी वरुण का पुत्र जो वारुणी है, भृगु है भृगु, वो पिता वरुण के पास जाकर के प्रश्न किया, आदि भगवो ब्रह्म इति, ब्रह्म का उपदेश कीजिए, और पिता ने कहा तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्म इति, तपस्या के द्वारा ब्रह्म को जानने का कोशिश करो, तब ही ब्रह्म है। हाँ? ब्रह्म क्या से जाए, तप है, तप का अर्थ यहाँ नाक दबा करके आंख बंद करके बैठे रहने का नाम तप नहीं है, वो तप नहीं है यहाँ, तपो नाम हो विचार, वेदांत वाक्यों का विचार। तो पर जो चला गया जा करके विचार किया, विचार करके उसने अन्न को ब्रह्म के रूप में जाना, अन्नम ब्रह्म, अन्नादि खुलैमाने भूतानि जायन्ते अन्ने न जातानि जीवन्ते अन्नम प्रयन्ति अन्नम अभिविशन्ति अन्नम ब्रह्म इति, अन्न को ब्रह्म के रूप में जाना, परंतु उसके मन में संतोष नहीं हुआ, ये अन्न तो सड़ने करने वाला है, अन्न जो है ना जड़ है, अन्न कैसे ब्रह्म होगा। तो फिर पिता के पास आया, पिता ने कहा क्यों, शांति मिली, ब्रह्म ज्ञान हो गया, आत्मा को जान लिया। बोले नहीं पिताजी, नहीं, न मैं ब्रह्म को जाना, न शांति मिली है, न हमारा संशय मिटा है। तो पिता ने कहा जाओ तपस्या करो, तप के द्वारा ब्रह्म को जानो, हमेशा एक ही बात है, तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्व तपो ब्रह्म इति, तभी ब्रह्म है। आखिर में होते होते होते होते कहाँ चला गया, तस्मात बाह्य तस्मात अन्नमयात अन्यो अंतर आत्मा प्राणमय, तस्मात बाह्य तस्मात प्राणमयात अन्यो अंतर आत्मा मनमय, तस्मात बाह्य तस्मात मनोमयात अन्यो अंतर आत्मा विज्ञानमय, तस्मात बाह्य तस्मात विज्ञानमयात अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय, आनंदादि खुलैमाने भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिषेक आनंदम ब्रह्म। तो वहां पहुंचा आनंदमय कोश, आनी बात आनंदमय कोश। तो इसी प्रकार कहते हैं गुरु जो है ना शिष्य को ब्रह्म का उपदेश करते। तो पहले जगत अनादि के द्वारा अंतकरण शुद्ध हुआ, योग के द्वारा चित्तवृत्ति को शांत कर दिया, तुमने शांत कर दिया, योग अभ्यास के द्वारा क्या किया, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान के द्वारा चित्तवृत्ति को शांत किया, योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय, जो कि अंगों का अनुष्ठान करने पर अंतकरण की शुद्धि होती है, अशुद्धि क्षय, अशुद्धि समझते ना, जो चित्त में राग द्वेष आदि का अशुद्धि रहते, क्लेश कर्म विपाक आशय आदि रहता है, ये सब मिट जाता है, शांत हो जाता है। दुगांगा अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय, हाँ अशुद्धि क्षय हो गया, प्राणायाम आदि के द्वारा चित्त शांत हो गया, विक्षिप्त निवृत्त हो गया, शांत हो गया। फिर इसके बाद में समाधि आया, समाधि समझते ना, निद्रा समाधि स्थिति, सो गया तो समाधि लग गई कि नहीं, किसको सोने के बाद समाधि नहीं लगती है, गोली खानी पड़ती है, आनी बात निद्रा समाधि स्थिति, तो निद्रा को समाधि मान लेना बात दूसरी है। समाधि अति अस्मिनिति समाधि, जिसमें समाधि, जिसमें चित्त के तमाम वृत्तियां एक साथ निवृत्त हो जाता है, मिट जाता है, तो चित्त की वृत्तियां कितनी है, या तीन समझ लेना, सात्विक राजसिक तामसिक। क्यों? समाधि वृत्ति निरोध का नाम समाधि है, चित्त वृत्ति निरोधा योग है, योगा समाधि, योग का अर्थ कर दिया समाधि। तो योग समाधि यदि करोगे तो तुम्हारा सात्विक वृत्ति जब रहेगा तो तामसिक का राजसिक वृत्ति की निवृत्ति रहेगी, तो उस अवस्था में भी योग कहा जाएगा, अन्य बात। अथवा रजोवृत्ति आ गई, तामसी का सात्विक वृत्ति दावी हुए हैं, तो उस अवस्था को भी समाधि कहा जाएगा, जो वृत्ति निरोध तो है ही है, एक वृत्ति तो निरोध है कि नहीं, वृत्ति निरोध का दो है ना, सत्य वृत्ति है, तो रजो और तम वृत्ति का निरोध हो गया, तो उस अवस्था को तुम क्या बोलोगे, समाधि। तो वृत्ति निरोध समाधि यदि कहोगे तो एक वृत्ति जाग रहा है, कैसे होगा समाधि, इसीलिए वहां अर्थ किया वृत्ति निरोध का मतलब होता है सभी प्रकार के वृत्ति इस अवस्था में निरोध हो जाता है, उस अवस्था का नाम समाधि। समाधियति अस्मिन् वृत्तये इति समाधि, जिस अवस्था में समस्त वृत्तियां निरोध हो जाता है उस अवस्था का नाम समाधि हो गया। धन्यवाद, ये बता रहे समस्ततो वाक्यार्थ ज्ञानम, समाधि हो गया। अब सवाल यह है, जब समाधि में रहेगा तो वाक्यार्थ का ज्ञान कैसे होगा, आप समाधि में बैठ गए, समाधि में बैठने के बाद में तो तत्त्वमसी महावाक्य का उपदेश कैसे सुनोगे, और सुनोगे नहीं विचार कैसे करोगे, क्योंकि वाक्यार्थ विचारे न जायते ज्ञानम उत्तमम, वाक्य के अर्थ के विचार से, वाक्यार्थ विचारे न जायते ज्ञानम उत्तमम, वाक्यार्थ मतलब महावाक्य, वही वाक्य नहीं है घट माने या पट माने या मठ माने या ऐसा, ये भी वाक्य है, ये वाक्य के अर्थ से ज्ञान तो सामान्य है, परंतु वाक्यार्थ तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के अर्थ के विचार करने से उत्तम ज्ञान होता है। येन सद्य विमुच्यते है, जिसके द्वारा सद्य माने उस समय में ही, जिस समय में तुमने वाक्यार्थ ज्ञान प्राप्त किया उस समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, कालांतर में मुक्ति नहीं। देखो वेदांत की विशेषता है, कर्म से मुक्ति होगी मरने के बाद, क्यों? कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, वहां मुक्ति का मतलब स्वर्ग तक की प्राप्ति, कैवल्य मोक्ष नहीं है, यानी बात। जो मोक्ष होते हैं ना, एक मोक्ष होते हैं कैवल्य मोक्ष, एक मोक्ष होते हैं नित्य मुक्ति, सुषुप्ति अवस्था में संसार के व्यवहार से मुक्ति मिल जाती है, मिलती है कि नहीं, तो कहने का मतलब नित्य मुक्त, आत्मा नित्य मुक्त है, तो नित्य मुक्त कब होगा, जागृत में होगा, सपना में होगा, सुषुप्ति में होगा, कैसे होगा? आत्मा नित्य मुक्त है, आत्मा में तीनों काल में बंधन नहीं है, तो गुरु जी बंधन नहीं है तो हमको वेदांत वाक्यों का श्रवण करने की जरूरत क्या है? हम तो नित्य मुक्त है, क्या जरूरत है वेदांत वाक्यों का विचार करने का? क्यों आपसे महावाक्यों का श्रवण करने का क्या जरूरत है? यदि शिष्य ऐसा प्रश्न करते हैं तो इसका क्या उत्तर देगा? बोला बेटा, आत्मा तो नित्य मुक्त है, इसमें संदेह नहीं है, आत्मा में कोई बंधन नहीं है, परंतु तूने जो आपने को आरोपित कर दिया है, अविद्या का, अज्ञान का, संसार का जो आरोपित किया है ना, आरोप किया है अपने में, ये आरोप को हटाने के लिए श्रवण करना चाहिए। अविद्या, आवृत्ति, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, भ्रांति, निवृत्ति, निरंकुश स्थिति, सात अवस्था जीभ में रहता है बेटा। जीभ में सात अवस्था हमेशा रहती है, याद रखना। तुम भलाई करो। अविद्या, आवरण, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, भ्रांति, निवृत्ति, निरंकुश तृप्ति, तृप्ति, तृप्ति, आनंद, आनंद के अनुभव, अंकुश रहित तृप्ति, जिस तृप्ति में किसी प्रकार का अंकुश माने लगाव नहीं है, बंधन नहीं है। जैसे हस्ती को अंकुश लगा करके कंट्रोल करता है कि नहीं, ऐसे तुम्हारे आनंद में कोई प्रतिबंधक, कोई रुकावट, कोई वो नहीं है। तो देखो, अविद्या है, आवरण है, तुम्हारे अंदर अविद्या है कि नहीं? अविद्या है तो फिर आवरण भी होगा। अविद्या का दो शक्ति है, आवरण और विक्षेप शक्ति। आवरण और विक्षेप शक्ति अपने स्वरूप को आच्छादन कर देता है, जिसके द्वारा स्वरूप आच्छादित हो जाता है, ढक जाता है, उसको आवरण कहते हैं। आवरण, जैसे नाटक दिखाता है कि नहीं, नाटक के सामने जो है ना, जो श्रोता होते हैं ना, श्रोता और जो है ना कलाकार, ये दोनों को बीच में एक पर्दा डालता है, पर्दा को आवरण कहते हैं। तो भीतर का व्यक्ति बाहर नहीं देखता, बाहर का व्यक्ति भीतर नहीं देखता है, तो दोनों को एक करने के लिए क्या करना पड़ता है? आवरण हटाना पड़ता है। ऐसे जीव और ब्रह्म में आवरण पड़ा है, जीव और ब्रह्म में क्या पड़ा है? तो ब्रह्म भी भीतर है, तुम भी भीतर हो, दोनों हो। यदि तुम ब्रह्म को नहीं जानते हो, अपने को नहीं जानते हो, क्या कारण है? तो अविद्या का आवरण पड़ा है। तो अविद्या के आवरण पड़ने से ब्रह्म के ऊपर तो विक्षेप पैदा हो गया, विक्षेप आने बात, विक्षेप कहते जीव को, विक्षेप माने जीव है। तो जीव जो है ये कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुखी, संसारी, क्लेश, कर्म, विपाक, आशय आने बात, ये पांच क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, ये जो चारों है ना, ये चारों जिसमें रहेगा उसका नाम आज जीव है, और क्लेश, कर्म, विपाक, आशय चारों जिसमें नहीं रहता उसका नाम ईश्वर है। ये दोनों जीव ईश्वर दोनों कहाँ रहते हैं? दोनों भीतर रहते हैं, एक ही जगह में रहते हैं, परंतु विश्वमें अविद्या का आवरण शक्ति है ना, दोनों को अलग कर दिया। इसीलिए पंचदशी में लिखते हैं अनिवार्य, माया, माया का दो बेटा है, एक का नाम जीव, एक का नाम ईश्वर, अनिवार्य। माया का दो बेटा है, एक का नाम जीव एक का नाम ईश्वर। तो जीव और ईश्वर का ऐसे क्या चीज है, दोनों माया का बेटा, माया का बेटा दोनों है, परंतु दोनों होता हुआ अभी दोनों बेटा माया रूपी माता का स्तनपान करता है। वो क्या है, द्वैत रूपी जो भेद रूपी जो दूध है वो दोनों पीता है। माया इच्छा यो कामधेनु वत्स जीव ईश्वरो, माया नाम का जो है ना कामधेनु है, उसका दो बसड़ा है जीव और ईश्वर। जथेच्छा पिबताम द्वैतम, जब तक तुमको दूध पीना है तो पियो, खूब पियो खूब पियो। कौन सा दूध, द्वैत रूपी दूध भेद रूपी दूध पियो। हाँ, वास्तव क्या है, वास्तव में अद्वैती है। माया इच्छा यो काम देनो वत्स जीव ईश्वर हो जथेच्छा पिबताम द्वैतम अद्वैतम परमार्थ था, परमार्थ में दोनों एक ही है, दोनों में कोई जीव ईश्वर में भेद नहीं है। और जब तब अज्ञान का आवरण है, अविद्या है, तब दोनों में कोई आवरण कैसे हटाओगे, आवरण हटाना पड़ेगा। तो अविद्या की जो आवरण शक्ति है, अविद्या का जो आवरण शक्ति है, आवृत्ति है, कहो आवरण कहो आवृत्ति कहो, ये आवरण हटाने के लिए वो जो अभी अभान आपादक, अभी आपने बोला ना, एक है अभान आपादक आवरण और एक असत्व आपादक आवरण, दो आवरण होता है। जीव से अधिकारी से गुरु ने पूछा, कुटस्थम तुम बिजानासी, क्या तू कुटस्थ को जानता है, तो ज्ञात्वा भी उच्यते नाहम कुटस्थम जानामि, मैं कुटस्थ को नहीं जानता। तो कुटस्थ को नहीं जानता, कुटस्थ को जानता है, नहीं जानता मतलब कुटस्थ को मानता है कि नहीं, कभी तो कहते नहीं जानता। फलाना सेठ को तुम जानते हो, बोले नाम तो सुना जानता नहीं। ऐसे कुटस्थ को तुम जानते हो, नाम कुटस्थम जानामि, मैं कुटस्थ को नहीं जानता। ये न जानने का नाम अभन आफादा का आवरण, बान नहीं हो रहा है, बान नहीं हो रहा है। और जो असत्व आफादा कुटस्थ तो है नहीं, है ही नहीं, इसका नाम असत्व आफादक। तो असत्व आफादन जो आवरण है वो नाश कैसे होगा, वेदांत वाक्यों के श्रवण करने से। रोज सुनते हो ना, रोज सुनते हो, सुनते सुनते सुनते सुनते सुनते सुनते ये असत्य बना, तब तुम्हारे मन में विश्वास होगा, हाय ईश्वर नाम का कोई वस्तु है। महात्मा लोग बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं, सुनो सुनो भजन करो भजन करो, हाँ जीवन का कल्याण करो जीवन का कल्याण करो, जीवन के सदुपयोग करो, बोलता है कि नहीं। तो सुनते सुनते मन में आता क्या है तेरे जाने तो सही, तो असत्यपन पर तो नहीं है, है नहीं।
2: ओम नमः शिवाय।
0: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
3: ஓம் சிவாய நம சைவம் டாட் ஆர்கின் அன்பான நேயர்களே, நீங்கள் கேட்கவிருப்பது சிவகீர்த்தனைகள் பாடல், கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் இயற்றிய சபாபதிக்கு ராகம் அபோகி, பாடியவர் ஸ்மிருதி ஸ்ரீதர். வணக்கம். ஓம் சிவாய நமஹ.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द फॉलोइंग इज ऋग्वेदा சாக்கல சாக்கா மண்டலம் 1 சூக்தம் 33. தேங்க்யூ.

चान मित्राय मद्गून वरुणाय चक्रवाकान अग्नये कुटरुनालभते वनस्पतिभ्या उलूकानग्निशोमाभ्यां चाशान अश्वि

0: పరిణతం చైశ్వర్యమభ్యాహతం. ఆదిగురు శంకరాచార్యజీ సర్వజ్ఞ జ్ఞానమూర్తి భగవాన్ దక్షిణామూర్తి శివకి స్తుతి కర్తే హుయే పరం బ్రహ్మతత్వ కా ప్రతిపాదన్ కర్ రహే హై. శివతత్వ స్వయం క్యా హై, జీవతత్వ స్వయం క్యా హై, జీవ కా శివత్వ కైసే సంపన్న హోతా హై ఔర్ కౌన్ శివత్వ సంపాదన్ కర్తా హై, శివ కో జీవ భావ కీ ప్రాప్తి కా కారణ క్యా హై, ఇన్ సబ్ కా విచార్ కర్నా హీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్ర కా ప్రయోజన్ హై. ప్రసంగ చల్ రహా థా తీసరే శ్లోక కా. యస్యైవ స్ఫురణం సదాత్మకమసత్ కల్పార్థకం భాసతే సాక్షాత్తత్వమసీతి వేదవచసా యో బోధయత్యాశ్రితాన్ యత్ సాక్షాత్కరణాత్ భవిన్న పునరా వృత్తిం భవాంభోనిధౌ తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే. ప్రశ్న ఈ చల్ రహా థా కి జిత్ని భీ వ్యవహార్ కే యోగ్య పదార్థ హై, ఈ సమస్త పదార్థో మే దో చీజ్ హోనా జరూరీ హై, తభి యే వ్యవహార్ యోగ్య హోంగే. వే దో చీజ్ కా నామ హై అస్తిత ఔర్ ప్రకాశత. యానీ వస్తు హోనా చాహియే, సత్తా వాలే హోనే చాహియే. స్వప్న కే పదార్థ కే ఖుద్ కీ సత్తా నహీ, ఇసిలియే వ్యవహార్ నహీ కర్ పాతే హై. ఔర్ ఆకాశ కే పుష్పో కా స్వయం కీ కోయి సత్తా నహీ, ఇసిలియే వ్యవహార్ నహీ హో పాతా హై. వ్యవహార్ హోనే కే లియే ఉస్కీ సత్తా హోనీ చాహియే. ఔర్ కేవల్ సత్తా హోనే సే వ్యవహార్ నహీ చల్తా హై, సాథ్ మే వహ సత్తావాన్ పదార్థ కా జ్ఞాన్ భీ హోనా చాహియే, తభీ సమస్త లౌకిక ఔర్ శాస్త్రీయ వ్యవహార్ హో సక్తా హై. విచార్ కా విషయ క్యా హై, తో బోలే ఇన్ పదార్థో మే జో సత్తా హై ఔర్ జో ప్రకాశతా హై, యే ఖుద్ పదార్థ కే అప్నీ స్వతంత్ర సత్తా హై కి ఇన్ మే జో సత్తా హై వహ కహీ అన్యత్ర సే ఆగంతుక హై, కిసీ ఔర్ కే సత్తా కో ప్రాప్త కర్కే యే సత్తావాన్ హుయే హై कि अपनी सत्ता में स्वयं पदार्थ टिके हुए हैं. इसी तरह किसी और प्रकाश से ये प्रकाशित होकर प्रतीत होते हैं या अपनी ही प्रकाश से प्रकाशित होकर प्रतीत होते हैं. सामान्य अज्ञानी व्यक्तियों से पूछा जाए तो वे लोग यही कहेंगे कि हर पदार्थ अपनी स्वतंत्र सत्ता पर निर्भर है और हर पदार्थ प्रकाशित होने में वह अपने ही प्रकाश का प्रयोग करते हैं. लेकिन वास्तव में गहरी विचार किया जाए तो यह सिद्ध नहीं होता. पदार्थ कोई भी अपनी सत्ता में सत्तावान नहीं है और पदार्थों में प्रकाश है, ये बात तो मूर्ख भी स्वीकार नहीं करेगा. विद्वान तो स्वीकार करेगा ही नहीं, साथ में मूर्ख भी ये स्वीकार नहीं करेगा कि वस्तु में स्वतः प्रकाशित होने की क्षमता है. क्योंकि अंधकार कमरे में रखे हुए पदार्थ प्रकाश के बिना, पदार्थ के इतर पदार्थ से भिन्न प्रकाश के बिना वे पदार्थ प्रकाशित नहीं होते. और जब प्रकाश के लिए यानी पदार्थों को प्रकाशित होने के लिए पर प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, जिस तरह अन्य प्रकाश से पर प्रकाश से तमाम लौकिक व्यावहारिक पदार्थ प्रकाशित होते हैं, इसी तरह यह भी मानना पड़ेगा कि अन्य के सत्ता से ये सत्तावान हुए हुए हैं. किसकी सत्ता से ये सत्तावान हुए हैं और किसके प्रकाश से प्रकाशित हुए हैं, उस बात को ये तीसरे श्लोक के द्वारा शंकराचार्य जी स्पष्ट करते हैं उत्तर देते हुए. यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते जिसकी स्फुरणा से, यस्यैव स्फुरणम्, जिसकी स्फुरणा से यानि जिसके प्रकाशित होने पर ये तमाम असत्कल्पार्थक पदार्थ भी सदात्मकम भासते। असत वस्तु भी यानि मिथ्या वस्तु भी सत्य की तरह प्रतीत होते हैं। इस वाक्य से ये सिद्ध हुआ, हमको ये समझना निश्चित है, भले ही यह दृश्यमान नाना रूपात्मक विश्व प्रपंच हमारे लिए पूरी तरह व्यावहारिक सत्ता वाले हों, फिर भी यह पदार्थ है मूल रूप में प्रातिभाषिक हैं, पारमार्थिक नहीं है। हे असत्कल्पत, इनकी अपनी सत्ता नहीं है, अन्य के सत्ता में सत्तावान हुए हुए हैं। और जब भी जो भी पदार्थ दूसरे के सत्ता में सत्तावान हो रहा हो और जो भी पदार्थ दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा हो, उस पदार्थ के सत्यता के बारे में स्वतः प्रश्न खत्म हो जाता है, यानी वह सत्य हो ही नहीं सकता है। जैसे मंद अंधकार में सर्प दिखाई पड़ा, सड़क के किनारे कहीं जा रहे थे, सर्प का संस्कार मन में था, मन में डर था, ये रात्रि के समय में ये खेत के रास्ते से हम चल रहे हैं, चारों तरफ जंगल है, चारों तरफ घास है, झाड़ है, ऐसे झाड़ और झुंड में के बीच में तो प्राय करके सर्प हुआ करते हैं और सर्प हमारे घातक है, इत्यादि इत्यादि मन में जो संस्कार जग रहे थे, उन्हीं संस्कार को लेकर इन्हीं चिंता और चिंतन के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, संयोग से वहां एक रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ था और वो रस्सी के टुकड़े को स्पष्ट रूप से आपने जान नहीं पाए कि ये रस्सी है, निश्चय नहीं कर पाए, तो उसको सर्प होने में आपके सर्प का संस्कार का बल मिल गया, तो उस रस्सी को सर्प के रूप में परिणत कर दिया। किसने? तो आपके सर्पों के संस्कार ने रस्सी को सर्प के रूप में परिणत कर दिया है। इसी को विक्षेप शक्ति कहते हैं, इसी को विवर्त कहते हैं वेदांत दर्शन में। अब विचार करो कि वो जो प्रतीयमान सर्प है, जिस सर्प के आपने भ्रांति निश्चय किया है, हालांकि आपको भ्रांति है, ये बुद्धि नहीं हुई है, है भ्रांति, लेकिन भ्रांति हुई है ऐसे आपको बुद्धि नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि ये सचमुच वास्तव में मैं जैसा सोच रहा था वैसे ही ये सर्प यहां निकल आ गया, अब ये मुझे काटेगा, आगे बढ़ना मेरे लिए ठीक नहीं है, आपके पांव वहीं रुक गए, आगे नहीं बढ़ सके। और संभव है कि आप यदि कमजोर दिल वाले होते तो फिर आप घबरा भी जाएंगे, आपके शरीर से पसीना निकल आएगा, आपके ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और आपके कदम आगे न बढ़कर पीछे मुड़ जाएंगे, आप वापस आ जाएंगे। और पूछने वाला आपसे पूछेगा कि आप तो फलाने गांव जा रहे थे, तो क्या हुआ, क्यों वापस आ गए? बोले, जा तो रहा था, लक्ष्य मैंने छोड़ा नहीं है, परंतु व्यवधान आ गया। क्या व्यवधान आ गया? बोले, रास्ते में बहुत बड़ा सर्प आ गया, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सका सर्प के चलते। बोले, अच्छा सर्प आ गया है, बताओ बताओ कैसा है वो सर्प? तो वह दूसरा व्यक्ति सर्प, उस सर्प को देखने की जिज्ञासा करता है कि बताओ कहां है और कैसा है उस सर्प को। अरे ऐसे सर्प को तो कितना मैंने मार डाला है, चलो उसको मार देता हूं, भगा देता हूं। हाथ में मोटा सा डंडा उठा लिया उस दूसरे व्यक्ति ने, जरा वो साहसी था, जगत में कोई दो चार ही साहसी होते हैं, सभी साहसी नहीं होते हैं। तो कोई साहसी था वो, हाथ में एक हाथ में डंडा ले लिया, एक हाथ में टॉर्च ले लिया और उसको आगे लगाया। चलो, बोले, मैं तो आगे नहीं जाऊंगा, मुझे सर्प काटेगा। चलो अच्छा, तुम पीछे चलो, मैं आगे चलता हूं। वो आगे टॉर्च जलाता हुआ, हाथ में डंडा लेते हुए और बिल्कुल तैयारी के साथ आगे बढ़ा। उसने कहा कि कहां पर है? तो बोले, और आगे चलो, और आगे चलो, और आगे चलो। तो आगे चलता गया तो बोले हां इसी के आसपास है, ये पेड़ है ना, इसी पेड़ के आसपास है कई सर्प। उसने लक्षण बताया पहले व्यक्ति ने, तो दूसरा व्यक्ति ने उसी के आसपास अपने हाथ का टॉर्च की रोशनी डाली, किधर है किधर है किधर है, तो अचानक वहां सर्प रस्सी दिखाई पड़ी। बोले कहां है सर्प? बोले यहीं पर था सर्प, इसी पेड़ के नीचे इसी पत्थर के पास सर्प बैठा हुआ था। बोले जो लक्षण तुम बता रहे हो पेड़ पेड़ भी यहीं वहीं पर है, और जो बता रहे हो पत्थर वो पत्थर भी यहीं है, और पत्थर के बिल्कुल पास बैठा था सर्प तुम कह रहे हो, वहां तो रस्सी है देख लो। हाँ रस्सी है? बोले हां देख लो। नहीं नहीं भाई सर्प था, और तुम कह रहे हो सर्प था, हम कह रहे हैं रस्सी है। इधर उधर कहीं कोई निशान नहीं है, रस्सी के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो उस पहले व्यक्ति को प्रतीत होने वाला जो सर्प है वह असत कल्पार्थक है। हमने कल भी इस बारे में थोड़ा सा संकेत किया था, पदार्थों के असत होने में और असत तुल्य होने में अंतर है। जो असत तुल्य हैं वे पदार्थ प्रतीत होते हुए वह असत होते हैं, और जो असत होते हैं वह प्रतीत ही नहीं होते। असत होने के नाते ही प्रतीत नहीं होते, वह सर्वथा असत हैं, और असत तुल्य उनको कहते हैं, वो हैं असत लेकिन प्रतीत होते हैं। इसी को मिथ्या बोलते हैं वेदांत में। असत कल्पार्थक ये शब्द का अर्थ होता है मिथ्या पदार्थ, और मिथ्या पदार्थ का अर्थ होता है जो पदार्थ जहां जिस रूप में प्रतीत हो रहा है वो पदार्थ वहीं उसी रूप में प्रतीत न होना, उसी को कहते हैं मिथ्या पदार्थ, असत कल्प कहते हैं। इसी को असत वस्तु के बारे में मिथ्या वस्तु के बारे में व्याख्या करते हुए आचार्यों ने एक लक्षण बना ली है, स्व अधिष्ठाने वादमानत्वम मिथ्यात्वम। मिथ्या शब्द का यह अर्थ है अपने ही अधिष्ठान में बाधित होता हो तो उस पदार्थों को मिथ्या कहते हैं। जिस अधिष्ठान में जो पदार्थ प्रतीत हो रहा है उसी अधिष्ठान में वो ही पदार्थ बाधित होता हो तो उसको कहते हैं मिथ्या। स्वाधिष्ठान बाधमानत्व मिथ्यात्व, और दूसरी जगह लक्षण बनाया ज्ञान निवर्तत्व मिथ्यात्व। ये दो लक्षण है मिथ्या के लिए, ज्ञान के द्वारा निवृत्त होने वाले पदार्थों को मिथ्या कहते हैं, या अपने ही अधिष्ठान में बाधित होने वाले पदार्थों को मिथ्या कहते हैं। ये दोनों बात आप ध्यान से सुन लेना। सर्प का अधिष्ठान रस्सी है, रस्सी के बिना सर्प सिद्ध न होने के कारण सर्प का अधिष्ठान क्या है? रस्सी है। और स्व शब्द का अर्थ होता है सर्प, अधिष्ठान शब्द का अर्थ हो गया रस्सी। स्व अधिष्ठान माने सर्प का जो अधिष्ठान, प्रतीयमान सर्प का जो अधिष्ठान रस्सी, उसी रस्सी में उस सर्प का बाध हो जाना। जिस अधिष्ठान में सर्प दिख रहा था उसी अधिष्ठान में सर्प का बाध हो जाना, इसको मिथ्या कहते हैं, स्व अधिष्ठाने बाधमानत्व मिथ्यात्व। और दूसरी बात ज्ञान निवर्तत्व मिथ्यात्व, ज्ञान के द्वारा जिसकी निवृत्ति होती हो उसको मिथ्या कहते हैं, यानी ज्ञान के आते ही जो हट जाता है उसको मिथ्या कहते हैं। या ज्ञान उपलक्षित दृष्टांत में प्रकाश ले लेना, प्रकाश के द्वारा जो निवृत्त हो जाता है उसको मिथ्या कहते हैं। डोरी में प्रतीयमान सर्प किसके द्वारा हटा? प्रकाश के द्वारा हट गया, प्रकाश के द्वारा हटने वाला होने के कारण उसको मिथ्या कहते हैं। और असली सर्प होता तो फिर प्रकाश के द्वारा न हटता, असली सर्प होता तो क्या प्रकाश के द्वारा हटता? नहीं हटता। और असली सर्प होता तो स्वाधिष्ठान में बाध भी नहीं होता। जिस जमीन में सर्प प्रतीत हो रहा था उसी जमीन में यदि असली सर्प होता तो फिर बाद नहीं होता, न हटता, वहीं बना रहता, वहीं डटा रहता। ये दोनों लक्षण मिथ्या के लिए हैं। ये जगत के तमाम पदार्थ भी ये दो लक्षण में घट जाते हैं। एक तो यह है कि ये स्व अधिष्ठान बादमान है, हर पदार्थ जिस अधिष्ठान में प्रतीत हो रहे हैं उसी अधिष्ठान में ये बाधित हो जाते हैं। दूसरी बात, ज्ञान निवृत्त होता है, स्वरूप ज्ञान होते ही पदार्थ सब निवृत्त हो जाएंगे, हट जाएंगे। स्वरूप ज्ञान के बाद ये सारे के सारे पदार्थ ज्ञान बाधित हो जाने के कारण ये सारे पदार्थ मिथ्या हैं। वेदांत कभी भी जगत के प्रतीयमान पदार्थों को असत नहीं कहता, मिथ्या कहता है, और इसीलिए मिथ्या को ही दूसरे शब्द से कह दिया है, असत कल्प क। असत कल्प यानी कल्प शब्द का अर्थ होता है तुल्य, असत तुल्य, तुल्य शब्द का अर्थ होता है स्वरूप वाला, असत जैसा, असत तुल्य, असत कल्पार्थ। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते, जिसकी स्फुरणा से असत कल्प भी सत रूप में प्रतीत होता है। इसी को तुलसीदास जी ने इस चौपाई से कहा है, झूठे हूं सत्य जाहि बिनु जाने, झूठा वस्तु भी सत्य प्रतीत होता है। कब? बोले जे ही बिनु जाने, जिसके न जानने से झूठा वस्तु भी सत्य प्रतीत होता है। जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, दृष्टांत दिया, जैसे रस्सी के बिना पहचाने भुजंग की प्रतीति होती है, सर्प की प्रतीति होती है, इसी तरह राम के न जानने से तमाम जगत की प्रतीति होती है, परमात्मा को न जानने से अनात्मा की प्रतीति होती है, ब्रह्म को न जानने से जगत की प्रतीति होती है, कूटस्थ को न जानने से जीव की प्रतीति होती है। देखो, तमाम जो जीव सत्ता की प्रतीति है, ये जीव सत्ता वास्तव में जीव के रूप में नहीं है, यह कूटस्थ के न जानने से जीव के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। जिस समय इस जीव को अनुसंधान के पश्चात अपने पारमार्थिक स्वरूप कूटस्थ का अपरोक्ष बोध होगा, तब उसको अपने बारे में कर्ता भोक्ता जीवपना था, वह जीवपना स्वतः ही बाधित हो जाएगा। भ्रांति के निवृत्त होते ही भ्रांतिजन्य पदार्थ की अस्तित्व ही निवृत्त हो जाता है। निमित्तापाय नैमित्तिकस्याप्य अपाय, जिस निमित्त से जो पदार्थ सिद्ध हुआ है, वह निमित्त के हटते ही तब नैमित्तिक पदार्थ स्वतः बाधित हो जाता है, स्वतः हट जाता है। तो झूठे हूं सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजु पहचाने, जिमी जाने जग जाई है राये, तुलसीदास जी, जिमी जाने जग जाई है राये, जागे जथा सपन भ्रम जाये। जिसको जान लेने के बाद सारा का सारा द्वैत प्रपंच नाम रूपात्मक विकल्प, वह पहले जिस सत्यत्व रूप में अनुभव में आ रहा था, अब उसी रूप में सत्यत्व के रूप में अनुभव में नहीं आएगा। ये बात नहीं है कि अनुभव में नहीं आएगा, ये बात नहीं है, अनुभव में यथावत आता ही रहेगा। जागतिक पदार्थ ज्ञान होने के बाद अनुभव में नहीं आता, ये बात नहीं है, अनुभव में आता रहेगा। अंतर क्या होगा? तो फिर तो अंतर यह है कि ज्ञान होने से पहले अनुभव में आए हुए पदार्थों के बारे में बिल्कुल पारमार्थिक सत्यत्व बुद्धि थी, अनुभव में आने के बाद इन्हीं पदार्थों की सत्यत्व बुद्धि नष्ट हो जाएगी, पदार्थ नष्ट नहीं होंगे, ये ख्याल रख लेना। हाँ, ज्ञान होने के बाद प्रतीयमान पदार्थ नष्ट हो जाएंगे, ये वेदांत नहीं कहता है। फिर वेदांत का क्या फायदा हुआ? जैसे पहले प्रतीत हो रहा था वैसे बाद में भी प्रतीत होता है द्वैत प्रपंच, तो फायदा क्या हुआ? तो उसका उत्तर यह है कि ज्ञान से पहले सत्य रूप में प्रतीत हो रहा था, ज्ञान के बाद सत्य रूप में प्रतीत न होकर मिथ्या रूप में प्रतीत होता है, ये फायदा है। और यदि सत्य रूप में प्रतीत होगा तो उसके प्राप्ति और अप्राप्ति में आपको सुख और दुख की प्राप्ति होगी, और मिथ्या रूप में प्रतीत होने पर उसके प्राप्ति और अप्राप्ति में न सुख और न दुख की प्राप्ति, यही फर्क है और कुछ नहीं है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, जैसे कोई व्यक्ति पानी का मरुभूमि में घूम रहा था और पानी से वह प्यासा था।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू shivam.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम shivam.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Thirumoola Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Bhakto, aaj hum sunenge aur ek Nayanmar ki kahani jinka naam Thirumoolar hai. सुंदरमूर्ति नायनार ने तिरुमूलर का सादर प्रणाम किया है और कहा है, मैं प्रभु मूलन के दास का दास हूँ। नंबी आंडार नंबी ने तिरुमूलर का परिचय इन शब्दों में किया है। सातनूर नामक ग्राम में, जहाँ सज्जन लोग निवास करते हैं, गायों के चरवाहे की मृत देह में प्रविष्ट होकर पुनर्जीवित योगी के चरणों को मैं अपने सर पर श्रद्धा सहित रखता हूँ। उस योगी ने चतुर्विध पुरुषार्थों के बोधक गुणों से युक्त मधुर तमिल भाषा में द्वितीया के चंद्र की शीश पर धारण करने वाले शिव की वेद सम्मत स्तुति की है। कैलाश पर्वत पर नंदीकेश्वर की कृपा से अष्ट सिद्धि प्राप्त कर एक योगी सुंदर मूर्ति सुंदर उन्हीं अगस्त के दर्शनों की कामना के लिए तमिल प्रदेश के पुदिगई पर्वत की ओर चले। केदार नेपाल के पशुपति ईश्वर अभिमुक्त वाराणसी के विश्वनाथ आदि के दर्शन करते हुए वे चिदंबरम के नटराज के दर्शन के लिए पहुंचे। नटराज ने के आनंद तांडव से उनका अंतर्मन प्रेम से विभोर हो उठा। वहां कुछ दिन रुकने के बाद वे आगे बढ़े। कावेरी नदी के तट पर एक स्थल पर उन्होंने देखा कि एक गडरिया मृत पड़ा हुआ है और उसकी गायें उसके चारों ओर व्याकुल होकर आंसू बहा रही थी। वे गायें इधर उधर जाती, कभी अपने मृत चरवाहे की ओर देखती और असमर्थता व्यक्त कर रही थी। योगी ने जब यह दृश्य देखा तो उस मृत गडेरे की काया में परकाय प्रवेश किया। ये बात बता दूं कि ये ऐसे योगी थे जो कि शरीर में प्रवेश करने की योग सिद्धि प्राप्त कर रखी थी। गडेरे का नाम मूलन था, जो चातनूर गांव का निवासी था। मूलन को जीवित देखकर गायें अत्यंत प्रसन्न हुईं। उन्हें गांव में यथोचित स्थान पर पहुंचाकर वह अपने घर गए। पुराने मूलन की पत्नी ने उन्हें अपना पति समझकर उनका स्वागत किया। तिरुमूलर, जो कि मूलन के शरीर में प्रवेश थे, दुविधा में पड़ गए। अपनी स्थिति स्पष्ट कर पाने में स्वयं को असमर्थ अनुभव कर वे घर छोड़कर गाँव के बाहर मठ में चले गए। सुंदर लौट कर उस स्थल पर आए जहां अपना शरीर सुरक्षित छोड़ाए थे तो पाया कि शरीर लुप्त हो चुका था। संभवत शिव की कृपा दृष्टि इसका कारण है। ऐसा विचार कर मूलन के शरीर में स्थित सुंदर या तिरुमूलर योगी ने तिरु आवड़तरई के अधीश शिव की वंदना करते हुए उनकी कृपा से 3 सहस्र पदों में तिरुमंदिरम नामक विशाल ग्रंथ की रचना की। यह वास्तव में अनोखी बात है कि पेरियपुराणम में भक्तों की पंक्ति में योग मार्गी तिरुमूलर का स्थान दिया गया है। शैव मार्ग के प्रसिद्ध ग्रंथ तेवारम में योग प्राणायाम कुंडलिनी आदि का कहीं वर्णन नहीं मिलता। योग मार्ग को महत्व देने वाले तिरुमूलर भक्ति मार्ग के साधकों की श्रेणी में नहीं आते। यही नहीं, वे पंचाक्षर मंत्र काफी सूक्ष्म विभेद करते हैं। उसे स्थूल पंचाक्षरी, सूक्ष्म पंचाक्षरी और अति सूक्ष्म पंचाक्षरी कहते हैं, जो भक्ति मार्गियों की समझ में नहीं आता। फिर भी अन्य योगी मार्गियों के विपरीत वे अभिषेक और आराधना को मानते हैं। दक्षिण में योग मार्गी सिद्धों का एक अलग वर्ग है। उनमें से चिक्कलर ने तिरुमूलर को 2 कारणों से नायनमार भक्तों की श्रेणी में शामिल किया है। प्रथमतः, मूर्ति पूजा को महत्व न देने वाले सिद्धों में से केवल तिरुमूलर ही ऐसे हैं जो शिवलिंग, नटराज की प्रतिमा, देवी का स्वरूप आदि का वर्णन करते हैं। दूसरे सिद्ध लोग भाषा और मंत्र के को विशेष स्थान नहीं देते, पर तिरुमूलर पंचाक्षरी को विशिष्ट महत्व दे प्रदान करते हैं। वे कहते हैं, ईश्वर ने मुझे सुंदर ढंग से सृजित किया है, इससे मैं तमिल में सुंदर ढंग से उसका योगोशान करूं। अपने विषय में तिरुमूलर ने तिरुमंदिरम में कहा है कि उनका आगमन विविध आगमों को तमिल में प्रस्तुत करने के लिए ही हुआ है। समग्रतः तिरुमूलर एक अद्भुत ज्ञानी योगी और सिद्ध भक्त हैं, जिनका ग्रंथ तिरुमंदिरम तमिल का गौरव ग्रंथ है। कहते हैं कि तिरुमंदिरम की हर एक शिव वर्णन उन्होंने हर 100 वर्ष में किया है। ऐसा देखा जाए तो उन्होंने 3000 साल में तिरुमंदिरम की रचना की है। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय।
3: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
4: फलाना फलाने शरीर में छुपा है, फलाना फलाने शरीर में छुपा है, नाम ले एक जगह बैठे बैठे नाम पुकार पुकार के कह दिया कि तू वहां छुपा है। हे आत्मानंद, तू इस शरीर में छुपा है। अरे तेरे को कैसे पता चला? हे मोहनीश, तू इस शरीर में छुपा है। ले जी, किसी को कहा कि अरे तू हाथी के शरीर में छुपा, तू चींटी के शरीर में छुपा, तू कुत्ते के शरीर में छुपा, तू सुअर के शरीर में छुपा, तू मच्छर के शरीर में, तू मक्खी के शरीर में, तू मच्छर के शरीर में। वाह, क्या कहना है? बोलो, है कि नहीं? छुपा है कि नहीं? बोलो। अरे इसने तो पता लगा लिया। मोहनीश कहेगा कि मैं इस शरीर में नहीं छुपा हूं, बोलो। और आत्मानंद कब पाएगा कि इस शरीर में मैं छुपा नहीं हूं, बोलो। तुम लोग कब पाओगे कि मैं इस शरीर में नहीं हूं? उसने तो नाम पुकार पुकार कर कह दिया, तू फलाने, तू फलाने, तू फलाने। अरे बाबा, इसने तो छुप लिया, खोज लिया, हम हार गए, पता लगा लिया। अभी तो हारे और जीते हैं, इसका निर्णय तो अब बारी आई परमात्मा को छुपने की। बोले भाई, तुम लोग सब छुपे हो और हमने पता लगा ली। लगाई कि नहीं? बोले हां, तुमने पता लगा लिया। हां, तुमने जहां जहां कहा है हम वहीं वहीं छुपे हैं। ठीक कह रहे हो। बोले कि ठीक है, वहीं मस्ती से खाओ पियो मौज करो, चिंता नहीं करना, वहीं छुपे रहो, वहीं खाओ पियो मौज करो। अब हम छुपे? बोले हां, तुम छुपो। तो परमात्मा छुपने की कोशिश करने लगा, कहां छुपू? विचार किया, ये जीवात्मा परांजिकानी वितृणत स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति। मैं दुनिया के बाहर कहीं भी छुपूंगा तो ये सब पता लगाकर छोड़ेंगे। मैं हार जाऊंगा, मैं जीतूंगा तो तब, मैंने इनको पता लगा लिया, ये मुझे पता लगा नहीं पाएंगे तभी मैं जीतूंगा। समझे कि नहीं? इन्होंने मुझे पता लगा लिया, मैंने इनको पता लिया, तो हार जीत का कोई मतलब ही नहीं हुआ। कहां छुपे? बोले ये सारे जीव जहां जहां छुपे थे वहीं वहीं जाकर बैठ जाऊं। अब इनकी आदत है बाहर खोजने की, बाहर हम छुपेंगे नहीं, छुपेंगे अंदर ही। बड़े बुद्धि लगा लिया और जाके वहीं छुप के बैठ गए। कहा? अरे तुम जहां छुपे थे वहीं छुप गए हो। तुम स्त्री के शरीर में छुपे थे तो वो भी आकर वहीं छुप गए। तुम परिस के शरीर में छुपे थे तो वो भी वहीं आकर छुप गया। तुम कुत्ते के शरीर में छुपे थे तो वो भी छुप गया। वही हाथी के शरीर में छुप गए थे तो वहीं छुप गया वो। एस सर्वेशु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते। कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को समझाया, ऐसा आत्मा परमात्मा सर्वेषु भूतेषु जीवात्मा जहां जहां छुपे हैं वहीं वहीं जाकर वो गूढ़ा और छुप के बैठ गया। और परमात्मा ने कह दिया कि ए सब लोग अब खोजो, तुम लोग मैं छुप चुका हूं, खोजो पता लगाओ। तो खोजने के लिए निकले आत्मानंद, काशी गया, मोहनीश बना वहां, हरिद्वार गया, चिमन भाई बद्रीनाथ गए, रमण भाई द्वारिका गए, कहां गए खोजने गए सब, कहां होगा कहां होगा कहां होगा, मिला द्वारिका में नहीं मिला, बद्रीनाथ मिला मिला नहीं मिला, हरिद्वार में मिला आज तक किसी को मिला नहीं वो, और खोजना छोड़ नहीं रहे। हाँ, मंदिर मिल गया, मूर्ति मिल गई, परमात्मा नहीं मिला है ना। काशी गए, मंदिर भी मिला, मूर्ति भी मिली, परमात्मा नहीं मिले। द्वारिका गए, बड़ा भारी मंदिर भी मिला, मूर्ति भी मिली, परमात्मा नहीं मिले। हरिद्वार गए, मंदिर मिला, मूर्ति मिली, आज तक तुम लोगों को मंदिर और मूर्ति ही तो मिल रहे हैं ना, बोलो परमात्मा मिला है? नहीं मिला क्योंकि हम ये मानते हैं कि परमात्मा मंदिर और मूर्तियों में रहता है। और परमात्मा ने ऐसे विचित्र खेल खेली, बाहर मंदिर और मूर्ति बनाकर रख दी और अपने आप छुप गया, अंदर हृदय में जाकर छुप गया। देव जी, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसी जगह आकर बैठ सकता है जहां हम बैठे हैं वहीं आकर वो बैठ सकता है, हम सोच ही नहीं सकते। तो जिन्होंने नहीं सोचा है उनको हजारों साल खोजने पर भी नहीं मिला है। तब कठोपनिषद में कहा, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते तोग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी तच्चिद्धीरा प्रत्यगात्मानमैच्छत् आवृत्त चक्षु अमृतत्वम् इच्छन् अन्यथा तो परांचिकानि वितरण स्वयंभू तस्मात् परं पश्यति न अंतरात्मा पश्यति। हर व्यक्ति खोजने के नाम में बाहर खोज रहा है और अंदर तो खोज ही नहीं रहा है। कोई कोई समझदार व्यक्ति है, अंदर भी खोजना चाहिए, अंदर मैं हो सकता हूं तो वो नहीं हो सकता, ये बुद्धि क्यों नहीं आई? अंदर मैं हो सकता हूं तो वह क्यों नहीं हो सकता है? और जब तक ये बुद्धि नहीं आएगी तब तक वो मिलने वाला नहीं है। कच्ची धीरा, किसी किसी धीर पुरुष में ये बुद्धि आती है, तब वह आवृत्त चक्षु बाहर खोजने को छोड़कर अंदर ही खोजता है। महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं ना कि कोई एक मुसलमान सूफी संत महिला हुई, वो सूफी थी, संत थी, उसका नाम राबिया कहते हैं, नहीं ऐसा नाम रखा है, तो बहुत सुने हुए दृष्टांत है। विचित्र की थी वो, रमजान का महीना था तो और के मक्का मदीना जाने का समय था, सब लोग कहने लगे कि चलो तीर्थ जाएं, मक्का जाएं, मदीना जाएं, हज करें, तो सब तैयारी करने लगे। उसको कहा कि तू तैयारी नहीं कर रहे, तू नहीं जा रही है। बोले हाँ चलेंगे, हम भी चलेंगे। चल चल तैयार हो, कल सुबह इतनी बजे जाना है। अच्छी बात है। तो सब तैयारी हुई तो दूसरे दिन सभी साथी यात्री तैयार हो गए। बोले वो बाहर नहीं आ रही है, बस खड़ी है। अरे राबिया क्यों नहीं आई है, लेट हो रहा है, जल्दी आ जा। बोले आई आई, मैं अभी आ गई। जाना नहीं है क्या? बोले जाना तो जरूरी है, तो फिर क्यों लेट करती है? क्या बताऊं, मेरे ब्लाउज का एक बटन

ये बोले सुई खो गया है, खोज रही हूं, तो उसके बिना बटन लगाया नहीं जाएगा। तुम लोग भी खोजो। खोजने लगे। अरे भाई सुई कहां गिर गई थी? बोले गिरी तो घर में गिरी थी तो घर में, क्योंकि रखा घर में ही था, खोई तो घर में ही है। बोले घर में खोजा कि नहीं? नहीं, कल भी एक पड़ोसी आया था, यही खोज रहा था, उसका भी एक सामान खो गया था, वो यही खोज रहा था। परसों दूसरा पड़ोसी आया था, वो भी यही खोज रहा था अपना सामान। तो हमने सोचा कि कोई भी सामान खो जाता है तो मिलने का जगह यही है, इसलिए यही खोजने लग गए। बोले पहले तो जहां खोया है वहां खोजो। बोले वो तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं, चलो। बोले सब लोग आए, कहते घर में, घर में आए तो घर के अंदर ही सुई मिल गई। लोगों ने कहा कि तू पागल है, सुई गिरी घर में, घर में खोजे बिना बाहर खोज रही है। बोले ठीक है, हम तो पागल है ही है और तुम भी पागल हो। परमात्मा बैठा है अंदर और तुम मक्का मदीना खोजने जा रहे हो? तो अंदर खोजा तुमने, अंदर देखा? बोले अंदर तो देखा नहीं, हमारा बाप भी जो मक्का गया था, हमारे दादा भी मक्का गए थे हज करने, तो परंपरा बनी है सभी मक्का जाकर हज करके आते हैं। अरे बाबा, वो परमात्मा जब अंदर बैठा है, अंदर छुपा है, तो जहां छुपा है वहीं न खोजना चाहिए। तो मक्का जाना हो तुम लोग जाओ, मैं तो मक्का पहुंच गई हूं क्यों उसको तो मिले मिला है, वो तो अंदर खोज रही है, उसका मक्का तो अंदर है, मक्का मदीना तो अंदर है। कच्ची धीरा, इतने सारे मुल्लों में से वो एक राबिया हुई जिसके मक्का मदीना अंदर था, बाकी के मक्का मदीना तो बाहर ही है। क्या सुंदर भाव है। तत्प्रसादात, शंकराचार्य कहते हैं कि महाराज आपकी कृपा से, शिवजी को कह रहे हैं शंकराचार्य, हे भगवान आपकी ही कृपा से आद्या अविद्या अविद्या का विशेषण है आद्य, हालांकि अविद्या अनादि है। अविद्या खुद क्या है? अनादि है। षडैते अनादयः, वेदांत में छह वस्तु को अनादि बोलते हैं, समझे नहीं? ब्रह्म अनादि है, माया अनादि है, ईश्वर अनादि है, जीव अनादि है, जगत अनादि है, और इनका परस्पर संबंध अनादि है। ये हमने कई बार कहा है प्रसंगों में, छह वस्तु क्या है? अनादि है। जगत कब से शुरू हुआ? जगत कब से शुरू हुआ? स्टार्ट डे इसका कोई रिकॉर्ड है कहीं? शुरू हुआ, लेकिन कब से शुरू हुआ? कोई 16,000 वर्ष कहता है, कोई 20,000 वर्ष पहले था कहते हैं, कोई कुछ कहते, कुछ भी बोले जा रहे हैं सब। जीव कब से जीव बना है? तुम जीव हो कि नहीं बोलो, हैं? जीव हो ना, तो किस दिन से जीव बने हो तुम?

0: है, रिकॉर्ड है तुम्हारे पास, शरीर किस दिन पैदा हुआ है वो तो तुम्हारे पास होगा, है ना, बर्थडे होगा ना शरीर का। अच्छा तुम्हारा बर्थडे कब है, जीव कब जीव बना था, है जीव कब जीव बना है, अनादि, कोई बता नहीं सकता है कि मैं इस दिन जीव बना। माया कब माया बनी बोलो, अनादि, ईश्वर कब ईश्वर बना अनादि, ब्रह्म कब ब्रह्म बना अनादि, षडेति अनादयः, ये छह वस्तु अनादि है, लेकिन ये छह अनादि में से एक अनंत है, उसका अंत भी संभव नहीं है, बाकी सबका अंत होता है। और पांच वस्तु अनादि शांत है, समझे कि नहीं, और पांच वस्तु अनादि शांत है, एक वस्तु अनादि अनंत है, ब्रह्म अनादि अनंत है, बाकी सब अनादि शांत है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद माया का अविद्या का अंत हो जाता है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, तब तक माया का अंत नहीं होगा, लेकिन जब भी ब्रह्म ज्ञान होगा आत्मज्ञान होगा माया अविद्या का अंत हो जाएगा। माया और अविद्या का अंत हुआ तो जिस माया से ईश्वर भाव खड़ा हुआ था और जिस अविद्या से जीव भाव खड़ा हुआ था दोनों का भी अंत हो गया। और माया का अंत हुआ तो जिस माया के चलते जगत भाव खड़ा हुआ था उसका भी अंत हुआ। निमित्तापाय नैमित्तिकस्यापि अपाय, जिस निमित्त से जो खड़ा था जो भाव तैयार हुआ था वो निमित्त गया तो नैमित्तिक गया। बिजली के द्वारा एसी चलने से कमरा ठंडा हुआ था, बिजली यदि चली जाए तो एसी बंद हो जाए, एसी बंद हो जाए तो कमरा क्या ठंडा रहेगा। ये जिस निमित्त से जो भाव खड़ा हुआ है वो निमित्त जाते ही नैमित्तिक भी चला जाएगा। इसीलिए माया अविद्या के चलते ईश्वर और जीव भाव खड़ा हुआ था और माया अविद्या के चलते ही जगत भाव खड़ा हुआ था और माया अविद्या के चलते ही परस्पर जीव ईश्वर जगत इनका संबंध चला था। जीव सेवक है और ईश्वर सेव्य हो गया। ईश्वर और जीव के बीच में कौन सा संबंध हुआ, सभ्य सेवक भाव संबंध। अच्छा जीव और जगत के बीच में कौन सा भाव संबंध हुआ, भोग्य भोक्ता भाव संबंध। जगत में कौन सा भाव आ गया, भोग्य भाव, और जीव में कौन सा भाव आ गया, भोक्ता भाव। और इसी तरह परमात्मा में और जगत में कौन सा भाव संबंध आ गया, जन्य जनक भाव संबंध आ गया। परमात्मा उपादान निमित्त कारण रूप जनक बन गया और जगत कार्य रूप जन्य बन गया। ये परस्पर संबंध है इनका, और ये सारा संबंध किससे खड़ा हुआ, तो उसी माया से, और माया अविद्या चला गया तो संबंध भी चला जाएगा कि नहीं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं, भगवान शिव से स्तुति करते हुए कहते हैं, हे राजमौले तत्प्रसादात, आपकी बड़ी कृपा हुई है हमारे ऊपर। आद्या विद्या, आद्य शब्द से कारण रूपा विद्या, हालांकि अविद्या अनादि है, फिर भी सबका कारण रूप होने के कारण उस अविद्या को क्या कहा, आद्या अविद्या। आद्य माने पहला कारण। राम गीता में भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया ना, अज्ञान में वास्य ही मूल कारण है लक्ष्मण, अस्य सारा संसारस्य जगतस्य मूल कारणम अज्ञान, तदहानमेवात्र विदो विधीयते। ब्रह्म विद्या का पूरा कोशिश यही है कि वो आद्या अविद्या, पहली जो अविद्या जगत कारण रूप रूपा जीव ईश्वर जगत आदि को निर्माण करने का पहले कारण रूपा अविद्या, ये अविद्या कहां थी बोलो, कहां थी ये, हृदगता। आद्या विद्या हृदगता, हृदगता माने हृदय में ही रहने वाली अविद्या, ऐसा नहीं है अविद्या ने जीव को बनाया और अविद्या कहीं और जगह रह गई और जीव कहीं और जगह रह गया, ऐसा नहीं, उसी हृदय में ही अविद्या भी है। परमात्मा को न जानने का जो मूल कारण है आवरण शक्ति, वो कहां है, हृदय में, इसलिए अविद्या आद्य अविद्या हृदगता। हृदयस्थ अविद्या के द्वारा हृदयस्थ परमात्मा आवृत हो रहा है, ये देखो, हृदयस्थ मूला विद्या के द्वारा हृदयस्थ परमात्मा क्या हुआ, आवृत हुआ, ढका हुआ है। परिणाम यह हुआ कि हृदयस्थ जीवात्मा हृदयस्थ परमात्मा को नहीं जान पा रहा है, वो लुका छिपी है, परमात्मा आंख छुप गए, अब जीवात्मा खोजे फिर रहा है, जहां छुपे वहां पहुंचकर खोजता नहीं है, वहां पहुंचता ही नहीं, तो कहां से मिलेगा उसको, तो कहता परमात्मा नहीं मिले। निर्गता, आपकी कृपा से सबसे पहला काम क्या हुआ, हृदगता आद्य अविद्या निर्गता, हृदय में अनादिकाल से रहने वाली मूला विद्या आपके प्रभाव से कृपा से प्रसाद से निर्गता नष्ट हो गया, चला गया, हट गया, तो फिर हृदय में क्या आ गया महाराज, तो अविद्या चला गया, फिर आ सकता है कि नहीं, अविद्या फिर आ सकती है कि नहीं, बोले अब तो नहीं आएगी, क्यों, हृद्या विद्या हृदगता तत्प्रसाद, उस अविद्या के जगह उस हृदय में विद्या हृदिया, हृदय में रहने वाली विद्या ब्रह्म विद्या आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान और विद्या हृदगता, वो हृदय में अब प्रतिष्ठित हो गई, समझे कि नहीं, आदि अविद्या हृदगत हृदयस्थ अनादि यानी सारे जगत का कारण रूप अविद्या निकल के गया और परमात्मा को प्रकाशित करने वाला ब्रह्म विद्या हृदय में अब प्रतिष्ठित हो गया है। अब उसके हृदय में रहते हुए अविद्या दोबारे आने की संभावना नहीं है।
1: ओम नमः शिवाय। Dear listeners of Shaivam.org Radio, the size of our audio collection continues to grow day by day. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahima Stotra in Hindi, presented by Swami Nishtanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.

0: तत्व जिज्ञासु भाइयों बहनों माताओं, हम लोग 17वें अध्याय के भगवान श्री कृष्ण के द्वारा यज्ञ दान तप आहार वगैरह के बारे में जो भेद बताए हैं, उनमें से तप के भेद या स्वरूप का विचार हम लोग कर रहे हैं। क्यों भगवान ये बता रहे हैं? अर्जुन को ऐसा कौन सा प्रश्न उठा? तो देखिए, शुरू में अर्जुन ने यही पूछा कि भगवान, कार्य और अकार्य को करने के लिए शास्त्र ज्ञान आवश्यक है। अब सब लोग तो शास्त्रज्ञ है नहीं, किंतु श्रद्धा से जरूर अन्वित होते हैं, श्रद्धावान जरूर होते हैं। पूर्वाचार्यों से या परंपरा से जो प्राप्त ज्ञान है उसके अनुसार व्यक्ति यज्ञ दान तप वगैरह करते हैं, तो ये जो उनकी निष्ठा है, आहार यज्ञ दान तप वगैरह में ये जो निष्ठा है, वो निष्ठा का कौन सा स्वरूप है? सात्विक, राजसिक या तामसिक? ऐसा अर्जुन ने पूछा भगवान को कि जो शास्त्र विधि को नहीं जानते हुए किंतु श्रद्धा से कर रहे हैं, तो उनकी जो निष्ठा यानी कि स्थिति, वो स्थिति कौन सी है? सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है? अर्जुन ये प्रकार जानने का कारण यह है कि सात्विक स्थिति हो तो वो ज्ञान का अधिकारी है, राजसिक या तामसिक हो तो वो अधिकारी नहीं होगा। इसलिए अर्जुन ये चाहता है कि भगवान, आप ये जो सत्कार्य है, आहार यज्ञ दान तप वगैरह, उनके आप भेद बताएंगे तो मैं उन भेदों में से सात्विक भेद को जानूंगा और तदनुसार अनुष्ठान करूंगा तो मैं भी ज्ञान का अधिकारी बन जाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में कहा कि हे अर्जुन, ये जो पुरुष है वो श्रद्धामय है। श्रद्धामयोयम पुरुषो यो यत् श्रद्धः स एव सः। और सबकी जो श्रद्धा है वो सत्व, रज और तम गुण के अनुसार हुआ करती है। इसलिए संसार में देख सकते हैं, श्रद्धा वाले तो सब होते हैं, किंतु वो श्रद्धा सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है, ये जानना बहुत बड़ी स्थिति है। आजकल हम संसार में देखते हैं कि जो उपासना स्वरूप, उपासना का स्वरूप है, देवता का जो स्वरूप है, उपासना की विधि का जो स्वरूप है, वो इतना बिगड़ता जा रहा है, विकृत होता जा रहा है कि वो उल्लास की जगह उन्होंने त्रासोल्लास का स्वरूप धारण कर लिया है क्या नहीं? तो ये बहुत जानना जरूरी है कि हम लोग जो कर रहे हैं क्या तामसिक कोटि का है, राजसिक कोटि का है या सात्विक कोटि का है। जब तक ये भेदों को नहीं समझेंगे हम लोग, ये नहीं चाहते कि हम तामसिक कोटि का करें, किंतु जाने अनजाने तामसिक कोटि का वो हो जाता है। स्पष्ट रूप से भेद हमारे सामने आ जाए तो हम जरूर सात्विक कोटि का ही ये आहार यज्ञ दान तप करने के लिए जरूर प्रयत्न करेंगे। तो मैं यही कहने जा रहा हूं इस गीता के संदर्भ में कि हम सब लोगों को ये आहार यज्ञ दान तप वगैरह जो है वो गीता में भगवान ने उनके असात्विक आदि तीन भेद बताए हैं। अब वो देख करके हम यदि करें तो कर तो हम रहे ही है, ये तो नहीं कि हम बिना करे रह सके। कोई व्यक्ति किए बिना तो रह ही नहीं सकता है। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। भगवान ने गीता में कहा है कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भर मात्र भी किए बिना नहीं रह सकता। तो ये जो क्रिया का जो प्रवाह है वो पुण्य धर्म में ही बनाए। पहले तो क्रिया के प्रवाह को पहले धर्मानुरूप बनाए, धर्मानुरूप उसमें भी सात्विक कोटि का बनाए, किंतु ये कब बना सकते हैं? हमें गीता के संदर्भ में इनके स्वरूप को जानेंगे तब। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए आहार यज्ञ दान और तप के त्रिभेद बता रहे हैं, सत्व रज और तम ये भेद बता रहे हैं। उन भेदों में से हम तप के भेद का विचार कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तप के सात्विक राजसिक और तामसिक भेद बताना चाहते हैं, किंतु उससे पहले भगवान ये बताना चाहते हैं कि ये तप जो है वो शरीर से मन से और वाणी से तपा जाता है। शरीर का तप क्या है, वाणी का तप क्या है, मन का तप क्या है, पहले भगवान ये शरीर आदि भेद से तप का जो त्रैविध्य रूप है वो बता देना चाहते हैं। फिर भगवान ये कहेंगे कि ये किस प्रकार से किया जाए तो ये सात्विक कहा जाएगा, किस प्रकार से किया जाएगा तो ये राजसिक कहा जाएगा, या किस प्रकार से किया जाए तो ये तामसिक कहा जाएगा। इसलिए पहले हम ये देख रहे हैं ये शरीर वाचिक और मानसिक रूप से तप के तीन भेद, त्रिविध स्वरूप। शरीर से होने वाले तप के बारे में हम लोगों ने कल विचार किया, देवादि की पूजा, ब्रह्मा विष्णु शिव सूर्य और दुर्गा, ये पांच जो देव है वो हमारे सनातन धर्म के मुख्य रूप से इसकी पूजा उपासना की जाती है, पंचदेव उपासना। तो ये सब देवताओं की पूजा, द्विज यानी कि जो ये वैदिक अध्येता वर्ग है जो विद्वान है उनकी पूजा, गुरु की पूजा, गुरु में जैसे कल आपको बताया था माता और पिता को इसमें सम्मिलित कर लेना है, माता पिता और गुरुजी की पूजा, और प्राज्ञ की पूजा जो ज्ञानी पंडित है उनकी पूजा, शौच बाह्य और आभ्यंतर की पवित्रता, और आर्जवम यानी कि अकौटिल्यम जीवन में हर कार्यों में सरलता, और ब्रह्मचर्य निषिद्ध मैथुन, और अहिंसा और शास्त्र प्राणी पीड़न, जो शास्त्र में प्राणियों की पीड़न के लिए जो निषेध किया गया है वो निषेध के अनुसार चलना, यानी कोई जीव की हिंसा न करना, ये सब कार्य जो है यदि कोई करता है तो समझ लो कि वो शरीर से तप कर रहा है। ये जो है शरीर संबंधी तप है। ये 17वें अध्याय का 14वां श्लोक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि वाणी का तप क्या है। भगवान श्री कृष्ण 15वें श्लोक में वाणी का तप बता रहे। देखे वाणी के स्वरूप, वाणी का जो तप है उनके स्वरूप को देखे। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम् तप उच्यते। ये वाणी से तपा जाने वाला जो तप है उनका स्वरूप भगवान ने इसमें बताया। देखिए क्या कहते हैं भगवान अर्जुन को कि अर्जुन अनुद्वेगकरम वाक्यम, ऐसा वाक्य का उच्चारण, हम वाणी से ऐसा बोले जिसको सुनकर के किसी के मन में उद्वेग न होवे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम यदि बोले तो समझ लिए कि ये वो वाणी का तप है। अनुद्वेग करम वाक्यम उद्वेगम भयम, भगवान भाष्यकार कहते हैं उद्वेग का अर्थ है भय, यानी कि हम ऐसा ना बोले जिसको सुनकर के सामने वाला व्यक्ति भयभीत हो। बोलते समय बहुत ध्यान रखे कि हम ऐसा ही वाक्य बोले जिससे सामने वाला व्यक्ति डर न जाए, हमसे डर न जाए। ऐसा वाक्य बोले कि सामने वाले व्यक्ति के मन में हमारे प्रति विश्वास नहीं है, तो हम ऐसा बोले ताकि हमारे प्रति उसके मन में विश्वास उत्पन्न हो जाए। तो इस वाक्य को कहते अनुद्वेग करम वाक्यम। फिर आगे कहा सत्यम प्रिय हितम चयत। इतना ही नहीं, वो वाक्य भय उत्पन्न करने वाला हो इतना ही नहीं, भय उत्पन्न करने वाला न हो इतना ही नहीं, किंतु वो सत्य भी हो, प्रिय भी हो और हितकारी भी हो। ऐसा वाक्य का उच्चारण हम करें सुनने वाले के मन में भय न हो, उद्वेग न हो, और वो वाक्य सत्य भी हो, प्रिय लगने वाला भी हो और हितकारी भी हो। देखिए इससे ये यहां प्रतीत होता है कि हम लोग जब बोलते हैं तो पहले कितना ख्याल रख करके बोलना चाहिए। ये बात कह रहे ये नहीं कि मुखम अस्ति इति वक्तव्य, मुख दिया है भगवान ने कुछ बोलते रहे, ऐसा नहीं। बोलते समय बहुत ध्यान रखे कि हम बोल रहे हैं वो सामने वाले को उद्वेग तो नहीं कर रहा। ठीक है आप कहेंगे कि उद्वेग नहीं कर रहा है, कपटी व्यक्ति भी बढ़िया से बढ़िया बोलता है कि नहीं। सामने वाले की पीठ में यदि खंजर भोंकना है तो वो पहले बड़ी तैयारी करके आता है और ऐसे वाक्य बोल करके उसके मन में विश्वास उत्पन्न कर देता है। तो अनुद्वेग कर्म वाक्य तो वो भी हो सकता है, इसलिए वो यहां ग्रहण न हो जाए, वो तब के लिस्ट में उनका नाम न आ जाए, इसलिए भगवान ने आगे और भी तीन विशेषण दिए। नहीं तो जैसे कहते हैं कोई मीठे वचन बोलते हैं चिकने चुपड़े चाशनी में डूबोए हुए, जैसे कहते हैं चाशनी में डूबे हुए वाक्य बोलते हैं व्यक्ति चक्कर में आ जाता है, वो भी तो अनुद्वेग कर्म वाक्य है, किंतु वो सत्य नहीं है। भगवान आगे कहते हैं कि वो वाक्य कैसा होना चाहिए, सत्य भी होना चाहिए। सत्य ही हो इतना ही नहीं, प्रिय भी हो। प्रिय भी हो इतना ही नहीं, वो हितकारी भी हो, ये तीनों एक साथ में होने चाहिए, एक एक भी नहीं। आचार्य शंकरानंद जी यहां पर कहते हैं कि ये तीनों एक साथ में होने चाहिए, इसमें एक भी हो, जैसे सत्य हो, वाक्य सत्य हो, किंतु प्रिय ना हो तो वो नहीं बोलना चाहिए। यदि सत्य भी हो, प्रिय भी हो, किंतु हितकारी ना हो तो वो भी नहीं बोलना चाहिए। सत्य, प्रिय और हितकारी तीनों गुण उसमें होने चाहिए, और चौथा जैसे कहा उद्वेगकारी ना हो। मनुस्मृति आप लोग पढ़े होंगे, मनुस्मृति में मनु जी कहते हैं सत्यम ब्रुयात, सत्यम ब्रुयात, प्रियम ब्रुयात, न ब्रुयात सत्यम अप्रियम, सत्यम च नान्द्रितम ब्रुयात, एष धर्म सनातन। कहते हैं कि सत्यम ब्रुयात, पहले तो कहा कि बोले तो सत्य बोले, इतना ही नहीं साथ साथ में प्रियम च, प्रिय भी बोले। फिर कहा कि न ब्रुयात सत्यम, सत्य बोले पर ऐसा ना बोले कि जो अप्रिय लगने वाला हो। कई लोग कहते हैं ना, मेरे को तो सत बोलने की आदत है, मैं तो सबको सच सच बता देता हूं, मैं किसी की शय शर्म नहीं रखता हूं, हर किसी को जो है जो सच्चा है तो बता ही देता हूं, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन जब उनको कोई वो सत्य बोल देता है तो क्या हो जाता है? गुजराती में बोलते मैं तो बधाने साचो बोली जाऊ छू, हूं तो बधाने साचो कही दऊ छू, पण तने कोई साचो कहसे त्यारे तब क्या होगा? तब पता चलेगा कि सत्य का क्या स्वरूप है, वो प्रिय है या अप्रिय है। इसलिए मनु जी कहते हैं सत्य हो लेकिन अप्रिय नहीं होना चाहिए। कई वाक्य ऐसे होते हैं वो सत्य होते हुए भी अप्रिय हो तो कहते हैं न ब्रुयात सत्यम अप्रियम। ठीक है, सत्यम च नान्द्रितम ब्रुयात, एष धर्म सनातन, और झूठ नहीं होना चाहिए, सत्य ही होना चाहिए, तो कहते हैं ये सनातन धर्म है। इसलिए भगवान भी इसी बात को ही ध्यान में रखते हुए यहां कहते हैं। देखिए आप लोग एक बात को ध्यान में रखें कि हमारे यहां श्रुति शास्त्र की संख्या का कोई पार नहीं है, कितने उपनिषद है हमारे यहां, स्मृति जो है स्मृति शास्त्र की संख्या का कभी कोई पार नहीं है, कई एक स्मृतियां है हमारे यहां, और सूत्र ग्रंथ भी इतने उनकी भरमार है, किंतु सबका जो तात्पर्य है वो है एक ही है। यदि आप विचार करेंगे तो सब जगह एक में ही मेल होगा उनका। अब मनुस्मृति में जो कहा है वही यहां भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं, किंतु भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न ऋषि के द्वारा भिन्न भिन्न माहौल में लिखी गई बातें होती है, तो कथन में भेद जरूर होता है किंतु जो कथ्य है वो एक ही होता है। इसलिए भगवान कहते हैं सत्यम प्रिय हितम चयत, सत्य भी हो, प्रिय भी हो और हितकारी भी हो। आचार्य शंकरानंद जी तो यहां कहते हैं कि जैसे वेद पाठ करते हैं, वेद पाठ करते हैं तो वो वेद पाठ जैसे उदात, अनुदात और स्वरित, ये तीनों स्वर से युक्त होना चाहिए। केवल उदात से हो इतना ही नहीं, अनुदात और स्वरित ये तीनों से युक्त होना चाहिए। वैसे ही यहां पर उन्होंने कहा कि वाक्य अनुद्वेग कर हो इतना ही नहीं, ये सत्यम प्रिय और हितकारी ये तीनों गुणों से सम्मिलित वाक्य होना चाहिए। केवल सत्य भी नहीं, केवल प्रिय भी नहीं और केवल हितकारी भी नहीं, तीनों गुण होने चाहिए। तो ऐसा जो वाक्य है उस वाक्य का उच्चारण यदि हम करें तो मान लीजिए कि हम वाणी का तप कर रहे हैं। अभी आगे आ रहे मानस तप में, वाणी का तप ये नहीं कि बोलना बंद कर दे। लोग यही समझते हैं कि बोलना ही बंद कर दो, बोलना बंद करना वो तप नहीं है। भगवान ने हमको वांग दिए तो चुप रहने के लिए नहीं है, चुप रहना किंतु असत्य के रूप में कि हम न बोले, यही जो है चुप्पी है। चुप्पी का अर्थ यह नहीं कि जो है जहां बोलने योग्य हो वहां भी न बोले। तो जो एक तो देखिए कोई व्यक्ति जो है अंट बंट संट बोल देता है तो उससे भी नुकसान होता है, ये तो आप देखते ही है, और उससे भी ज्यादा कई गुना नुकसान नहीं बोलने से होता है। लेकिन ये लोगों के ध्यान में नहीं आता कि देखो इन्होंने नहीं बोलने से जो नुकसान किया वो लोगों की नजर में नहीं आता है, लेकिन वो नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा उठाना पड़ता है। इससे अच्छा है कि जो वो बोल देता है तो उससे नुकसान तो थोड़ा होता है और उनका समाधान भी हो जाता है, किंतु यथार्थ बात नहीं बोलना, चुप रहना, उससे जो नुकसान होता है वो इतना लंबा चौड़ा नुकसान होता है कि उसका समाधान ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है, प्राय ऐसा देखने में आता है। तो देखिए ये नहीं बोलने का स्वरूप और बोलने का स्वरूप ये दोनों भगवान यहां बता रहे। इसलिए कैसा बोलना, तो कहा अनुद्वेगकारक वाक्य हो, प्रिय हो, सत्य हो और हितकारी हो। तो ऐसा यदि हम बोलने में समर्थ हो गए अभ्यास के बल से तो समझ लीजिए कि हम वाणी का तप कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, देखिए और वाणी का तप का वो क्या है, स्वाध्याय अभ्यसनम च एव, ये भी जोड़ दीजिए स्वाध्याय अभ्यसनम। देखे स्वाध्याय करना ये भी वाणी का तप है। आप लोग कर रहे हैं नहीं स्वाध्याय, ये स्वाध्याय तो है। रोज सुबह में फटाफट तैयार होकर के 7:30 को ध्यान में रखते हुए जैसे लोग भागा भागी ट्रेन में करते हैं वैसे ही हम भागा भागी करते हुए यहां पहुंचते हैं। तो आप ये मत समझे कि हम फालतू कोई समय बिगाड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं वो वांग्मयम तप का है। भगवान ने आप लोग गीता में पढ़ियो स्वाध्याय करना, और इससे भी और बढ़िया स्वाध्याय शब्दतः अध्ययन करना, जैसे इनके बाद तुरंत होता है 8:30 के बाद 8:45 और 9:30, 8:45 और 9:30 के बीच में जो होता है वो इससे भी अग्रिम कोटि का स्वाध्याय। ये भी स्वाध्याय तो है ही, किंतु उससे जैसे हम लोग 100 रुपये को भी पैसे ही कहेंगे कि मेरे पास पैसे है, ठीक है कि नहीं, 1000 रुपये हो तब भी कैसे पैसे ही है मेरे पास, किंतु 100 में और 1000 में फर्क है कि नहीं, ठीक वैसे ही समझ लीजिए। ये भी स्वाध्याय ही है, किंतु समझ लीजिए वो 100 रुपया और 1000 रुपये कोटि का जो है, ये तो दृष्टांत है, इसको पकड़ के मत रखियो कि 100 रुपया और 1000 रुपया, ये भेद दिखाने के लिए बता रहा हूं मैं। और इससे भी और आगे बढ़े हम तो इसके बाद जो होता है वो स्वाध्याय का वस्तु सत्स्वरूप है कि हम ग्रंथ का शब्द का अध्ययन करें। वो है स्वाध्याय। और ये स्वाध्याय को करना सज्जनों वो वाणी का तप है। भगवान गीता में यहां पर कहते हैं, देखो स्वाध्याय अभ्यसनम, स्वाध्याय का जो अभ्यास, स्वाध्याय का अर्थ है यहां पर वेद, स्वाध्यायस्य अभ्यसनम, यहां पर ऐसा अर्थ है स्वाध्याय का अभ्यास। तो अब स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय का अर्थ हमारे वहां आचार्यों ने कहा वेद। अब अभ्यसनम जोड़ दीजिए तो अब वेद अभ्यसनम हुआ। अब अभ्यसनम वो वर्तमान कोटि में कंटिन्यू प्रक्रिया का अर्थ है। अब आपको उसको स्थिर रूप में बोलना है तो कह सकते हैं वेदाभ्यास। अब बताइए भला वेद क्या है? पता है वेद किसको कहते हैं? तो हम लोग वेद के नाम तो जरूर जानते किंतु वेद के स्वरूप को आज हालत यह है कि हम नहीं जानते। हम अपने को वैदिक सनातन धर्मावलंबी कहते हैं, ये भी कहते हैं कि हमारा जो धर्म है वो वेद मूलक है। और चार वेद है इतना ही जानते, और विडंबना ये होती जा रही है कि हमारे बच्चे को आजकल पूछा जाए वेद क्या है तो कहेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे कि वेद क्या है, तो हम लोग उनको ये बता नहीं पाते हैं कि वेद क्या है, क्योंकि हम लोगों को भी पता नहीं है। देखिए वेद क्या है? धर्म ब्रह्म प्रमाण वाक्यम वेद। धर्म में और ब्रह्म में जो प्रमाण वाक्य है उनको कहते हैं वेद। ये वेद का वैसे तो कई प्रकार से स्वरूप बताया गया है किंतु ये है वेदत्व जो धर्म और ब्रह्म को बता देवे। क्यों? धर्म और ब्रह्म अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं है? नहीं है। धर्म के स्वरूप को या साथ साथ में अधर्म भी ले सकते हैं। ये हम क्या धर्म है क्या अधर्म है वो हम तर्क के द्वारा कभी उनको सिद्ध नहीं कर सकते। हम बाहर से प्रमाण के विचार किए बिना, वैदिक प्रमाण का विचार किए बिना किसी चीज को धर्म या अधर्म नहीं ठहरा सकते हैं। हम अपने आप किसी चीज में ये नहीं कह सकते हैं कि ये धर्म है या अधर्म है। ये कोई मनुष्य बुद्धि का फल नहीं है। आजकल के समय में हर चीज को तर्क के द्वारा परखा जाता है और उससे आगे कहते हैं विज्ञान के द्वारा इनको परखी जानी चाहिए, किंतु कुछ चीज ऐसी भी है जहां पर विज्ञान की भी पहुंच नहीं है। आजकल के बुद्धिजीवी वर्ग हर चीज में ये सोचता रहता है कि ईश्वर के बारे में भी कहते हैं वो बुद्धि का विषय है। तो आजकल आप अखबार में देखते हैं कि न जाने कैसी कैसी बातें आती है। आजकल एक लेखक की एक पुस्तक बड़ी प्रसिद्ध हो रही है, वो नाम पूरा याद नहीं, से कुछ द लीजेंड का ऐसा कुछ नाम है, और उसका लेखक भी कोई है स्टीफन हॉकिंग ऐसा नाम है। तो वो उनकी बड़ी चर्चा आ रही है आजकल। वो कहते हैं कि मैंने इतने सालों के अभ्यास से ये पाया, मैंने जाने ये कोई भौतिक शास्त्र का वो अध्यापक है कोई वैदेशिक यूनिवर्सिटी में, तो वो कहता है मैंने इतने सालों के अभ्यास से ये निर्णय पर पहुंचा और ये पाया कि इस संसार के उत्पत्ति में ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। कहते हैं ये जो संसार चल रहा है वो कहते हैं कुछ भौतिक शास्त्र के नियम के अनुसार चल रहा। उनको पता, उनको ये पूछा जाए कि ईश्वर से नहीं चल रहा, भौतिक शास्त्र के नियम से ही तुम बताओ, तो फिर ये भौतिक शास्त्र के नियम क्या है जो जिससे संसार तुम कहते हो चलता है, ये क्या बला है? भौतिक शास्त्र के जो नियम है वो क्या बला है? वो कहां से आए? वो कहां से उत्पन्न हुए? किससे उत्पन्न हुए? वो किसने बनाए वो नियम? तो उनके पास कोई उत्तर नहीं है। वो तो यही कहते हैं कि बस भौतिक शास्त्र के नियम स्वभाव से, कई लोग कहते हैं स्वभाव से चलता है। अब ये स्वभाव क्या है जो जो ये सारे संसार को चला रहा है, इतना समर्थ और शक्तिशाली है जो स्वभाव, वो क्या है? इसका तो भी तो विचार करना पड़ेगा कि ये जो स्वभाव चला रहा है या कौन चला रहा है। तो बुद्धिजीवी वर्ग जो है इसके चक्कर में आकर के वो भी अखबार में न जाने ऐसी बातें लिखते हैं कि देखो अब ये संदर्भ, ये अब सोचने की समझने की बात आ गई कि ईश्वर के बारे में सबसे ज्यादा विचार कह रहे हमारे भारतवर्ष में और हमारे ऋषि मुनि आचार्यों ने किया।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम shaivam.org। ओम नमः शिवाय।
2: Dear listeners of shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 2, Sukta 1.

0: ஓம் நம சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் தைத்திரிய உபநிஷத் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஆனந்த அந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: பக்தி சத்ஷ்ணுதா வாஸ்தல் மெய் மாதாவோ விஷ்ணு மெய் வேணோ ஆத்மஸ்வரூபந்தோ தைத்திரியோ ஆரண்யகோ கீ. தைத்திரிய உபநிஷத் கே மாத்யம் சே பிரசங்க சல் ரஹா ஹே, ஜிஸ்கே அந்தர்கத் व्याख्याकार जिन्होंने हिंदी टीका की वह मंगलाचरण करते हुए संकेत करते हैं कि यही रिवे गुरुभि पूर्वम पदवाक्य प्रमाणतः व्याख्याताः सर्ववेदान्ता तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। संकेत उन्होंने किया कि पूर्व काल में अर्थात जहां से सृष्टि प्रारंभ हुई और सृष्टि के प्रारंभ में ही जिस परमात्मा ने उस सृष्टिकर्ता को ज्ञान दिया, प्रहरण करके शब्द कर दिया माने ज्ञान भी दिया साथ, और जिसने ज्ञान दिया और जो ज्ञान अभिन्न रूप से रहने वाला, उसकी सत्ता के साथ में ज्ञान की अभिन्नता, ऐसा नहीं कि सत्ता अलग हो और ज्ञान अलग, जहां उसकी सत्ता है वहां ज्ञान भी विद्यमान, ये संकेत किया। ऐसा करके फिर वहां से प्रवाह चला और प्रवाह का क्रम भी आपने उपनिषदों में सुना है। उपनिषदों के अंतर्गत चर्चा आती है कि उस ब्रह्मा ने, सृष्टिकर्ता ने उस ज्ञान को आगे प्रवाहित कैसे किया, तो वह आपने सुना है कि ब्रह्मा ने, प्रजापति ने अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह ये संकेत दिया। किसको उस ज्ञान को कहा, तो संकेत किया कि अथर्वा को, और वो क्या है, ज्येष्ठ पुत्र, प्रथम पुत्र। ऐसे उस अथर्वा को उन्होंने वहां पर जो है वो ज्ञान, अब उस ज्ञान में कोई शर्त नहीं है, ध्यान रखना, वहां पर जो ज्ञान का प्रवाह हुआ उस ज्ञान में नियम या कोई शर्त नहीं, सीधे सीधे जो है ब्रह्मा से वह ज्ञान किस में आया, कहा अथर्वा में आया। आगे चल करके जहां सत्यवाय भारद्वाज आए प्राह और सौनक, तो सौनक जहां पर आए हैं वहां से नियम चला, तो वहां तो कहा विधिवत उपसन्न, विधि के अनुसार वो वहां पर आचार्य के पास जाते हैं, और विधि के अंदर, तो विधि क्या है, तो समित पाणियम सोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसृत्य, इस विधि का प्रारंभ वहां से हुआ। उससे पूर्व में जो क्रम आया है अथर्वा ने भी आगे प्रवाह बढ़ाया, तो वहां पर ऋषियों को वो ज्ञान स्वाभाविक रूप से प्राप्त हुआ, ये चर्चा आई। लेकिन आगे चल करके सौनक से जो है क्या है, वहां नियम विधि की चर्चा आई, उससे पहले कोई विधि और कोई नियम, क्यों, तो वेद ही ज्ञान है और उस ज्ञान में भी फिर आगे चल करके विधि जो की गई, और आगे भी कहते विधिवद अधीत वेद वेदांग तेन, जहां अधिकारी की, वेदांत के अधिकारी की चर्चा की, वेदांत का अधिकारी कौन, तो वहां यही संकेत किया विधिवद अधीत है ना, वेद वेदांगत्व न, और अधिगत आपाततः, और उसके अर्थ को उसने अच्छी तरह से जान लिया। फिर उसके बाद नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासना अनुष्ठान निर्गत निखिल कलमसा है ना, निर्मल स्वांतः वेदांतस्य अधिकारी, ये चर्चा की, तो वेदांत के अधिकारी की बात की, लेकिन उससे पूर्व में कोई वहां अधिकारी की बात नहीं, सीधे सीधे ज्ञान आया। क्या मतलब इसका, इसका सीधा सा मतलब है वहां पर जो शब्द दिया है अथर्व, तो देखो हमारे वेद कुलेखर के पहले उसमें विभाग नहीं, वेद के विभाग तो बाद में हुए। पहले तो वेद सीधा था, क्या था? ज्ञान। वेद का मतलब है ज्ञान, और जो सत्तात्मक ज्ञान। लेकिन आगे जो है विभाग किए गए, तो विभाग करने की आवश्यकता क्या पड़ी? तो तुलसीदास ने एक बड़ी सुंदर बात की कि बूंद परत जिमे ढावर पानी और तिमे जीवे माया, ये संकेत किया। क्योंकि जैसे राजस्थान में आप देखते हो, वर्षा होती है, नदी प्रवाहित होती है, लेकिन नदी का प्रवाह प्रारंभ में तो दिखाई देता है और फिर वो प्रवाह गायब, क्योंकि वालुका अधिक है, तो वालुका में वह प्रवाह ही उसका गायब हो जाता है, माने चारों तरफ फैल जाती है, तो नदी का स्वरूप ही नहीं रह जाता। अब वहां पर क्या करना चाहिए? तो नदी के लिए फिर खुदाई करनी पड़ेगी, तो ये नियम आएगा, तब नदी नदी रहेगी। इसी प्रकार से यहां पर भी संकेत किया कि जब प्रवाह होता है तो प्रवाह के अंतर्गत उस पृथ्वी की स्थिति को लेकर के आया, हृदय की स्थिति को लेकर के, अंतःकरण की जीव की स्थिति को लेकर के, वह ज्ञान जो है वो फैल जाता। और जब ज्ञान फैल जाता है तो ज्ञान का जो नदी रूप से स्वरूप, एक सरथा रूप से स्वरूप होना चाहिए, वो रह पाता नहीं। ठीक है, इसलिए फिर वहां नियम की आवश्यकता पड़ती। ये सब चर्चा। तो अब जो है ऐसा जब आया, इसी को गीता में भगवान ने कहा, सकाले नेह महता योगो नष्ट पर। जिस योग को मैंने वैवस्वात आदि से कहा, इच्छा को आदि से फिर कहा गया, वही मैं तेरे लिए कह रहा, कोई वो नवीन नहीं है, वस्तु वही है, लेकिन कालक्रम के अनुसार उसमें लुप्त प्रायता आ गई, इसलिए उसको पुनः जो है उद्घाटित करने के लिए, उन्हें उसको पुनः प्रस्थापित करने के लिए, और हम इस योग को तेरे से कह रहा। ये चर्चा की। ठीक यही, क्यों? जिसे हम जीव कहते हैं, तो जीव है क्या? तो अविद्या से उपहित का नाम ही जीव है, अंतःकरण की उपाधि से उपहित का नाम जीव है, और जब जीव है तो अविद्या होने के कारण उसमें प्रमाद होना भी स्वाभाविक, क्योंकि अविद्या ही विस्मृति रूप है, इसलिए वहां प्रमाद की स्थिति होने के कारण प्रमाद वसात वह जो क्रम था योग का वो समाप्त हो जाता, इसलिए क्रम सुचार रूप से बना रहे तब उसके लिए नियमों का पालन करना, और नियमों में भी फिर जो है उसको व्यवस्था देनी होती। तो इसलिए जो है जब उस वेद के अर्थात ज्ञान के स्वरूप को सीधा सीधा हम प्राप्त नहीं कर सके, तब उसमें भाग कर दिए गए।

कर्म के पश्चात क्या होता है, आपको एक प्रसन्नता, एक शांति प्राप्त होती है। और जहां शांति होती है, जहां प्रसन्नता होती है, तो आपका हृदय में जो आनंद है वो उल्लसित होकर के वो बाहर निकल पड़ता, गीत बन जाता। इसलिए वेद जो सामवेद है, उक्त प्रदान है, गीत प्रदान है, शांति का प्रचायक, इसके लिए उसका नाम ही रखा गया साम। आगे संकेत किया अथर्ववेद, तो ये क्या है, अभेदात्मक ऋचाओं से उपलक्षित जो है उसका नाम है अथर्ववेद। अर्थात अथर्व शब्द का अर्थ क्या है, न थर्व इति अथर्व, जहां थर्व नहीं है, और जहां थर्व नहीं है उसे क्या कहोगे, अथर्व। थर्व क्या है, थर्व का नाम है छिपाव कपट। थर्व का नाम क्या है, छिपाव या कपट। तो जहां पर किसी प्रकार का छिपाव नहीं है, जहां पर किसी प्रकार का कपट नहीं है, तो वहां पर क्या है, वहां पर वो ज्ञान जब छिपाव नहीं, कपट नहीं, कोई अवरोध नहीं, तो वो ज्ञान कैसा होगा, सीधा सीधा। जब सूर्य का प्रकाश आता है और खुला हुआ आकाश है, तो वहां तो सीधा सीधा प्रकाश होता, वहां कोई प्रतिबंध नहीं। लेकिन यदि वहीं पर हमने दीवारें बना दी, कमरा बना दिया, तो कमरे में प्रकाश कैसे आएगा, विंडोज से आएगा है, झरोकों से आएगा, तो सीधा सीधा नहीं आ पाएगा, तो क्योंकि वहां दीवालों का की प्रतिबंधता आ गई। ठीक इसी प्रकार से वहां जो अथर्व, जहां कोई छिपाव नहीं, तो अथर्वा शब्द का भी अर्थ क्या है, जहां किसी प्रकार की थर्वता नहीं है, जहां किसी प्रकार का छिपाव नहीं है, कोई अवरोध जहां नहीं, तो वहां तो ज्ञान सीधा सीधा आया। लेकिन आगे जब अंतःकरण की उपाधियां बन गई, तो क्या हुआ, तब ज्ञान तो आया, लेकिन वो ज्ञान फिर झरोकों से होकर के आता, कहीं बुद्धि के, मन के आदि है, झरोकों से होकर के आता, इंद्रिय आदियों से होता हुआ। इसलिए उस ज्ञान में हमें क्या दिखाती, जैसे प्रकाश में अल्पता दिखाई देती, उसमें व्यापकता दिखाई नहीं देती, ऐसे ही हमारे में भी जो ज्ञान है वो भी कैसा दिखाई देता, अल्प। तो हम कहते हैं है? अल्पज्ञ है, ज्ञान से जो अवच्छिन्न है वो क्या है, जीव है ना। और सर्वज्ञ तो ज्ञान विशिष्ट जो है वो क्या, वो परमात्मा। ये सब कल्पनाएं होती, तो यहां विभाग चलते रहते थे। लेकिन वेदांत क्या बतलाता, वेदांत कहता है कि जहां पर कोई भाग नहीं, जहां कोई विभाग नहीं, उसका नाम क्या है, वेदांत। मन जो सिद्धांत है, अर्थात जहां पर किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है, जो चारों तरफ आप्यायित हो रहा है, उसका नाम है वेदांत। तो ऐसे वेदांत का व्याख्यान किया, कब किया, तो पूर्व शब्द का प्रयोग किया, पूर्व ऋषियों ने, तो वो क्रम से आया। इसलिए आप बोलते भी हो, नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरं च व्यासम सुखम गौड पदम महंतम गोविंद योगींद्र, ये सब परंपरा भी गिनाते हो, है ना। तो अब जो है वहां तक जो है जब ज्ञान आया, ब्रह्मा से लेकर के और जो है अथर्वा सत्यवा आदि भारद्वाज आदि तक, तो वहां तक कोई नियम नहीं, वहां तक वो वेदांत सीधा का सीधा आया, वो ज्ञान सीधा का सीधा आया। लेकिन आगे चल करके शौनक ऋषि से जब परंपरा आई, तो वहां से फिर जो है परंपरा बदलने लगी, अर्थात वहां विधि का, नियम का जो है रूप प्रस्तुत किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि वहां पर जो है अवरोध आ गया, ये सब संकेत किया। तो वही संकेत किए पूर्व शब्द से, अब शौनक आदि जो ऋषि हैं उन्हें भी ग्रहण करेंगे, और उससे पूर्व जो हैं ऋषि उन्हें भी ग्रहण करेंगे। अब जहां प्रकाश सीधा सीधा आता है, तो वो जो होगा कैसा प्रकाश होगा, वो व्यापक प्रकाश होगा, विशुद्ध प्रकाश होगा, उस प्रकाश में कोई न्यूनत करने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे उन पूर्व के ऋषियों को द्वारा और जिन्होंने उसके पश्चात ग्रहण किया, तो प्रमाणों के बल पर ग्रहण किया। कैसे किया, प्रमाणों के बल पर ग्रहण किया, पद के बल पर ग्रहण किया, वाक्य के बल पर ग्रहण किया। तो जिन्होंने पद, वाक्य और प्रमाणों के बल पर ग्रहण किया, ऐसे उन ऋषियों ने भी वही ज्ञान ग्रहण किया जो पूर्व में जो है बगैर उसके सीधे सीधे उन्होंने ग्रहण किया था, उसी ज्ञान को उन्होंने भी ग्रहण किया।

0: ऐसा जो वेदांत, ऐसे उस वेदांत को ही इन्होंने संकेत किया कि मैंने पूर्व से सुना। अब थोड़ी सी चर्चा करने बात आ गई तो ऋग्वेद के अंतर्गत जितनी भी ऋचाएं हैं वो सारी ऋचाएं किसका प्रतीक हैं? तो बतलाया जाता है कि समस्त ऋचाएं स्तुति परक हैं। ऋग्वेद में जितनी भी ऋचाएं हैं वो कैसी है? स्तुति परक हैं। और यजुर्वेद में जो ऋचाएं हैं वो कर्म परक हैं। और सामवेद में तो है बिल्कुल प्योर कहते निखालिस क्या है? उपासना परक, ठीक है। और अथर्ववेद में जो है वो ऋचाएं कैसी हैं? तो कहा ज्ञान परक हैं या अभेद परक है, अभेद की परचाय का ज्ञान परक, ये संकेत किया। अब देखो स्तुति की चर्चा आई। स्तुति क्या है तो आप सब जानते हो, स्तुति का मतलब ही होता है हम जिसकी स्तुति करते हैं उसकी महिमा का बखान करते हैं। परमात्मा की स्तुति करते हो तो कहते हो करुणा वरणालय है, दीनबंधु है, सृष्टा है, हैं वो ये क्या है पालन करता है, लय करता है, सारे धर्म उसमें हम आरोपित कर रहे और फिर उससे हम चाहते हैं उन्हीं धर्मों को, ठीक है ना। तो स्तुति का मतलब प्रार्थना, प्रार्थना माने अर्थना चाहना, उससे हम कुछ चाहते हैं और जिससे चाहते हैं तो उसके सम्मुख होना पड़ता और सम्मुख होकर के उसकी प्रशंसा करनी पड़ती। तो ऋग्वेद जो है वो किसका परिचायक है? स्तुति का परिचायक। तो ये समझ लो तो हम उसके सम्मुख कब हो पाएंगे? तो सम्मुख होने के लिए यदि वो कहीं दूर है तो क्या करना पड़ेगा? हमें चल करके जाना पड़ेगा, उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, तो ये ऋग्वेद हो गया किसका प्रतीक? स्तुति का प्रतीक या चलने का प्रतीक, परमात्मा की तरफ जाना, उस सिद्धांत की तरफ जाना, ये क्या हो गया? ये चलना हमें सिखाता है कौन? ऋग्वेद। इसका मतलब क्या हुआ? चलना हमें सिखाता है ऋग्वेद। और चलकर के हम वहां पहुंच गए तो वहां पर अब हमें जो प्राप्त करना है तो उसके लिए हम उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे और फिर कुछ न कुछ तो कर्म करना पड़ेगा, वाणी से उच्चारण करेंगे तो ये कर्म ही तो होगा, तो कर्म करना पड़ता। तो कर्म का प्रतीक कौन हो गया? यजुर्वेद। अब चलना किससे होगा? तो पैरों से। चलना किससे होगा? पैरों से। और कर्म किससे होगा? तो हाथों से, गले से, है ऊपर धड़ से ही मान लो, पूरे धड़ से क्या होगा? का कर्म होगा, है ना। और अब जब हमने कर्म कर लिया और उससे प्रसन्नता प्राप्त हुई और प्रसन्नता प्राप्त हुई, हृदय उल्लसित हुआ, तो जब हृदय में उल्लास आएगा और वो उल्लास जब फूट करके निकलेगा, वो आनंद जब फूट करके निकलेगा तो कहां से निकलेगा? गले से, मुख से, कंठ से, है ना। तो आगे जो है शांति का परिचायक जो है कौन है? सामवेद। तो गले का पर... तो इसका मतलब हुआ कि पैर से चलना, शरीर से कर्म करना और अपने हृदय में जो कर्म करके हमें जो फल मिला है या जो शांति मिली है उसको जो है अपने गले के द्वारा जो है क्या करना? प्रकट करना, उसका नाम है सामवेद, वो शांति का प्रतीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पैरों का प्रतीक हो गया ऋग्वेद, ऐसे समझ लो, और हमारे धड़ का प्रतीक हो गया यजुर्वेद और गले का प्रतीक हो गया सामवेद। और आगे इन सहारे पर जो है कंट्रोल करने वाला आपका सिर, मस्तिष्क, और वो सबके साथ अभेद रखने वाला, क्या है? अभेद। तो वो सिरस्थानी सर्वश्रेष्ठ ऊर्ध है, तो वो जो है अभेद का प्रचायक। तो अथर्ववेद में सबका अभेद कहां होगा? कायां। तो वो अभेद का प्रतीक। तो अथर्ववेद किसका है? सिर का प्रतीक। तो अब बताओ वेद का सारा स्वरूप कहां आ गया? शरीर। तो समस्त जो है ये संसार भी ऐसे ही क्या है? का वेद रूप है। ही तो वेदांत बता ला, वेदांत का मतलब है जो एक सत्ता का प्रतिपादन करने वाला, तो सारी सत्ता किसकी हो गई? उसी की हो गई, उससे भिन्न तो कोई सत्ता हुई नहीं, है ना। इसी को दृष्टांत देकर के लोग समझाते हैं कि एक कोई संभ्रांत व्यक्ति थे, उनका बड़े बड़े शहरों में सर्वत्र बढ़िया अच्छा बिजनेस भी चल रहा था, और वो बड़े धर्मशील नीतिवान निपुण व्यक्ति थे। चार उनके बच्चे थे और चारों बच्चे भी उनके अनुयायी थे, उनके अनुकूल चलने वाले थे। तो अब जो है वो आनंद से रहते थे और पूरी तरह से सारे साधन उनके पास थे। उनके मन में विचार आया, अब मेरी वृद्धावस्था आ गई और हो सकता है कभी न कभी मुझे जाना होगा, इसलिए ऐसा करूं कि हमारे पास जो साधन है अभी तो सभी आनंद में हैं, अब ये जो साधन है इन साधनों को ऐसा निहित कर दिया जाए जिससे भविष्य में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध आ जाए तो इन बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, और यदि इसी प्रकार से हम छोड़ देंगे तो ये जो है इसे उच्छृंखलता में बर्बाद भी कर सकते हैं हमारे न होने पर। ऐसा विचार करके उन्होंने जो है स्वर्ण खरीदा, और एक स्वर्ण खरीद करके वॉक्स बनवाया, और वॉक्स बनवा करके उस वॉक्स को लेकर के अपने खजाने की एक कोठरी में और 10 फीट गड्ढा खोद करके और उसमें उसको दबा दिया, और उसी दीवार पर जो है लिख दिया कि मैंने जो है ये वॉक्स इतने फुट पर और इस पृथ्वी के नीचे दबाया है जिसमें इतने कुंतल सोना है, ये लिख के छोड़ दिया। अब ये लिख के छोड़ दिया और बंद कर दिया उसको। उसके पश्चात जब उनका समय आने पर शरीरांत तो हो गया, बच्चों ने उनका जो है यथाविध जो भी संस्कार आदि होता है वो सब किया, उसके पश्चात बच्चे जो है अपना कारोबार करने लगे तो धीरे धीरे बिजनेस जो है घाटे की तरफ जाने लगी। जब घाटे की तरफ जाने लगी तो विचार किया कि पिताजी ने संपत्ति तो बहुत थी, कहीं न कहीं जरूर उसको नियत किया होगा, उसको देखा जाए, सारे वही खाते आदि देखे। तो एक खाते में उन्होंने लिख भी रखा था, जैसे वहां दीवार पर लिखा था वैसे खाते में भी लिख दिया। वो उनका जो है खाता देखा तो अमुक कच्छ में और इस प्रकार से इतना जो है स्वर्ण हमने वॉक्स में इतने फुट पर ये सब लिखा हुआ देखा, का ठीक है। अब जब देखा तो देख करके कोठरी को खोला, कोठरी को खोल करके उन्होंने जो है खुदाई की, खुदाई की तो वॉक्स तो मिल गया, वॉक्स मिल गया, लेकिन वॉक्स को खोला तो वॉक्स खाली निकला। अब विचार करने लगे कि ये वॉक्स तो खाली है, पिताजी झूठ तो लिखेंगे नहीं, तो सोना कहां गया? तो कल्पना करने लगे किसी ने उड़ा दिया है, तंत्र मंत्र किसी ने कर दिया। इधर जो है बिजनेस धीरे धीरे अधिक घाटे में गई, जहां पर शहरों में उनकी बिजनेसें थी सारे वहां के जो है फैक्ट्रियां आदि भी बिक्री होने लगी, और धीरे धीरे इतना हुआ कि उनमें जो उनके बड़े बड़े भाई थे वो भी जाने लगे, छोटा भाई रह गया। इधर जो है बड़ी स्थिति नाजुक हो गई, अब बड़ा दुखी था, दुखी था तो दुखी होकर के बेचारा बैठा हुआ था। इतने में उनके एक मित्र, उन वृद्ध के जो मित्र थे वो कहीं बाहर थे, संयोग से बाहर से उनका आना हुआ और उसके ही यहां आ गए, और आ गए तो उसे दुखी देखा, उसकी सारी स्थिति परिवर्तित देखी, पूछने लगे। पूछा तो उसने सब बताया, कहा पिताजी के पास तो बहुत था, उन्होंने जरूर कुछ न कुछ किया होगा, वो बड़े बुद्धिमान थे। कहने लगे वो तो हमने देखा, वही खाते में इस प्रकार से लिखा था और इस प्रकार से उसको हमने खोजा भी, खोदा भी, लेकिन वो तो खाली निकला। वो वृद्ध थे है? तो सो न सवाजा वृद्धन वृद्धन तेजे पड़े कछनाई, तेन पड़े जिन साधन साधित दीह दया न दिपे जिन माई, सोद न दया जो धर्म धरे धर और धर्म न जो सो जो बसे छल छाई। तो वृद्ध की परिभाषा की हमारे पूर्वजों को इसलिए जो है वृद्धोपदेश भी माना गया शास्त्रों। अब उन वृद्ध ने कहा कि आप चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने जो लिखा वो गलत नहीं लिखा और सोना किसी ने उड़ाया भी नहीं, तुम्हारा सोना भी मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन एक काम करना होगा। कहा क्या? एक हथौड़ा और एक छेनी लानी होगी। कहा ठीक, और कल जो है प्रातःकाल हम तुमको तुम्हारा सोना प्राप्त करवा दें। उसने कहा ठीक। उसने जाकर के हथौड़ा ले आया, छेनी ले आया। सुबह जैसे हुआ वृद्ध आए, उन्होंने कहा चलो अब वो वॉक्स कहां है हमको दिखलाओ। ले गए वॉक्स के पास, जाकर के उन्होंने कहा छेनी इस पर रखो और ऊपर से हथौड़े से चोट मारो। जैसे ही उसने हथौड़े से चोट मारी तो क्या हुआ, वो वॉक्स ही सोने का बना हुआ था। सोना उसने रखा हुआ नहीं था, लिखा तो था उन्होंने, वॉक्स ही क्या था, सोना। केवल उस पर स्टील की ऊपर से पॉलिश, उसके रूप को जो है केवल उस पर आरोपित किया गया था, लेकिन वॉक्स क्या था, सोना ही था। और उसको नाम एक दे दिया गया था, क्या, वॉक्स। ठीक इसी प्रकार से जैसे ये युक्ति बतलाई वैसे ही शास्त्रों में भी लिखा है, हम लोग भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं?
1: ओम नमः शिवाय।
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Shvetashvatara Upanishad ke dusra adhyay ka satavam mantra dekhna. Savitra prasavena jusheta brahma purvam tatra yonem krinavase nahite purta makshipat. ये बता रहे हैं ध्यान कहाँ करना चाहिए है नहीं बात. सविता के अनुज्ञा से फायदा क्या क्या लाभ और अनुज्ञा न लेने पर क्या हानि है ये बता रहे. तो कल के प्रसंग में आपको बताया थोड़ा रह गया था. तस्मात् प्रथमम यज्ञादि अनुष्ठानम ततः प्राणायामादि ततः समाधि ततो वाक्यार्थ ज्ञान निष्पत्ति ततः कृत कृत्यता इति. देखो जीवन की सफलता कहाँ से हो कहाँ तक. ततः कृतकृत्यता कदा. तस्मात् प्रथमम यज्ञादि अनुष्ठानम पहले क्या करना चाहिए. हाँ यज्ञादि का अनुष्ठान करना चाहिए. क्यों. यज्ञदाना तप कर्मा पावनानि मनीषी नाम आया कि नहीं. गीता के 18वां अध्याय में अर्जुन ने पूछा था भगवान से कहानी बात. संन्यास्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्याग से स ऋषि के सा पृथक पेशी निशुधन. त्याग किसको कहते हैं संन्यास किसको कहते हैं अलग अलग मैं जानना चाहता हूं है नहीं बात. तो भगवान ने क्या बोला. काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः.